आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
1: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
0: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
2: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या है आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
3: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
4: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 23 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। मौसम आधारित चेतावनी ये है कि जिले के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसान भाई बहनों को खेत के कार्य स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन हेतु तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। किसान भाई बहनों जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रोपाई इस महीने में पूरी कर ले। धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और खेत में जल जमाव बनाए रखें। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया का ऊपरी निवेशन करें, यानी कि यूरिया डालें। धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों बाद यूरिया का ऊपरी निवेशन करना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा को खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखना बहुत जरूरी होता है। बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जो मिर्च की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर लेनी चाहिए। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी एक और पंजाब लाल। संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगीती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50 से 45 सेंटीमीटर मीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। पशुओं का विशेष ध्यान रखें, खुरपका और मुंहपका रोग होने की संभावना होती है तो उन्हें टीके जरूर लगवा लें और अगर रोग के कोई लक्षण दिखे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने की पानी की व्यवस्था करें, उन्हें संतुलित आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
8: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, महिलाओं को जितनी परेशानी पीरियड्स से होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा परेशानी तब होती है जब उनके पीरियड्स समय से पहले रुक जाए। जी हाँ, पीरियड्स अपने साथ कितनी सारी परेशानियाँ लेकर आता है, मूड स्विंग्स और हाथ पैरों में दर्द, न जाने कितनी सारी दिक्कतें होती है पीरियड्स के दौरान। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरह की परेशानियाँ होती हैं और ऐसे में हम सोचते हैं कि ये पीरियड्स जैसी बला हमारे जीवन में है ही क्यों, लेकिन ये बला अगर हमारे जीवन से समय से पहले दूर चली जाती है तब हम ही परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हमारे पीरियड्स इतनी जल्दी क्यों चले गए। देखिए, पीरियड्स के रुकने को कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि जब हमारी महावारी बंद हो जाती है। एक निश्चित समय पर हमारी महावारी शुरू होती है और एक निश्चित समय पर बंद हो जाती है और महावारी के बंद होने को कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 साल के बीच में हो जाता है, लेकिन आजकल जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदल रही है और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पीरियड्स बहुत कम उम्र में रुकने लगे हैं और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है। तो जब पीरियड्स 40 की उम्र से पहले अगर बंद हो जाए तो उसे कहते हैं अर्ली मेनोपॉज, यानी कि समय से पहले हो गया हुआ मेनोपॉज। तो अर्ली मेनोपॉज के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले तो अनुवांशिक कारण हो सकता है। अनुवांशिक कारण मतलब कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, अगर माँ या बहन को जल्दी मेनोपॉज हुआ हो तो ऐसी स्थिति में संभावना बढ़ जाती है कि आपके साथ भी आपके जो पीरियड्स हैं बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे, जल्दी ही आपका मेनोपॉज हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। इसमें यह नहीं होता है कि आपको किसी चीज़ की कमी की वजह से मेनोपॉज हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। दूसरी जो वजह होती है वो कुछ बीमारियां होती है, ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे कहते हैं, जैसे कि थायराइड की अगर परेशानी है किसी महिला को या फिर कुछ तरह के अर्थराइटिस के प्रॉब्लम है महिलाओं को, तो भी अर्ली मेनोपॉज की समस्या देखी जाती है। और अगर हम बात करें ना, तो थायराइड की भी परेशानी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की। कई बार महिलाएं कैंसर का इलाज करा रही होती हैं जिसमें शामिल होता है कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से ना ओवरी यानी कि अंडाशय काफ़ी हद तक प्रभावित होता है, जिसकी वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और आजकल बहुत सारी परेशानियों की वजह से ओवरी की सर्जरी भी कराई जाती है, यानी कि अंडाशय हटा लिए जाते हैं। तो जब अंडाशय ही हटा दिया जाता है तो भी अर्ली मेनोपॉज हो सकता है और कई बार कुछ संक्रमण हो जाता है और इन संक्रमण की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करती है, जो सबसे ज़्यादा वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की, वो है जीवन शैली। आजकल धूम्रपान बहुत ही आम बना दिया गया है, पता नहीं क्यों, जो कि बहुत गलत है। हर तरीके से धूम्रपान का कोई फायदा नहीं होता है। और इसके अलावा कुछ कामकाजी महिलाओं को या फिर घरेलू महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ता है तो भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और पोषण की कमी, जैसे कि महिलाएँ लगातार आम तौर पर नज़रअंदाज कर देती हैं और पोषण का हक सिर्फ अपने परिवार वालों का मानती है, तो ऐसी महिलाओं को भी अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है, यानी कि पोषण की कमी भी एक प्रमुख वजह बनती है। इसके अलावा बात करें तो POI यानी कि प्राइमरी ओवेरियन इन्फिशियंसी, यानी कि जब ओवरी सामान्य से पहले काम करना बंद कर देती है, कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि हमारी ओवरी जो तय वक्त होता है उसे पहले ही काम करना बंद कर देती है और हमें अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है। और अर्ली मेनोपॉज जब किसी में आने वाला होता है, आमतौर पे जब मेनोपॉज भी शुरू होने वाला होता है, तो शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब अर्ली मेनोपॉज भी आता है तब भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ लक्षण हमें समझ में आते हैं। पीरियड्स अनियमित हो जाता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और आप 28 के पार की हैं, तो आप अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर से मिले अगर ये लगातार हो रहा है तो। वैसे भी पीरियड्स अगर लगातार अनियमित हो रहा है तो आप फिर किसी भी एज में हो आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, ये बहुत सारी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा आपको हॉट फ्लशेस भी महसूस होते हैं। हॉट फ्लशेस यानी कि अचानक शरीर में तेज गर्मी महसूस होना, खास तौर से चेहरे पर, गर्दन पर और छाती में, और ये कुछ सेकंड से लेकर ना कुछ मिनट तक महसूस हो सकता है, और ये अर्ली मेनोपॉज का या फिर कई बार मेनोपॉज का भी आम लक्षण माना जाता है। हॉट फ्लशेस के लक्षण क्या होते हैं? अचानक तेज गर्मी का एहसास होना, चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आना, खास तौर से रात में जब पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाना और फिर बाद में ठंड लगना। तो ये सारी चीजें हो सकती है कि अर्ली मेनोपॉज या फिर मेनोपॉज के लक्षण हो। और मेनोपॉज के दौरान हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। उनमें से एक चेंज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन में। एस्ट्रोजन जो होते हैं ना, वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, और जब इसका स्तर गिरता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि शरीर बहुत गर्म है और वो पसीना या फिर गर्मी की प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ लक्षण की अगर हम बात करें तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, नींद आने में परेशानी होने लगती है और योनि में सूखापन भी महसूस होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बढ़ जाता है जब मेनोपॉज होने वाला होता है या फिर अर्ली मेनोपॉज होने वाला होता है। अगर मेनोपॉज होता है तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं होती है, मतलब वो आना ही है और कुछ लक्षण आपको दिखेंगे ही, बस जरूरी होता है कि आप खान पान सही रखें। लेकिन अगर अर्ली मेनोपॉज है तो इसके वजह से महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, और कई बार तो महिलाएं माँ भी नहीं बनी होती है तभी उनमें मेनोपॉज आ जाता है कि अभी महिला ने अपना परिवार भी शुरू नहीं किया, और ऐसे में मेनोपॉज आना मतलब बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? एक तो होता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, यानी कि HRT दी जाती है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन हार्मोन दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अगर कुछ परेशानी हो रही है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर को कई बार लगता है कि किसी और वजह से भी आपको परेशानी हो रही है, तो किसी और तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन जब देखा जाता है कि किसी वजह से हार्मोन्स में उलटफेर हुआ है, तो फिर वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। एक और वजह हो सकती है कि कैल्शियम और विटामिन की भी कमी की वजह से आप में मेनोपॉज देखा जाता है। तो ऐसे में आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो भी सप्लीमेंट्स आप खाते हैं वो डॉक्टर के सलाह से ही खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आपने अपनी मर्जी से कैल्शियम या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया, नहीं, आप खान पान के जरिए से ये सारी चीजें लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है, और अगर मानसिक तनाव की वजह से अर्ली मेनोपॉज के लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, यानी कि ये दवाइयां आपके तनाव को कम करती हैं, आपको आपके मूड को थोड़ा बेहतर बनाती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए, नियमित व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए, और सबसे जरूरी धूम्रपान बंद कीजिए। और धूम्रपान तो आप फिर चाहे लड़का हो या लड़की, आपके शरीर को किसी ना किसी तरीके से ये नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ये आपका जेंडर नहीं देखेगा। तो धूम्रपान किसी को भी नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज की परेशानी से बच सकते हैं। अगर आप में ऐसे लक्षण भी आने शुरू हो गए हैं और डॉक्टर से आप दिखाएंगे, तो कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ये परेशानी आपको देखने को मिल रही है, तो आपको वो यही सलाह देंगे, आपको कोई ज्यादा दवाइयां नहीं देंगे। वो कहेंगे कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 वगैरह जो भी है जरूरी है वो भरपूर मात्रा में हो। आप इसके साथ ही एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और कोई भी धूम्रपान या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ों का सेवन मत कीजिए। और क्या किन्हीं को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या अर्ली मेनोपॉज को रोका जा सकता है? देखिए, लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या उसे रोका जा सकता है? तो पूरी तरीके से रोकना हमेशा संभव नहीं है, अगर ये खास तौर से अनुवांशिक या फिर मेडिकल किसी रीजन की वजह से हो, जैसे कि आप कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसकी वजह से अगर हो तो अर्ली मेनोपॉज को रोकना आमतौर पर संभव नहीं होता है। हालांकि चांसेस रहते हैं पर बहुत कम रहते हैं, लेकिन जोखिम कम किया जा सकता है अगर आप धूम्रपान से बचे, हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज को रोक सकते हैं। लेकिन रुक गया है तो उसके बाद बहुत परेशानी होती है। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, तनाव कम रखें और समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। अगर आपको दिख रहा है कि आपके अंदर ये सारे लक्षण हैं और आप 28 के पार की हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े। और डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर आपकी उम्र 40 साल अभी हुई भी नहीं है और 40 से पहले ही आपके पीरियड्स बंद हो जाए या फिर 3-4 महीने तक नहीं आए, तो ऐसे में आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और आपको खान पान का तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खान पान सही रखेंगे, तनाव कम रखेंगे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे, और साथ ही धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको सिर्फ अर्ली मेनोपॉज से ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को आप बचा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो फिर क्यों नहीं हम बीमारियों को आने से पहले उसे प्रिवेंट करते हैं, उसे आने ही नहीं देते हैं, तो कितना अच्छा होगा ना। तो बस इन्हीं सारी बातों का और ध्यान रखें। और आजकल हमारा खान पान बहुत ख़राब हो गया, हम पैकेट फूड्स खाते हैं और ये पैकेट फूड्स भी हमारे मेनोपॉज अर्ली मेनोपॉज की वजह बन सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती है जो हमारे हॉर्मोन्स को इफ़ेक्ट करती है। जाकर ध्यान रखें कि घर का बना खाना ज़्यादा खाएँ, बाहर के खाने से बचें। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप खुश रहेंगी तभी आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम है हरियाली से खुशहाली तक।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
8: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
11: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
11: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
11: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
12: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
11: उन्नत कृषि, ग्रीन पर आरजे अनु करती है आप सभी का स्वागत, और साथ ही मैं आप सभी को कर रही हूँ नमस्कार। उन्नत कृषि कार्यक्रम में आज मैं लेकर आई हूँ खास विषय। जी हाँ, आज एक खास विषय है प्याज के बारे में, और प्याज की जो महंगाई है जितना हमें रुला रही है उतना ही बहुत ज़रूरी है कि अगर हम उसमें पैसे लगा रहे हैं, उसे उपजाने में पैसे लगा रहे हैं, तो हमें सही दाम मिले, और सही दाम तभी मिलेगा जब आप जी हाँ इन्हें कीट से बचा पाएंगे, यानी कि जब आप सही तरीके से बाज़ार में सही इसकी क्वालिटी के साथ बाज़ार में बेचेंगे तो आपको सही दाम मिलेंगे। फिलहाल तो अभी प्याज की बात करें तो प्याज एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है आज पूरे देश में, और प्याज की बात करें तो महंगाई की बात तो हो ही रही है। और फिलहाल तो आज हम महंगाई की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे प्याज के कीट और उसके प्रबंधन के बारे में। तो आपको बता दूं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण कुमारी मैम, और ये हैं कीट विज्ञान विभाग यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये, और साथ ही मैं आपको बता दूं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कुछ विषय, और ये विषय है प्याज के बारे में। तो सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे कि प्याज में कौन कौन से कीट हो सकते हैं यानी कि लग सकते हैं।
13: जी, प्याज में लगने वाले मुख्य कीट हैं प्याज का थ्रिप्स, प्याज का मैगट, एवं दीमक, ये तीनों ही कीट यानी थ्रिप्स, प्याज का मैगट एंड दीमक, ये तीनों हमारे प्याज फसल को काफ़ी हानि पहुंचाते हैं।
11: अच्छा मैम, आपने थ्रिप्स बताएं, प्याज का मैकेट बताएं और दीमक बताएं, तो सबसे पहले अगर ज़रूरी है कि हम इनका प्रबंधन करें तो इनके पहचान की ओर बढ़ें, तो हम जानना चाहेंगे कि इन थ्रिप्स कीट को हम कैसे पहचान सकते हैं।
13: जी, थ्रिप्स कीट को जो यह कीट प्याज के मुख्य तौर पर तो ऐसे जो फूल होते हैं वो फूलों पे ही बहुत ये छोटे छोटे काले भूरे भूरे काले, क्योंकि ये काला कम दिखता है भूरा अधिक होता है, भूरे भूरे काले रंग के होते हैं जो फूलों पे वो रस चूसते रहते हैं। और लेकिन ये नहीं कि फूलों से ही रस चूसते हैं, इसके जो शिशु होते हैं और वयस्क दोनों ही भूरे काले रंग के होते हैं और ये पत्तियों से रस चूसते हैं
11: जी,
13: जिसके कारण ये प्याज की पत्तियां मुड़ जाती हैं और सूख भी जाती हैं। और इसके जो वयस्क हैं वो किडनी सेपेड किडनी के आकार के अंडे देते हैं।
11: अच्छा।
13: और ये अंडे पत्तियों के जो उत्तक होते हैं उत्तकों में भेद कर ये अंडे दे देते हैं और उनसे फिर जो शिशु निकलते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, लगभग 1 मिलीमीटर का, 1 mm
11: के शिशु,
13: बहुत हाँ के शिशु, और शिशु इससे भी छोटे होते हैं। अच्छा, वयस्क होते हैं।
11: अच्छा, वयस्क हाँ,
13: शिशु और वयस्क दोनों ही बहुत छोटे होते हैं और ये पत्तियों के रस से रस चूसते हैं और जिससे पत्तियाँ मुड़ जाती हैं और फलतः फिर सूख भी जाती हैं।
11: यानी कि ये इस तरीके से हानि पहुंचाते हैं।
13: जी, हानि पहुंचाते हैं,
11: पत्तियों के रस चूस लेते हैं ये, और जिसकी वजह से पत्तियां मुड़ जाती हैं और
13: सूख भी जाती हैं।
11: तो मैम अब इनका प्रबंधन कैसे करें हम?
13: जी हाँ, प्रबंधन के लिए या कोई भी जो ये नीम आधारित दवा है, नीम आधारित दवा जैसे निम्बिसिडीन, निमार्क, निमागोल्ड या नीम का तेल, इन 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से थ्रिप्स का नियंत्रण हो जाता है। और यदि बहुत अधिक अगर इसका प्रकोप हो जाए तो रासायनिक दवाओं में इमिडाक्लोप्रिड या एसिटामीप्रिड का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से इस थ्रिप्स कीट से बचाव हो सकता है।
11: अच्छा मैम, अभी यहाँ पर हमने थ्रिप्स कीट के बारे में जाना और दूसरी जो कीट के बारे में आपने बात की थी वो थी प्याज का मैगेट कीट, तो इसकी पहचान, हानि और प्रबंधन के बारे में बताएं।
13: जी, प्याज का मैगेट जो है इसका वयस्क तो मक्खी की तरह होता है, लेकिन इसका जो मैगेट है यानी शिशु, शिशु को ही मैगेट कहा जाता है
11: जी।
13: और यह शिशु उजले रंग का होता है।
11: अच्छा।
13: और ये जो मक्खियाँ होती हैं वो जमीन के सतह पर मतलब मिट्टी में ये अंडे देती हैं।
11: अच्छा।
13: और इस तरह से इन अंडों से फुटकर जो शिशु निकलते हैं वो पहले तो ये प्याज का जो वो जड़ है फिर वहाँ पर होते हुए ये पत्तियों तक पहुँचते हैं और वहाँ पत्तियों को खाकर हानि पहुँचाते हैं। और जब बल्ब बनने लगते हैं, जब प्याज का जो गोला बनने लगता है जिसे बल्ब कहते हैं, उस गोले में ये शिशु छेद कर खाते हैं। और जब बल्ब में छेद कर खाने लगते हैं तो जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो सूख जाती हैं।
11: अच्छा।
13: इस तरह से ये
11: हानि पहुँचाते
13: हैं। हाँ, जो शिशु हैं और ये हानि पहुँचाते हैं।
11: तो इन्हें दूर कैसे किया जाए?
13: जी हाँ, इसके मैगट से बचाव के लिए डाइमेथोएट दवा का कीटनाशी है, जिसे कि इसका 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इससे बचाव हो सकता है। या दूसरी जो कीटनाशी है वो है एसीफेट 75 WP दवा का 0.5 ग्राम यानी आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव किया जा सकता है, जिससे कि इससे बचाव हो सकता है। और जब इस कीट का प्रकोप बल्ब में हो जाता है और जब बल्ब तैयार होने को होता है यानी हार्वेस्टिंग से पहले, और उसके बाद हम ये जो है किसान भाई वो स्टोरेज करते हैं, घर में ले आते हैं स्टोर करने के लिए या गोडाउन में जहाँ भी ले जाएं, तो फिर वहाँ पर इस ये जो मैगट है यानी शिशु, वो तो उस बल्ब में वो रहता है और इस तरह से वो फिर से जो स्टोरेज में भंडारण में ये हानि पहुंचाने लगता है, मतलब बल्ब में फिर छेद करके खाना शुरू करता है, जिससे कि फिर बल्ब सड़ जाते हैं, कई तरह के उस पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी शुरू हो जाता है, इससे प्याज सड़ जाते हैं। तो यही नहीं कि ये जो है मैगट केवल खेतों में ही फसल को हानि पहुंचाता है, बल्कि यह प्याज का भंडारण होने पर भी
11: अच्छा
13: यह कीट हानि पहुंचाता है।
11: अच्छा, तो यहाँ पर इसके प्रबंधन की बात हुई और हानि कैसे पहुंचाता है और पहचान की भी बात हमने की, और इसके बाद दीमक कीट के बारे में हम जानना चाहेंगे मैम कि इसके पहचान को कैसे जाना जाए और हानि और प्रबंधन के बारे में बताएं।
13: जी, दीमक तो ऐसे भी बहुत छोटे कीट होते हैं, लगभग 3 mm का, और ये जो है इसके इसमें तो ऐसे इस उजले रंग के देखने में होते हैं और मिट्टी में इसके जो है वो कॉलोनी के रूप में रहते हैं, जिसमें कि वो एक ग्रुप में समूह में रहते हैं, हाँ, जिसमें उसमें उनके काम का बंटवारा के अनुसार उसमें एक रानी होती है, राजा भी होता है, सिपाही भी होता है, कुछ श्रमिक होते हैं। तो मेन जो श्रमिक हैं वही हानि पहुंचाते हैं।
11: अच्छा,
13: और वो जो है जड़ों को किस तरह से हानि पहुंचाते हैं, तो वो जो प्याज के जो जड़ हैं उनको, चूंकि ये जो है दीमक मिट्टी में रहती है इसलिए जड़ को काट कर वो हानि पहुंचाती है, जब जड़ों को काट देती हैं तो पौधे ही सूख जाते हैं
11: जी,
13: तो इस तरह से हानि पहुंचाते हैं। और कभी कभी ये जो दीमक मिट्टी में वो पूरा ऊपर की तरफ वो गुफा जैसे बनाया जाता है, उस तरह से वो पूरा मिट्टी को ऊंचा कर देते हैं, जिससे वो पता चल जाता है कि यहाँ पे दीमक है,
11: लग चुका है जी। प्रबंधन कैसे किया जाए मैम?
13: जी हाँ, इसके दीमक के प्रबंधन के लिए यदि खड़ी फसल पर दीमक का प्रकोप हो गया हो तो क्लोरपाइरीफॉस दवा का 2.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, और यदि हर एक साल दीमक का प्रकोप खेतों में हो रहा है तो बीज लगाते समय बीजोपचार करना चाहिए, बीजोपचार के लिए इसी दवा से क्लोरपाइरीफॉस दवा का 4 ml प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए, और बीज में 4 ml 1 kg बीज में 4 ml दवा मिलाकर फिर उसमें दवा में 15 ml पानी भी मिलाकर के पूरे 1 kg बीज को मिलाकर इस तरह से बीजोपचार कर लगाना चाहिए
11: जी,
13: बुआई करनी चाहिए
11: जी। तो किसान भाइयों, आपने प्याज के प्रमुख कीटों के बारे में जाना, प्याज के कौन कौन से कीट प्रमुख है जैसे कि थ्रिप्स कीट, प्याज का मैगेट कीट, दीमक कीट, और साथ ही आपने जाना कि इन्हें हम कैसे पहचान पाएंगे और साथ ही इसका प्रबंधन कैसे कर पाएंगे। तो फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, और आशा करूंगी कि आप प्याज के कीट का प्रबंधन ज़रूर करें क्योंकि आपको बाज़ार में इसके अच्छे दाम मिल पाएँ, आप अपनी जीविका चला पाएँ सही ढंग से। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। उन्नत कृषि
14: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बच गई भैया देश की बीन, टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
15: खुद भी बचे देश भी बचाएं।
16: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
17: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
1: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ मैं बताती हूँ। सुनो सुनो

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के,
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: കൃഷി. आप सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि। तो श्रोताओं, हर रोज की तरह आज भी हम आपसे कुछ उपयोगी बातें करेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रूबी रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और इनसे आज हम बात करने वाले हैं। हमारा जो आज विशेष विषय है वो है फल वृक्षों को लगाने की विधि। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: और मैम, जब बात आ रही है हमारे विषय की, तो आज जैसे कि हमने बताया कि फल वृक्षों को लगाने की विधि, और कहीं ना कहीं इसे बागवानी से भी जोड़ा जाता है। कई लोगों को बागवानी करने का शौक भी होता है, कई लोग चाहते हैं कि उनके बागों में फल के वृक्ष दिखें, पौधे दिखें, कोई चाहते हैं कि फूलों के पौधे दिखें। तो लेकिन यहाँ पर फल वृक्षों की बात हो रही है मैम, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि नए बाग की स्थापना में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
1: सबसे पहले बता दूं किसान भाइयों कि फल वृक्ष बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है और कम लागत में आप ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये फल वृक्ष जो है आपको लगाने के सात साल आठ साल बाद आपको फल देंगे, और इसलिए ये चूंकि लंबे समय का ये कार्यक्रम होता है, लंबे समय के बाद आपको इसका फायदा पता चलेगा। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप इसको लगाने के पहले पूरी तरह से सावधानी बरतें, और लगाने के नए बगीचे लगाने के पहले आप सारी बातों की जानकारी रखें, अन्यथा आपको 6 साल 7 साल के बाद पछताना पड़ेगा कि मैंने सही तरीके से नहीं लगाया, इसलिए हमारा उत्पादन सही ढंग से नहीं मिल पाया। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप नए बगीचे लगाने के पहले, या आप एक दो फल के भी पेड़ अगर लगाना चाहते हैं अपने गृह वाटिका में आगे या पीछे, तो भी आपको बहुत सावधानी बरतनी है। सही जानकारी होनी चाहिए कि पौधे हम कैसे लगाएं, किन चीज़ों का चुनाव करें, किन किस्मों का चुनाव करें, छोटी जगह है तो उनमें किन फल वृक्षों का चुनाव करें, अगर बड़े बाग लगाने हैं तो हमारा एरिया में, हमारे क्षेत्र में किन फलों की ज़्यादा डिमांड है उसका चुनाव करें, न कि हमारे यहाँ डिमांड के अनुकूल नहीं है उसका चुनाव करने पर आपको आगे समय में मुश्किल हो सकती है उसको बेचने में, या उसको सही मुनाफा आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए इन सभी बातों की जानकारी रखनी बहुत ही आवश्यक है कि आप किन तरह के वृक्षों का चुनाव करें, कैसे उसको लगाएं, और किन जगहों में अपने नए बगीचे की स्थापना करें। अगर आपको व्यावसायिक खेती करनी है उसकी, तो आप ऐसे जगह में लगाएं कि वो सड़क के किनारे हो, और ताकि आपके जो भी उत्पाद प्राप्त हों 7 साल 8 साल 10 साल के बाद, वो आसानी से आप अपने बाजार में आप ले जा सकें। दूसरी बात, सबसे पहले कि किस तरह की भूमि का चुनाव करें आपको अगर नए बगीचे लगाने हैं, तो उसमें आपको ऐसी भूमि का चुनाव करना है जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा ना हो, लगभग समतल हो, 2 से 3% ढलान तक आप ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ढलान जो है वो भूमि नहीं लेनी चाहिए। सिंचाई की सुविधा हो, और इसमें लेबर फोर्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, श्रमिक की उपलब्धता कभी कभी ज़्यादा होती है, तो आप उसको ये भी देखना पड़ेगा कि अब श्रमिक की उपलब्धता आपके पास है या नहीं है, और सड़क के किनारे हो, सड़क से जितना पास हो उतना ज़्यादा अच्छा है। हालांकि सड़क के किनारे की ज़मीन भी बहुत महंगी होती है, उससे थोड़े अंदर में भी आप ले सकते हैं, लेकिन
0: मतलब बाजार से उनके डिस्टेंस
1: हाँ
0: कम होनी चाहिए,
1: मतलब हाँ कम से कम हो, लेकिन वो आर्थिक रूप से आपको नुकसान ना दे। दूसरी बात, आप जहाँ भी बगीचे लगाएं आपके आवागमन का साधन होना चाहिए। इन सब बातों को देख करके आपको बगीचे का स्थल का चुनाव करना है।
0: तो किसान भाइयों, मैम ने जैसे बताया कि जो भूमि की चयन की बात कही मैम ने, जैसे कि समतल होना चाहिए, ज़्यादा ऊंचा नीचा आप जहाँ पे आप बागवानी करना चाहते हैं वहाँ की भूमि नहीं होनी चाहिए। साथ ही मैम ने बताया कि आपका जो वृक्ष लगाने का जो स्थान है वो जहाँ पर आप बिक्री करते हैं फलों की, उससे नज़दीक होना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में भी पैसे ना लगें और आसानी से आप आ जा सकें और अपने फलों की जो बिक्री है वो कर सकें। इसके बाद मैम, जब बात आती है यहाँ पर ध्यान किन किन बातों को ध्यान रखने की, बात तो आपने कह दिया उसके बारे में, और इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि फल वृक्षों को, पौधे जो हम लगाते हैं फल वृक्षों के, उसके किस्मों का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए।
1: सबसे पहले मैं बता दूं कि किस्मों का चुनाव करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत सभी किसी भी चीज, किसी भी फल वृक्ष के सभी किस्में सभी क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं होती है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपके क्षेत्र में किन किस्मों का ज्यादा डिमांड है। जैसे कि

0: हमारे क्षेत्र में जैसे बिहार में आम का ही अगर फसल लेते हैं तो इसमें मालदा, जरदालू और गुलाब खास, कृष्णभोग, बम्बई, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा, आम्रपाली, इन इन सब किस्मों की ज़्यादा डिमांड है। तो हमें इन किस्मों का ही चुनाव करना चाहिए। साथ ही अगर आप गृह वाटिका में लगाना चाहते हैं तो वैसे वृक्षों का, वैसे फल वृक्षों का चुनाव ना करें जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, क्योंकि आपके पास फिर ज़मीन कम होती है गृह वाटिका में। अगर एक ही आम के पौधे बहुत फैल जाएंगे तो बाकी चीज़ जो है आप नहीं लगा सकते। इसलिए उन जगहों में जहाँ के गृह वाटिका में आप लगाना चाहते हैं या एक दो पौधे लगाना चाहते हैं, अगर आम की लगाना चाहते हैं तो उसमें आम्रपाली जो कि कम बढ़ती है, उसका फैलाव भी कम होता है, उन किस्मों का चुनाव करें। इसके अलावा वैसे फल वृक्ष जैसे केला, पपीता, इन सब चीज़ों का आप गृह वाटिका में लगा सकते हैं। और बगीचे भी अगर लगाना चाहें तो केला, पपीता में भी किस्मों का चुनाव आपको करना पड़ेगा और उन किस्मों की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, हमारे क्षेत्र में कौन सा, हमारे क्षेत्र का जो जलवायु है किस किस्मों के लिए अनुकूल है, इसलिए इन बात की बहुत अच्छी तरह से जानकारी रखनी पड़ेगी। अगर आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सेब बहुत महंगा मिलता है, लेकिन आपका क्षेत्र का जो जलवायु है वो सेब के अनुकूल नहीं है, इसलिए वैसे पौधों का चुनाव ना करें ताकि आपको फल ही ना दे। इसलिए अपने जलवायु के अनुकूल, अपने मिट्टी के अनुकूल और अपने स्थान विशेष, जगह के कितना भी भूमि क्षेत्र है उसके अनुकूल तथा हमारे क्षेत्र में जिनका डिमांड है उसके अनुकूल आप फल वृक्षों का और उनके किस्मों का चुनाव करें, ये बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा 5 से 7 साल के बाद आपको पता चलेगा कि आपने 6 साल पहले बहुत बड़ी गलती कर चुकी और आप नुकसान में रहेंगे।
1: तो किसान भाइयों, मैम ने जैसे बताया कि आप अपने क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और फल के मांगों को देखते हुए फल के पौधे लगाएं और 6-7 साल तक आप अगर अपने मेहनत को यूं ही गंवाना नहीं चाहते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें। तो मैम, जब बात होती है नए पौधे लगाने की तो उनकी विधि भी बहुत ज़रूरी होती है जाना, क्योंकि जैसे हम खाना पकाते हैं तो उसकी विधि जानना ज़रूरी होता है। अगर विधि जान लेते हैं तो हम आराम से बनाते हैं और खाना भी स्वादिष्ट बनता है। तो वैसे ही पौधे लगाने की विधि हम जानना चाहते हैं ताकि हम 6-7 साल बाद पछताएं नहीं और हमें फल मीठे मीठे मिले।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, पौधे लगाने की वैज्ञानिक विधि अपनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बहुत सारे किसान भाई फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मैडम, पौधा मैंने लाया, बहुत अच्छे से पौधे थे, लगाया और 2 महीने के बाद मर गया, या फिर 1 साल के बाद मर गया, या फिर 1 साल के बाद इसमें ये प्रॉब्लम आया, वृद्धि नहीं हो पा रही है, इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं आती है जब पौधे पे खर्च कर देते हैं, वो अपनी ज़मीन की तैयारी करने के बाद उसको लगाते हैं और उनको पता चलता है कि जो पौधे सही ढंग से नहीं लग पा रहे हैं। तो मैं आप बताना चाहूँगी कि पौधे, जैसे कि आप फल वृक्ष, हमारे जलवायु की बात करूँ तो फल वृक्ष लगाने का समय हमारे यहाँ मध्य जून से लेकर अगस्त सितम्बर महीने तक लगा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो लगाने के पहले 1.5 से 2 महीने पहले इसकी तैयारी आपको शुरू करनी पड़ेगी। अब जो भी मान लीजिए कि आप आम का पौधा लगा रहे हैं तो उसकी एक नियत दूरी रहती है, कितनी दूरी पर आप पौधों को लगाएं। तो आप आम में जो ज़्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पर लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पर लगाएं, और जो आप कम बढ़ने वाली किस्में हैं उसको 4 से 5 मीटर की दूरी पर आप लगा सकते हैं, जैसे आम्रपाली है, मल्लिका है, वो सब ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, उसको 5 मीटर की दूरी पर आप लगा सकते हैं। और लगाने के पहले आपको गड्ढा करना है, जो गड्ढे की तैयारी करनी है, ज़मीन की तैयारी जो करनी है आपको अप्रैल माह में शुरू कर देनी है। और अप्रैल माह में आप 1 3 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा 3 फीट गहरा गड्ढा करें, या 8 मीटर की दूरी पर, या फिर आप 5 मीटर की दूरी पर करें, यह निर्भर करता है आप किन किस्मों को चुनाव कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा 3 फीट गहरा गड्ढा करें और जो गड्ढे की मिट्टी है उसको बाहर निकाल के कुछ दिन के लिए छोड़ दें, गड्ढे को खुला छोड़ें। अप्रैल माह में धूप बहुत तीक्ष्ण होती है और जिसके कारण उस तीक्ष्ण धूप से जो गड्ढे के अंदर जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं वो मर जाते हैं, और बाहर जो आपने मिट्टी निकाली है अगर उसमें भी कीड़ों के अंडे रहते हैं तो वो भी मर जाते हैं। तो इस तरह से वो कड़ी धूप में आप 3 से 4 सप्ताह उसको छोड़ दें, यूं ही खुला छोड़ दें। उसके बाद उस मिट्टी में आप, अगर आपको आम के पौधे लगाने हैं तो आप 30 से 35 kg कंपोस्ट, 100 ग्राम फ्यूराडॉन 3 mg और 4 से 5 kg आप नीम या अंडी की खल्ली को लगाएं और डालें, मिक्स करें उसमें, और उसको मिक्स करने के बाद जो है उसको गड्ढे में भर दें। गड्ढे में भरने के बाद आप पानी से उसको अच्छी तरह से सिंचित करें गड्ढे को, ताकि वो मिट्टी पूरी तरह से बैठ जाए गड्ढे में, और जब पूरे अच्छी तरह से भींग जाए बैठ जाए तो पुनः एक बार उसमें अच्छी तरह से सिंचित करें। जब दूसरी बार सिंचित करेंगे तो मिट्टी पूरी तरह से बैठ जाएगी, और उसके बाद ये ध्यान रहे कि मिट्टी के जो उसमें गड्ढे जो है उसके 3 से 4 इंच ऊंची तक वो मिट्टी रहे। उसके जब पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद फिर उसके बाद जब दूसरी सिंचाई कर देंगे, तब फिर क्या है बीच में गड्ढा करके आप पौधे उसमें लगाएं और हल्के से दबा दें। ध्यान रहे कि बीच वाला भाग थोड़ा ऊंचा रहे, क्योंकि उसके बाद जो बारिश होने वाली रहती है अगर ऊंचा नहीं रहेगा तो बारिश के समय में उसके जड़ के आसपास जल का जमाव होगा, जो कि नए पौधों के लिए नुकसानदेह होता है। तो आप इस तरह से पौधे लगा सकते हैं। और मैं बता दूं, किसान भाइयों अधिकतर गलती क्या करते हैं, सबसे पहले वो पौधे खरीद के लेके जाते हैं, घर में रखते हैं, उसके बाद गड्ढा लगाया, खाद डाला, गोबर डाला, तुरंत पौधे लगा करके पानी डाल दिया, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि जैसे ही आप तुरंत खल्ली डाल के खाद डालने के बाद उसमें पानी डालेंगे, उसमें से गर्मी उत्पन्न होता है, और तुरंत अगर पौधे आप लगाए हैं तो उसमें जड़ के जलने की समस्या हो रहती है। इसलिए किसान भाइयों आप 1 महीने अप्रैल के महीने में गड्ढे की खुदाई करें, 3 से 4 हफ्ते उसको छोड़ दें जैसा मैंने बताया, उसके बाद से आप पौधे लगाएं, पानी 2 बार पानी डाल करके, हालांकि उस समय तक बारिश शुरू हो जाती है तो अलग से सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बारिश हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बारिश में पूरे होने दें, अच्छे तरह से मिट्टी बांटने दें, और जैसा मैंने बताया उस तरह से आप पौधे को लगाएं, पौधा आपका कभी नहीं मरेगा। और इस तरह से पौधे के लगाने की विधि है।
1: तो मैम जैसे कि आपने कहा कि क्षेत्र मतलब हर किसानों को अपने अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही पौधे का चयन करना चाहिए, तो मैं जानना चाहूँगी कि हमारा जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में किस तरह के उर्वरक देने चाहिए फल के पौधों को।
0: देखिए पहले क्षेत्र के बारे में सबसे पहले बता दूँ, हमारा क्षेत्र जो है बिहार राज्य जो है उसमें आम, लीची, अमरूद, केला, पपीता, शरीफा, इन सब चीज़ों की खेती आराम से हो सकती है। अगर आपका कुछ हद तक कुछ हमारे कुछ एरिया में जैसे सीमांचल एरिया में जहाँ की आर्द्रता ज़्यादा रहती है वहाँ नारियल की भी खेती हो सकती है, लेकिन सभी क्षेत्रों में नारियल की खेती हमारे यहाँ नहीं हो सकती है। इन सब की खेती आप चाहेंगे सेब, खुबानी, आड़ू, ये सब लगाना, तो इन सब की खेती यहाँ संभव नहीं है क्योंकि जलवायु अनुकूल नहीं है। अब रही खाद उर्वरक की बात, मैंने बताया कि जब पौधे आप लगा रहे हैं तो लगाने समय में आप कंपोस्ट डाले हैं, खल्ली डाला है, और उसके साथ जो है ज़्यादा नहीं लगाते, इसमें 250 ग्राम ही आप DAP जो डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं उसको डालें, और फ्यूराडोल मैंने बताया कि 100 ग्राम डालें, जो कि उसमें जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं वो थोड़ा सा मार देता है, वो ग्रब जो रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो इतना डालें, और अगले 6 महीने तक आप उसमें कोई खाद ना डालें।
1: अच्छा,
0: जब आप देखने लगे, मैं आम के को मुख्यतः बता रही हूँ, हालांकि सभी फल वृक्षों के जो डिमांड होता है वो अलग अलग होता है, जैसे पपीता के अलग होंगे, अमरूद के अलग होंगे, आम के अलग होंगे, लीची और आम के लगभग समान होते हैं क्योंकि उनका मौसमी के अलग होंगे, नींबू के अलग होंगे, सभी पौधों के जो है वो उर्वरक की मात्रा अलग अलग होती है। मैं आम और लीची को के बारे में भी बताऊंगी। अपने लगाने के 6 महीने के बाद आपको कोई भी उर्वरक नहीं देना है। जब 6 महीने के बाद जैसे आपने जून जुलाई में लगाया, आपको ठंडे के सीजन तक आपको कोई उर्वरक नहीं देना है, लेकिन सिंचाई आपको नियमित रूप से करनी है। जब आप फिर फरवरी का महीना आता है तब उसमें नए कोपल फिर से आने शुरू होते हैं और तब आपको लगता है कि जड़ इसके अच्छी तरह से जम चुके हैं, फिर आप उसमें जो है वो पौधे उसमें जो है खाद और उर्वरक देना शुरू करें। 1 साल के पौधे में मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा बताऊंगी, क्योंकि इस नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के लिए आप बहुत सारे उर्वरक यूज कर सकते हैं और सभी उर्वरक में इनकी मात्रा अलग अलग होती है, इसलिए मैं किसी एक उर्वरक का नाम नहीं लूंगी। मैं उनके तत्व जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है उनके मात्रा के बारे में बताऊंगी। तो पहले साल में एक पौधे में आपको लगभग 6 आम के पौधे में लगभग 60 से 70 ग्राम नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और 30 से 40 ग्राम फास्फोरस की ज़रूरत होती है। उसी तरह से 40 से 50 ग्राम या 40 से 60 ग्राम प्रति वर्ष एक साल के पौधे में पोटाश की जरूरत होती है, और ये मात्रा जो है हम हर साल बढ़ाते जाते हैं। पहला साल इतना, दूसरे साल उसका दुगुना, तीसरे साल उस तिगुना, इसी तरह से 10 साल तक इसकी मात्रा बढ़ाते हैं। और 10वें साल जो हमारी मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा 700 से 800 ग्राम, फॉस्फोरस की मात्रा 400 से 600 ग्राम, और पोटास की मात्रा जो है वो 600 से 800 ग्राम प्रति पौधे होती है। और ये निर्भर करता है, अगर आपकी मिट्टी जो है वो न्यूट्रिशन में कम है तो थोड़ा सा आप हायर साइड जो ज़्यादा अधिकतम मात्रा है वो देंगे, अगर आपके यहाँ जो है नाइट्रोजन पोटाश की मात्रा मिट्टी में सही है तो आप उसको कम वाली मात्रा दे सकते हैं। तो इस तरह से आप उसका उर्वरक का उपयोग करेंगे, और ये उर्वरक आप दो भागों में बांट के दें, 3/4 भाग आप जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में, और 1/4 भाग आप अप्रैल के महीने में दें, तब आपका फलन भी अच्छा होगा और पौधे का बढ़वार भी अच्छा होगा।
1: कहने का मतलब है कि जब जैसे हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें कम खाना देते हैं, लेकिन जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो उनकी शारीरिक क्षमता और बढ़ती जाती है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें भूख भी लगती है, खाना भी चाहिए। उसी प्रकार पौधों को भी आप जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो उनकी भी क्षमता या फिर उनकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, आप उसी तरीके से उन्हें उर्वरक और खाद देते जाएँ। और इसके बाद मैम, बागवानी जब हम करते हैं तो किस प्रकार के पौधों का चुनाव हमें करना चाहिए?
0: देखिए, पौधे लगाने की विधि तो मैंने बताई आपको, उसको उर्वरक में क्या, लेकिन पौधे किस तरह का चुनाव करें पौधे लगाने के लिए, मैं आम और लीची के संदर्भ में ही अभी बात करूंगी क्योंकि सारी चीजों को एक साथ समाहित करना थोड़ा मुश्किल होता है।
1: जी जी।
0: तो मैं आम और लीची को ही संदर्भ में बात करना चाहूंगी। जैसे आम के पौधे आप लेने जाते हैं तो वो 3 फीट से छोटा नहीं होना चाहिए, 3-4 फीट का पौधा होना चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 साल पुराना होना चाहिए, और 3 साल से ज़्यादा का भी नहीं होना चाहिए, वरना वो पौधे जो हैं वो फील्ड में जाकर के लगने में परेशानी होती है। आपको ध्यान देना चाहिए कि उसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगे हुए हों, स्वस्थ होना चाहिए, जहाँ तक हो सीधा होना चाहिए, उसकी टहनियाँ जो है सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, और जिन किस्मों का आपको आप लेना चाहते हैं पौधा उसी किस्म का होना चाहिए। इसके लिए मैं किसान भाई आपको ये कहूँगी, आपसे अनुरोध करूँगी कि आप हमेशा जो है रजिस्टर्ड नर्सरी या सरकारी नर्सरी से ही पौधे लें, ताकि ऐसा ना हो कि आपने आम्रपाली ले गया और 7 साल के बाद पता चला कि उसमें जो है वो दूसरे किस्म के फल आ रहे हैं। तो किस्मों की सुनिश्चित करने के लिए आप रजिस्टर्ड नर्सरी से ही पौधे लें, स्वस्थ पौधे लें, सही उम्र के पौधे लें, और तभी आपका जो है वो बगीचा में पौधे का बढ़वार अच्छा होगा और
1: फल अच्छे
0: होंगे और आपके मनचाहे किस्म भी मिल पाएंगे।
1: तो बहुत अच्छी बात कही किसान भाइयों, इस बात का आप खास ख्याल रखें। और इसके बाद मैम, अब हमने बागवानी कर ली, पौधे लगा लिए हैं, तो इसका रख रखाव देखभाल कैसे किया जाए?
0: देखिए, देखभाल में आपको सबसे पहले तो पोषण की है, फिर सिंचाई आती है। हमारे यहाँ जो है मध्य जून से लेकर के लगभग अगस्त सितंबर तक बारिश होती है, उसमें आपको अलग से सिंचाई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगस्त के बाद अगर उस फल वृक्ष में जिसमें कि फल नहीं लगने शुरू हुए हैं उसमें आप नियमित रूप से पानी दें, सप्ताह में आप जरूर पानी दें, अगर ठंडे के समय में आप 15 दिन के अंतराल पर भी पानी दे सकते हैं, लेकिन गर्मी के समय में आप हर सप्ताह में उसमें नियमित रूप से पानी दें ताकि उसको बढ़वार बनी रहे। जब आपका वृक्ष फलन में आ जाता है, यानी कि 4 से 5 साल के बाद वो फलन में आ जाता है लगभग, उस समय आपको आम और लीची के पौधे में नवंबर दिसंबर के महीने में पानी ना दें। अगर उस समय आप पोषण और पानी देंगे तो उसमें फल बनने की प्रक्रिया बंद हो करके और पत्तियां निकलनी आरंभ हो जाएंगी और वो फूल नहीं आएंगे। इसलिए किसान भाइयों इस बात का बहुत ही ध्यान रखें कि नवंबर दिसंबर के महीने में आम और लीची के पौधों में सिंचाई ना करें, पोषण ना दें, इसका बात आप ध्यान रखें। इसके अलावा बहुत सारे कीट व्याधि भी लगते हैं, तो आप नियमित खेत उस बगीचे की सफाई रखें, टहनियाँ जो इधर उधर बिखरी रहती हैं उसको काटें, बहुत ज़्यादा घने बगीचे ना होने दें, और कीट व्याधि का नियंत्रण सौ समय करें ताकि आपको ज़्यादा फैलने ना पाए, ज़्यादा आपको नुकसान ना हो।
1: तो किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी बात कही मैम ने और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर आप फल के वृक्षों को लगाना चाहते हैं तो किन किन बातों को आपको खास ध्यान रखना चाहिए, इनके बारे में मैम कहा, साथ ही किस्मों के बारे में, किस प्रकार का चुनाव करना चाहिए पौधों के किस्मों का, उनके बारे में मैम ने कहा, नए पौधे लगाने की विधि के बारे में कहा। इसके बाद हमने जाना कि बागवानी के लिए पौधों का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए और इसके उपरांत देख रेख कैसी होनी चाहिए। तो मैम आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद किसान भाइयों, धन्यवाद आपको भी
1: और आप सभी को। मैं किसान भाइयों आशा करती हूँ आप सभी से कि मैम के दिए गए सुझावों को आप अपनाएंगे और अपनी बागवानी को अच्छे तरीके से करेंगे और एक सफल किसान बनेंगे, साथ ही एक अच्छा फल आप बाजार में बिक्री के लिए ले जाएं और हमें भी खिलाएं। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 23 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। मौसम आधारित चेतावनी ये है कि जिले के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसान भाई बहनों को खेत के कार्य स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन हेतु तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। किसान भाई बहनों जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रोपाई इस महीने में पूरी कर ले। धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और खेत में जल जमाव बनाए रखें। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया का उपरी निवेशन करें यानी कि यूरिया डालें। धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों बाद यूरिया का ऊपरी निवेशन करना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा को खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखना बहुत जरूरी होता है। बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, जो मिर्च की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर लेनी चाहिए। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी एक और पंजाब लाल। संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगीति और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। पशुओं का विशेष ध्यान रखें, खुरपका और मुंहपका रोग होने की संभावना होती है तो उन्हें टीके जरूर लगवा लें और अगर रोग के कोई लक्षण दिखे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने की पानी की व्यवस्था करें, उन्हें संतुलित आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
0: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममता बाई वर्मा का।
2: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
0: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
2: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गांव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
0: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
2: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा बसंतीबाई और गणेश शिवदे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए।
2: जी,
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग।
2: जी,
0: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
2: बिल्कुल।
0: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
2: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं, ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
0: श्रोताओ, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
2: तो करते हैं शुरुआत कहानी की।
0: जी,
2: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
0: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया।
2: जी,
0: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
2: वो वही खाता जो मुर्गियां खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता। और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
0: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है।
2: जी,
0: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
2: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ, वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
0: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
2: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं, इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजीत जी, फिर क्या हुआ, क्या बाज कभी उड़ पाया?
0: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुट कुट करता रहा।
2: जी,
0: पता है उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी।
2: जी,
0: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था।
2: जी,
0: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
2: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओ, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
0: श्रोताओ, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते।
2: जी,
0: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो।
2: जी,
0: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओ, होता ये कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
2: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
0: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
2: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा। जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि एक कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
0: और श्रोताओं, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
2: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
0: तो हम कहना चाहते हैं,
2: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए, और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि
0: आप हैं।
2: बिल्कुल।
0: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी श्रोताओं। यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं, और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं, और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं,
0: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
2: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है, इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
0: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी,
4: और मैं हूँ झुमरू।
3: नमस्कार।

0: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
0: जल बचाओ। तो झुमकी क्यों?
1: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ,
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
2: जी झुमरू जी।
0: चलो झुमकी।
1: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ।
3: रखो तुम नल हर दम, नहीं हो जब उपयोग।

0: खुला कभी ना छोड़ो। नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तुम जोड़ो।
1: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
0: हाँ,
2: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
3: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरू जी?
0: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
1: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
3: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: जैसे?
3: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
0: बताओ बताओ।
3: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
0: ठीक है।
3: बताओ।
2: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ देखें, तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
3: और
1: यदि बनना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
3: हाँ, बहुत अच्छे।
0: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
2: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
3: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार तालियां।
0: अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
4: मेरे पास बहुत बड़ी पैसे।
0: अरे वाह।
3: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना? बोलो। जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
4: जल।
0: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता। लेकिन लेकिन लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुक मिलाने वाली।
3: आपने तो मेरी मन की बात कह दी। तो, चलिए
0: शुरू हो जाओ।
3: बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। ये पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
0: हाँ हाँ, बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चों, अब तुम्हारी बात।

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
4: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
5: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।

0: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे, मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा। इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशआर लिखे हैं।
1: मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का, बरसाना ओ नंदगांव में भी, देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगामे हयाते जाविदा था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
0: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवारे बाग में दफन है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम।

0: टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोपो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोपो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
4: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ मैं बताती हूँ। सुनो सुनो एक

0: कभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
3: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
8: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हम एक वार्ता सुनने वाले हैं। वार्ता का विषय है मृदा मानचित्रण। वार्ताकार हैं डॉक्टर अंशुमान कोहली सर। आप हैं प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
11: प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वयं मेरी तरफ से और बिहार कृषि महाविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग की तरफ से एक सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबसे एक सरल प्रश्न पूछकर अपनी वार्ता की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैरों के नीचे क्या है? हम हर दिन मिट्टी पर चलते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुक कर सोचते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण है। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, यह कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र और हमारे अस्तित्व की नींव है। आज मैं मृदा मानचित्र

क्षेत्रण अर्थात सॉइल मैपिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो एक शक्तिशाली साधन है जिससे कि हम इस मृदा रूपी छिपे हुए संसाधन को समझने में बहुत मदद ले सकते हैं। अब आखिर मृदा मानचित्रण क्या है? मृदा मानचित्रण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की पहचान, विश्लेषण और वर्गीकरण किया जाता है और फिर हम इस जानकारी को एक मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं और यह मानचित्र हमें बताता है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मौजूद है, उसकी उर्वरता कितनी है, वह कितना जल धारण कर सकती है, क्या वह खेती, निर्माण या संरक्षण कार्यों के लिए उपयुक्त है और उपयुक्त है तो उसकी उपयुक्तता विभिन्न कार्यों के लिए कितनी है। सरल शब्दों में मृदा मानचित्रण हमें बिना हर जगह खुदाई किए मिट्टी को देखने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि मृदा मानचित्रण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मृदा मानचित्रण कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मसलन कृषि। किसान भाई मृदा मानचित्रों का उपयोग यह तय करने के लिए कर सकते हैं कि कौन सी फसल उगानी है, उर्वरक व सिंचाई का प्रबंधन कैसे करना है, और ऐसी जानकारी होने से उनका उत्पादन बढ़ता है और अपव्यय कम होता है। साथ ही साथ मृदा मानचित्रण की एक भूमिका पर्यावरण संरक्षण में भी है। मृदा मानचित्रण उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां कटाव, प्रदूषण या भूमि क्षरण का खतरा होता है, जिससे बेहतर संरक्षण योजना बनाई जा सकती है। साथ ही साथ शहरी योजना बनाने में भी मृदा मानचित्रण का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इंजीनियर और योजनाकार भवन, सड़क और अन्य संरचनाएं बनाने से पहले मृदा मानचित्रों का उपयोग करते हैं और योजनाकार

स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा जलवायु अध्ययन में भी मृदा मानचित्रण का की अहम भूमिका है। मिट्टी में कार्बन संग्रहित होता है, इसका मानचित्रण वैज्ञानिकों को कार्बन चक्र और जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि यह मृदा मानचित्रण किया कैसे जाता है। ऐसा नहीं कि मृदा मानचित्रण बिल्कुल एक नई तकनीक है, यह तकनीक पिछले कई दशकों से एक प्रभावी माध्यम है प्लानिंग का, योजना बनाने का। परंपरागत रूप से मृदा मानचित्रण में फील्ड सर्वे शामिल होते थे। मृदा वैज्ञानिक मृदा के नमूने एकत्रित करते थे, उन्हें प्रयोगशाला में विश्लेषित करते थे और फिर हाथ से मानचित्र बनाते थे। परंतु आज आधुनिक तकनीकों ने इस प्रक्रिया को बदल दिया है। अब उपग्रहों के माध्यम से रिमोट सेंसिंग की जाती है, भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है, GPS तकनीक का प्रयोग किया जाता है और इन सब के साथ डिजिटल मृदा मानचित्रण मॉडल तैयार किया जाता है। यह सब तकनीकें मृदा मानचित्रण को अधिक तेज, सटीक और विस्तृत बनाते हैं। मृदा के मानचित्र कई प्रकार के हो सकते हैं। अपने उद्देश्य के आधार पर हम मृदा मानचित्र तैयार करते हैं। मसलन सामान्य मृदा मानचित्र, यह एक बड़े क्षेत्र का अवलोकन देते हैं, जैसे कि एक प्रदेश, पूरा देश या फिर एक जिला। और विस्तृत मृदा मानचित्र, यह छोटे खेतों या छोटे क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि यह छोटी से छोटी जो विविधता है खेत में उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमें विषयगत मानचित्र भी देखने को मिलते हैं, मसलन pH, नमी या जैविक तत्व इत्यादि जैसे विशेष गुणों पर केंद्रित करते हुए अगर मानचित्र बनाए जाते हैं तो वह एक विषयगत मानचित्र की श्रृंखला में आते हैं। अब मृदा मानचित्रण करना यूं तो कहने को बहुत आसान सी प्रक्रिया है और कई दशकों से इस पर वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, परंतु मृदा का मानचित्रण करने में कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। इसके लाभों के बावजूद जो विभिन्न चुनौतियां मृदा वैज्ञानिक देखते हैं उनमें से मुख्य हैं कि छोटे क्षेत्रों में भी मिट्टी में काफ़ी विविधता होती है। तो जब हम छोटे क्षेत्रों का मानचित्रण करते हैं तो यह विविधता दर्शाने में हमें कई उन्नत तकनीकों का सामना करना पड़ता है, कई उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है और हमारी जो मृदा में मानचित्रण करना है उसकी कॉस्ट भी बहुत ऊपर चली जाती है। डेटा संग्रहण समय लेने वाला और महंगा हो सकता है। तो आजकल विभिन्न तकनीकों से डेटा संग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी एक प्राइस के साथ आती हैं। तो कोई भी मृदा मानचित्रण की प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी हो सकती है, साथ ही साथ इसमें कुशल विशेषज्ञों और उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है जो कि सब जगह सुलभ नहीं होती। हालांकि नई तकनीकें जैसा मैंने ऊपर बताया, उपग्रहों, भौगोलिक सूचना प्रणाली, GPS तकनीक इत्यादि का यूज करके इन समस्याओं से निपटा जा सकता है, परंतु फिर भी ये चुनौतियां हमेशा हमारे सामने रहती हैं। इन चुनौतियों के चलते हम मृदा मानचित्रण के भविष्य को कैसे देखते हैं? भविष्य, इस तकनीक का भविष्य बहुत आशाजनक है। आज के ज़माने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और उपग्रह इमेजिंग में प्रगति के साथ मृदा मानचित्रण अधिक सटीक और सुलभ तकनीक बन गई है। मृदा मानचित्र अधिक से अधिक सटीक और सुलभ होते जा रहे हैं। भविष्य में किसान अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय में मृदा डेटा का उपयोग करके तुरंत निर्णय ले सकेंगे और हम यह कह सकते हैं अंत में कि मृदा मानचित्रण केवल एक वैज्ञानिक गतिविधि नहीं है, यह सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को बेहतर समझकर हम अधिक भोजन उगा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप जमीन पर चलें, याद रखें आपके पैरों के नीचे एक पूरी दुनिया है

0: जिसे समझा जाना बाकी है। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और मृदा मानचित्रण के बारे में इतनी सारी बातें आपने विस्तार से बताई। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों को आज की वार्ता से बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी, जानने को मिली होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM गेन के साथ, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं। खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं,
सही जानकारी से फैसला ले। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपके होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
4: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 23 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। मौसम आधारित चेतावनी ये है कि जिले के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसान भाई बहनों को खेत के कार्य स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन हेतु तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। किसान भाई बहनों जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रोपाई इस महीने में पूरी कर ले। धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और खेत में जल जमाव बनाए रखें। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया का ऊपरी निवेशन करें यानी कि यूरिया डालें। धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों बाद यूरिया का ऊपरी निवेशन करना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा को खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखना बहुत जरूरी होता है। बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जो मिर्च की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर लेनी चाहिए। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगीति और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। पशुओं का विशेष ध्यान रखें, खुरपका और मुंहपका रोग होने की संभावना होती है तो उन्हें टीके जरूर लगवा लें और अगर रोग के कोई लक्षण दिखे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने की पानी की व्यवस्था करें, उन्हें संतुलित आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफ एम।

0: आप सुन रहे हैं हमारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन। बिहार कृषि विश्वविद्यालय से चलने वाले इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन से आपको कृषि, स्वास्थ्य और लोक मनोरंजन के अलावा समय समय पर जानकारी दी जाती है, आपको आगाह किए जाते हैं इस तरह के स्पैम कॉल के बारे में जिससे आप ठगी के शिकार होते हैं। तो इसी विषय पर आज हम आपके लिए, किसान भाइयों के लिए, एक एक्सपर्ट के तौर पर, एक विशेषज्ञ के तौर पर आप के समक्ष हम लेकर आए हैं, जो हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर उपलब्ध हैं। और इनका नाम है श्री अभिनव दास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनव जी।
1: जी धन्यवाद ईश्वर जी।
0: अभिनव जी के बारे में हम आपको बता दें कि ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और यहाँ के एग्री स्टार्टअप भी हैं, जो कि सब एग्री से चलने वाली परियोजना के माध्यम से अपना एग्री स्टार्टअप चला रहे हैं। साथ ही आप एक साइबर एक्सपर्ट भी हैं और आपने एक किताब लिखी है जो कि जिसका नाम है वेवकूफ, और इस चर्चित किताब के आप लेखक हैं। साथ ही बिहार पुलिस के साथ मिलकर आप लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो अभिनव जी, आप हमारे किसान भाइयों को और खासकर जो ग्रामीण श्रोता हैं हमारे, उन्हें बताएं कि जो साइबर फ्रॉड है या फिर जो ठगी है, वो किस प्रकार से बैठे बैठाए उन तक पहुंचता है और वो इस झांसे में आ जाते हैं।
1: देखिए, आसान भाषा में कहें तो सबसे पहले अगर फोन आ रहा है इस तरह का, किसी भी तरह का जो साइबर कॉल होता है, जो साइबर क्राइम से रिलेटेड कॉल होता है, या तो कॉल के माध्यम से आता है या मैसेज के माध्यम से होता है, और ग्रामीण क्षेत्र में ईमेल तो यूज होता नहीं है, तो नॉर्मली इसी फॉर्मेट में आता है कि आपको कॉल आएगा, कुछ इस तरह के लुभावने वादे किए जाएंगे कि ऐसा हो जाएगा, चाहे वो किसान है तो KYC के नाम पे हो, या खाद कुछ कम मात्रा में, कुछ कम पैसे में मिल जाए। तो इस तरह की चीजें जो लोगों को तुरंत से इंस्टेंटली अपीलिंग लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है।
0: बिल्कुल, यानी कि आप जिस माइंडसेट में होते हैं, जिन परिस्थितियों में होते हैं और जो जिस तरह का एक माहौल चल रहा होता है आपके जीवन में, चाहे वो आप एक फेस्टिव सीजन हो तो उसमें कुछ बोनांजा ऑफर के तौर पे आ सकता है, किसान सम्मान निधि के वितरण का समय चल रहा हो, तो ऐसे में आपको KYC के नाम पर इस तरह के कॉल आ सकते हैं, या फिर बैंक से जुड़े हुए किसी भी बैंक का नाम लेकर के आपके पास KYC या अन्य किसी तरह के सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए ये कॉल आते हैं। तो ये एक जो
1: इसमें एक चीज मैं जोड़ूंगा, जैसे एक इसी फेरिस्त में एक होता है जो आप अभी देख रहे हैं कि वृद्धजनों को जो है सरकार योजना चलाती है कि वृद्धावस्था पेंशन, तो उसके लिए भी समय समय पर जो है KYC के नाम पर के ठगी की जाती
0: है। बिल्कुल, तो KYC के नाम पर ही सबसे ज्यादा ठगी होती है, चाहे वो वृद्ध जनों के लिए हो या फिर महिलाओं को किसी तरह के एक निधि का वितरण हो, या अन्य किसी प्रकार के भी सुविधा के लिए, बच्चों के पढ़ाई के नाम पे भी आता है, सब्सिडी के नाम पे बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपसे हमेशा सतर्क रहने के लिए बड़े बड़े विज्ञापनों के साथ आपको टेलीफोन कॉल के माध्यम से, आजकल जब आपको रिंगटोन में से पहले आपको आगाह किया जाता है कि अगली कॉल किसी स्कैमर का हो सकता है, फिर भी हमारे जो ग्रामीण बंधु हैं इसमें, ऐसे किसान भाई तो झांसे में आ सकते हैं, लेकिन युवा जन भी हम देखे हैं कि अलग अलग तरीके से झांसे में आ जाते हैं। जैसे कोई वो एक उनके पास कम अवधि में ज्यादा पैसे को लगाने को लेकर के, तो इस तरह के भी मामले आपने सुने हैं या फिर आपके संज्ञान में आया है?
1: जी देखिए, क्या होता है कि जब हर एज के लिए अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे अब एक कम उम्र का युवा है तो उसके लिए लव बॉम्बिंग टाइप का बोल सकते हैं कि जैसे सेक्सटॉर्शन होता है, ये सारी चीजें जो चलती है जो कि अलग अलग लोगों के लिए, अब किसान है तो किसान के लिए उस तरह का हो जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं जहाँ की शिक्षा जो टेक्नोलॉजी को लेकर के कम है, तो उनको जो क्राइम करने का जो तरीका है उनके प्रति वो डिफरेंट होता है। साइबर बुलिंग एक अलग चीज है जहाँ की महिलाओं को फोटो और मॉक करके या इस तरह की चीजें करके उनको परेशान किया जाता है साइबर की दुनिया में, तो ये सारी तमाम चीजें हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के क्राइम होते हैं।
0: जी, तो इसका मॉडल भले ही अलग अलग हो सकता है, यानी कि ये कई तरीके से आप तक पहुंचते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है, आपके खाते को खाली कर देना। और कोई किसी के खाते में मामूली सा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, लेकिन आपके जीवन में बहुत ही अहमियत रखता है, ये हमें पता है। अब ये बताएं अभिनव जी कि इस तरह के मामले एक फोन कॉल से शुरू होता है या एपीके डाउनलोड कराने से होता है, तो ऐसे में सबसे पहले है कि क्या सतर्कता बरतनी चाहिए?
1: देखिए, जब कोई अननोन नंबर से कॉल आता है या मैसेज आता है तो सबसे पहले उसको संदेह की दृष्टि से देखें। ये एक मतलब थंब रूल है, इसको मान के चलना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की कॉल आ रही है जिसको कि मैं नहीं जानता हूँ, तो वो स्कैमर, जैसा कि प्रचार में भी आपने बताया कि उस तरह की चीजें चलती है, तो उसको मान के चलना चाहिए। और आप जब उसको वेरीफाई कर लें, चाहे लिंक को वेरीफाई कर लें, जो इंटरनेट का जो एड्रेस होता है जिसको URL टेक्निकली बोलते हैं उसको वेरीफाई कर लें, या नंबर क्या वेरीफाइड नंबर से आ रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि आपको सतर्कता के लिए। और अगर इस तरह की कुछ चीजें होती है तो आपका साइबर हेल्पलाइन है 1930, जो कि राष्ट्रव्यापी साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पे भी आप चेक कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट आपके आसपास में रहते हैं, उनसे भी जानकारी ली जा सकती है, लेकिन सबसे भरोसेमंद जो है 1930 पे आप करके आप इस तरह की जानकारी भी ले सकते हैं अगर कुछ वैसा आपको किसी लगता है। जी
0: जी, तो 1930 जो है, जिस तरह से आप डायल 100 करते हैं, डायल 102 करते हैं एम्बुलेंस के लिए, तो आपको यहाँ पे 1930 भी याद रखना है कि जब भी आपको ऐसा कोई शक लगे तो आप इस पर जा सक कॉल कर सकते हैं। साथ ही एक संचार साथी एक पोर्टल भी भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा दिया गया है, जिसपे आप इस तरह की शिकायत कर सकते हैं, जिसमें कि अगर आपके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की गई हो तो आप उस नंबर को दे सकते हैं, जिसको कि वेरीफाई करने के बाद अगली बार से वो कहीं भी उस फोन कॉल से धोखाधड़ी ना हो, इस बात को लेकर के वो सतर्क हो जाता है वो टेलीकॉम मंत्रालय, और उस नंबर को ब्लॉक करता है। तो जो किसान भाई हैं, जो ग्रामीण बहनें हैं, हम बता दें कि आज के पहले के ज़माने में जब हम मोबाइल से दूर रहते थे या मोबाइल के हमारे बीच में नहीं आया था, हमारे जीवन में नेट बैंकिंग जैसी चीज़ें नहीं थी, बैंक खाते हमारे सबके पास नहीं होते थे, तब भी ठगी के हम शिकार कैसे होते थे? जैसे हम रेल में जाते थे, कोई ना कोई मिल जाता था और हमसे बड़ा ही मिलनसार तरीके से बातें करता था, और फिर उसके बाद हम उसके झांसे में आ जाते थे, कुछ खा लेते थे और बाद में हमारा वो सामान लेकर के रफू चक्कर हो जाता था। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है, यानी कि जो आपके पास स्कैमर का कॉल आता है या आपसे वो किसी भी माध्यम से पहुँचते हों, वो आपसे बहुत ही मिलनसार तरीके से बात करेंगे, ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण ये है कि वो आपको धमकी देते हैं। एक अभिनव जी बहुत ही कॉमन चीज़ जो है वो विगत 2-3 सालों में चली, कि वो जज बन करके या पुलिस स्टेशन का वो वीडियो दिखा करके इस तरह के जो है वो ठगी बहुत ही तरीके से चला है।
1: जी,
0: तो अब तो लोग इस मामले में अवेयर हो गए होंगे, बहुत जागरूक हो गए होंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जो स्कैमर है वो हमारे जो साइबर नॉलेज के हिसाब से या हमारी जो अवेयरनेस के हिसाब से वो अपना मॉडल भी बदलते रहते हैं?
1: जी, देखिए वो क्या होता है कि अपने आप को अपग्रेड करते हैं, हमें भी अपग्रेड करने की जरूरत है। जैसे उनको आप देखेंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग भी साइबर क्रिमिनल बनते हैं और बहुत कम पढ़े लिखे, क्योंकि उनका काम करने का तरीका अपने आप को अपग्रेड करने का रहता है। टेक्नोलॉजी में क्या है कि आपको अपग्रेड करना होता है, और खास करके हमारे जैसे देश में जहाँ की अशिक्षा बहुत है अभी भी, और खास करके साइबर को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के अशिक्षा अभी बहुत है, और मोबाइल का जिस लेवल पे हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी इंटरनेट यूज कर रहा है, तो उसमें शिकार बनने का संभावना भी उतना ही बढ़ जाता है। तो आपको सतर्कता जो है अपनी और बढ़ानी होगी। इस तरह की चीजें जो है इतने सरकारी स्तर पे हम भी हो या जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, चाहे RBI है, बैंक है, पुलिस करती है, सारे लोग के करने के बाद भी साइबर क्राइम की संख्या नहीं घट रही है। आप देखेंगे अगर सिर्फ बिहार में साइबर क्राइम के पर डे लगभग 4000 केस मतलब कॉल आते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, तो ये समझ लें कितना तेजी से बढ़ रहा है। जो ट्रेडिशनल जो क्राइम था पहले, जिस तरह से क्राइम होते थे, उसमें बदलाव आया है और नए जो क्राइम का तरीका है उसमें साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये अक्रॉस इंडिया, ये पूरे भारतवर्ष में ऐसा है। हमारे हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में खास करके ज्यादा, क्योंकि अशिक्षा जहाँ ज्यादा रहेगी वहां ज्यादा समस्या रहेगी, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अशिक्षा ज्यादा है तब पढ़े लिखे डॉक्टर्स भी फंस जाते हैं, आपने देखा बैंकर्स भी फंस जाते हैं बड़े बड़े। अभी बैंक का एक केस आया था जहाँ की करोड़ों के ट्रांजेक्शन एक बैंकर ने कर दिया। तो अच्छे पटना का एक केस है जहाँ की एक डॉक्टर से लगभग 24-25 लाख ये कर लिया गया। तो ऐसी भी बात नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं बन सकते हैं साइबर क्राइम के शिकार। हाँ, लेकिन यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में संभावना ज्यादा होती है और केवाईसी के नाम पे एक हड़बड़ाहट आ जाती है, एक हड़बड़ा ये मेरा पैसा रुक जाएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तो इस तरह की जो चीजें होती है इसमें हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। केवाईसी का जो तरीका होता है वो अलग होता है, जैसे आप अगर कोई वेरीफाइड जगह पे जाते हैं तो वहां पे जाके करें, फोन पे केवाईसी जनरली कोई भी कंपनी नहीं करती है, चाहे बैंक भी है या कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूशन है, केवाईसी जनरली फोन पे नहीं करता है। फिजिकली विजिट करने का प्रयास कीजिए अगर आपको शिक्षा है नहीं समझ में आ रहा है तो। जी,
0: तो ये जो आपके पास जो जागरूकता है वही बचाव है। तो ऐसे में आपसे कोई जानकारी अगर मांगी भी जाती है तो कई दफा आप उसको बेधड़क दे देते हैं कि हाँ बिजली बिल हमारा, बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, या फिर कोई सब्सिडी गैस का आने वाला होगा वो नहीं आएगा, या फिर किसी तरह की लॉटरी की बात होती है। तो एक दो बातें आप जरूर संज्ञान में रखें कि जब भी बैंक अगर असली भी फोन करते तो आपसे पूरी जानकारी वो नहीं लेते, आपके मोबाइल नंबर के आखिरी के 4 डिजिट पूछेंगे, या फिर आपके अकाउंट के आखिरी के 4 डिजिट पूछेंगे, या आपके आधार के आखिरी के 4 डिजिट पूछेंगे। तो पूरी जानकारी कभी नहीं उपलब्ध कराना है। और साथ ही अगर एक और भी जानकारी कि किसी भी तरीके का आपको अगर केवाईसी डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी भी जमा कर रहे हो, आजकल हार्ड कॉपी ली जाती है कई जगहों पे, तो आप एक जानकारी ये दी जाती है कि जो आधार का जो पूरा आप कॉपी देते हैं वहाँ भी स्कैम होने की संभावना होती है। आप उस आधार के पहले के जो 4 डिजिट है या 5 डिजिट है आप उसे ढक करके भी आप उसे दे सकते हैं और वो पूरी तरह से स्वीकार्य है। तो इस तरह से अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सुरक्षा की भी आप के ऊपर जिम्मेदारी है, साथ ही इस तरह की जो सतर्कता है उसमें बरतने की आपके से अपेक्षा की जाती है। आप कोई एक ऐसा वाकया आप साझा करना चाहेंगे अभिनव जी जिसमें कि लोगों को शिक्षा मिल पाए?
1: मैं करता हूं। जी, एक किसान से जुड़ा ही मैं करूंगा और पूरे नॉर्थ बिहार में ये और भागलपुर एरिया में भी ये चीज इम्पैक्ट हुआ था, जिसमें कि हम लोग अक्सर किसान भाई जो होते हैं, ग्रामीण भाई जो होते हैं, वो जाते हैं जो आधार केंद्र होता है, AEPS केंद्र होते हैं जहाँ की पैसे निकालने के लिए AEPS पेमेंट सिस्टम बोलते हैं, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो वो आधार केंद्र पे जाकर के अंगूठे लगा करके पेमेंट निकालने के लिए जाते हैं। तो मैंने अपनी किताब जो है वो एक बुक जो कि आज बेस्ट सेलर है उसमें भी इस कहानी को लिखा है। और क्योंकि वो बहुत क्लोजली मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ जो उसके भुक्तभोगी थे, जो परेशानी में पड़े उसके चलते, तो मैंने देखा कि एक बड़े स्तर पे एक मतलब एक साइबर स्कैम हुआ जिसमें बहुत से लोगों के पैसे उनके अकाउंट से निकल गया, उनके बिना किसी OTP दिया गया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने OTP दिया ना कॉल पे कभी कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उनके अकाउंट से पैसे निकल गए। और जब मैंने स्टोरी में लिखा भी है कि वो जब आधार केंद्र पे पैसा निकालने के लिए और जाते हैं तो अपनी भाषा में बोलते हैं कि हम तो निकालवे नहीं किए हैं, हम तो आए भी नहीं थे, कैसे मेरे अकाउंट से निकल गया। लेकिन जब उसका जो इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें पता चलता है कि जो आधार केंद्र में जो जो अंगूठा लगता है वो डेटा कहीं से जो है वो लीक हो गया था। वो कहाँ से लीक हो गया था? तो जब आप जमीन का मोटेशन वगैरह कराते हैं या उस तरह की कुछ डेटा रहती है जो कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहती है, तो वहां पे अंगूठा जो होता है उसको स्कैमर्स जो है उसका एक बेसिकली एक बोल सकते हैं रेप्लिका बना लेते हैं सिलिकॉन का और उसको यूज करते हैं आपके फिंगरप्रिंट के रूप में। तो इस तरह से उनके अकाउंट से पैसा निकाला गया और अक्रॉस बिहार में करोड़ों का ट्रांजेक्शन हुआ इस तरह का। एक जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके अकाउंट से इस तरह के लगभग 50 अकाउंट में इस तरह का समस्या आया। और जब तक इस पे सरकार का ध्यान जाए, जब तक इसका जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनका ध्यान जाए, बहुत सारे किसानों के साथ, बहुत सारे किसान भाई जो होते हैं मतलब बहुत छोटे छोटे अमाउंट 1,000, 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे करके जमा करते, तो सारे पैसे निकाल लिए गए थे। तो इस तरह से एक बड़े स्तर पे ये बिहार में ही घटना हुई थी और इससे हमें सीख लेने की जरूरत है कि जब हम आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के पास भी जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, मोबाइल पे मैसेज भी देखना नहीं जानते, तो वहां पे आपको बहुत सतर्क रहना है। पेमेंट अगर निकल रहा है, मैसेज क्योंकि नहीं आता है तो पता भी नहीं चलता है, मैसेज देखना नहीं आता है, ये सारी समस्या है। लेकिन हम अगर सतर्क रहेंगे, हम अपने जब किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि आधार का जो आपका जो फिंगरप्रिंट है, जो आपका अंगूठे का निशान है, ये पूरी जिंदगी चेंज नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप पासवर्ड अगर कहीं लीक हो रहा है तो ये तो आप चेंज कर लेंगे, बदलाव कर लेंगे, तो पासवर्ड आपको एक ऑप्शन आ गया, किसी के पास आपके पास पासवर्ड आपका चला गया तो आप चेंज कर लेंगे, लेकिन फिंगरप्रिंट तो पूरी जिंदगी ताउम्र आपके साथ रहती है। तो यहाँ पे अपने जब फिंगरप्रिंट दें, या जैसा कि आपने बताया कि आधार से रिलेटेड कोई तरह की इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा सतर्क और एक्स्ट्रा सतर्कता की जरूरत है, खास करके वैसे लोगों को जो कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं, AEPS सिस्टम जिसको बोलते हैं। जी
0: जी, तो ये आपने बताया कि किस तरीके से संगठित रूप से इस तरह के कारनामों को अंजाम दिया जाता है, जबकि एक तरफ जो स्कैम कर रहा है वो पूरी तरह से संगठित है, पूरी तरह से वो तैयार बैठा हुआ है आपको जाल में कसने के लिए, वहीं आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के इन चीजों से दूर हैं। तो ऐसे में इस शिकार को पकड़ने के लिए उनके पास बहुत ही एक अच्छा माहौल मिल जाता है, एक अच्छा उनके पास बढ़िया शिकार मिल जाता है कम मेहनत में।
1: जी,
0: अब एक बात आती है कि एक मिथ की भी बात हम करेंगे, जो आम तौर पर ग्रामीण भाई बहन आज भी वो मानते हैं, और कई दफा हमने देखा है कि जो रिटायर्ड पर्सन हैं या ऐसे पढ़े लिखे लोग, जो अच्छे खासे सैलरी वाले भी जो लोग हैं, उनके बारे में भी मैं जानता हूं कि वो इस बात से बिल्कुल निफिक्र हैं कि चूंकि उन्होंने UPI एक्टिव किया ही नहीं है, उन्होंने किसी तरह का कोई नेट बैंकिंग एक्टिव नहीं किया है, तो वो बहुत कूल रहते हैं कि आप लोग नए जमाने के लोग हैं, आप लोग वो सब करते हैं, इसी वजह से आपके साथ धोखाधड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे ये बात बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली है कि उन लोगों के साथ भी उतनी ही ज़्यादा धोखाधड़ी की संभावना है जितना कि UPI चलाते हैं लोग। क्योंकि जो UPI चलाते हैं उनके पास एक्सेस होता है, वो तुरंत अपना खाता देख सकते हैं कि कितना पैसा है क्या है, और आप बिल्कुल ही कटे हुए होते हैं। हो सकता है कि आपके पास SMS आता, वो भी आप नहीं देखते हो। तो ऐसे लोगों को हमने देखा, और ऐसे भी स्कैम हमने भी सुने हैं कि मेरा तो ना नेट बैंकिंग था, ना तो मेरा UPI था, फिर भी मेरा कैसे पैसा उड़ गया। तो इस मामले में इस मिथ को, यानी कि इस भ्रम को बिल्कुल दिमाग में न रखा जाए कि मेरा किसी तरह का कोई भी डिजिटल लेन देन की सुविधा हमने एक्टिव नहीं कराई है, इसलिए मैं बिल्कुल इसमें बच सकता हूं। आपका क्या मानना है अभिनव जी?
1: एकदम से आप सही बात बोल रहे हैं। और एक जो साइबर क्राइम में एक वर्ड आता है, गोल्डन आर बोलते हैं उसको हम लोग। जब इस तरह की समस्या, जब आपने बताया कि आपको जानकारी ही जब नहीं है कि आपके अकाउंट से पैसे गए हैं, तो गोल्डन आर क्या होता है, जब 1 से 2 घंटे के अंदर आप जब कंप्लेन करते हैं, 1930 जो हमने नंबर बताया साइबर हेल्पलाइन जो है उस पे कंप्लेन करते हैं, तो आपके पैसे को बचने की संभावना रहती है, वापस मिलने की संभावना रहती है। गोल्डन आवर्स के बीच में। लेकिन इससे दूर जब जाता है, होता है क्या है कि साइबर क्रिमिनल जो है ये सारे पैसे जो है क्रिप्टो करेंसी या अलग अलग ऐसे जगह भेज देते हैं जहां की वह पैसा पता भी नहीं चलता है कि ये कहाँ है। एक तरह से समझिए भूल भुलैया में आपका पैसा चला गया, कहाँ से आया उसका भी सोर्स नहीं पता चलता है। तो ऐसी स्थिति में आपका पैसा जो है वो आपको नहीं मिल सकता है। तो आपको जानकार होना जरूरी है जब आपके साथ साइबर क्राइम हुआ। अभी मैं एक केस बता रहा हूँ, मुजफ्फरपुर का एक केस है जहां की उनको बहुत लेट से पता चला, एक ओल्ड एज के रिटायर्ड आदमी थे, उनको पैसा के बारे में जानकारी जो है लगभग 15 दिन बाद पता चला, क्योंकि अकाउंट जनरली लोग अब ये जो है पासबुक अपडेट नहीं कराते
0: हैं, तो एक पैसा उनके पास एक्सेस नहीं होता है, ऐसे लोगों के पास जो नेट बैंकिंग या इससे जुड़े नहीं होते हैं, तो बाकी उनको पता तो बहुत बाद में चलेगा।
1: जी, तो उस केस में क्या हुआ कि बहुत दिन बाद दिखा, और उसके बाद भी देखिए संभावना रहती है, लेकिन संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि अगर क्रिप्टो में नहीं, अगर नॉर्मल जगह पे कहीं पेमेंट गया है तो उसका ट्रेल, मेरे पास ये जब केस आया तो मैंने देखा तो वो एक ट्रेल पता चला कि हाँ यहाँ पे गया है पेमेंट, तो फिर उसके बाद वो रिकवर हुआ। लेकिन जनरली इस तरह के केसेस में आपके पास अगर इतना दिन का समय आप दे देते हैं किसी क्रिमिनल को, तो उसके बाद उतना पैसा मिलने की जो संभावना है जो वो बहुत कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। जी
0: जी तो इसमें आपको उस गोल्डन आवर को यानी कि उस स्वर्णिम पल को प्रयोग करना है जहां से आपका पैसा रिकवर हो सकता है। चलिए हमने बात किया कि कैसे पहुंचते हैं, पहुंच जाते हैं तो क्या क्या उनका मॉडल अप्रेंटिस है, किस तरह का हथकंडे अपनाते हैं, ये सारी बातें हो गई। और अगर धोखाधड़ी हो ही जाए तो पहला तो ये आपने बताया कि हमें गोल्डन आवर को प्रयोग करना है, इसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं?
1: देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है जो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है, ठीक है, तो उस पे जाना वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि cybercrime.gov.in करके गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जहां पे कि आप रजिस्टर कंप्लेन करने का एक ऑप्शन आता है और उसमें तमाम तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे, वुमेन रिलेटेड अगर क्राइम है, फाइनेंशियल फ्रॉड है या जिस तरह के क्राइम है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, पहला। दूसरा कि आप अपने जो कंप्लेन किया उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि जब कंप्लेन करेंगे इंस्टेंट तो रिपोर्ट आएगा नहीं, लेकिन उस पे जो एक कार्रवाई होगी उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। जैसे आपने कोई भी तरह का साइबर धोखाधड़ी हुआ तो आपने सारे डिटेल्स डाले, उसमें स्क्रीनशॉट डाले, किस नंबर से क्या हुआ नहीं हुआ वो सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं, और सारे इन्फॉर्मेशन डालने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जारी होता है आपके मोबाइल के थ्रू, और वो एक्नॉलेजमेंट के थ्रू आप जो है अपने कंप्लेन को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको समझने की जरूरत है कि राष्ट्रीय साइबर रिपोर्ट अपराध जो है रिपोर्टिंग पोर्टल जो है वो cybercrime.gov.in, इसको लिख करके रखें दिमाग में और इसके बारे में जानकारी रखें, अपने आसपास के लोगों को भी बताते रहें। और दूसरी है 1930। जी
0: हाँ, तो 1930 पे जा सकते हैं या फिर cybercrime.com पे जा सकते हैं। क्या स्थानीय पुलिस स्टेशन में इस तरह की कोई सुविधा होती है जहां पर के लोग अपनी फरियाद लेकर के जा सकते हैं?
1: जी देखिए, अभी क्या है कि बिहार में ये बिहार उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां की हर जिले में लगभग साइबर थाने हैं, लगभग। तो साइबर थानों का कॉन्सेप्ट बिहार में अब आ गया क्योंकि साइबर क्राइम बढ़े, पहले एकमात्र साइबर सेल का ऑफिस हुआ करता था, आज की डेट में लगभग हर जिले में साइबर थाना है। और साइबर थाना लगभग जो है आप जब इस तरह की चीजें आती है तो वहां पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप थाना जाने में फिजिकली हो सकता है कि समय लगे, तो उस केस में आप ऑनलाइन का जो है साधन सबसे पहले यूज करें, क्योंकि थाना में भी जाएंगे तो आप जब रिपोर्ट किए हुए रहेंगे तो एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू आप सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं, रिकॉर्डेड हो जाता है, वो सेंट्रली मॉनिटर होता है, उससे आपके जो अपराध में जो चीजें हुई है, चाहे वो सिर्फ अपराध सिर्फ फाइनेंशियल अपराध होगा जरूरी नहीं है, बहुत सारी अपराध ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के नहीं रहते हैं, जैसे बच्चों के खिलाफ कुछ अपराध हो सकता है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड हो, या महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराध हो सकते हैं वो भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं, तो उस तरह के अपराधों को भी रजिस्टर करने की सुविधा है इस पे। और जब आप इस तरह के अपराध को रिपोर्ट करते हैं तो आपके पास एक संभावना रहती है कि उस पे कुछ रिड्रेसल होगा, उस पे काम किया जाएगा। अब ऐसे जब जाएंगे थाने में जाएंगे तो वो इसी फॉर्मेट में जाना है, जैसे पहले एक मैनुअल जो रिपोर्टिंग होती थी अब इसमें जो है रिपोर्टिंग ऑनलाइन ही होती है, तो ये ज्यादा आसान है। और रजिस्टर कंप्लेन करने के लिए आप जब भी जाएंगे तो आपको एक बहुत आसान सा एक फॉर्म आता है जिसमें अपना नाम, अपने सारी चीजें, डिटेल, फोन नंबर और जो अपराध हुआ उससे रिलेटेड जो स्क्रीनशॉट अगर है तो वो आप इसमें अपलोड करते हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लेकर के आप जो है जानकारी हमेशा रखें। 1930 भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको cybercrime.gov.in हर तरह के अपराध के लिए, साइबर अपराध के लिए एकदम हैंडी है। जी
0: तो आपके साथ जब कोई साइबर धोखाधड़ी या फिर खाते का से पैसा निकाल लेने के का कांड हो जाता है तो आपकी मन स्थिति बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप की हो जाती है, आपको पता नहीं चलता कि हम क्या करें और क्या क्या करें। तो ऐसे में आप स्थानीय स्तर पे पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, आप सबसे पहले आप 1930 पे कंप्लेन करें, cybercrime.gov.in पे जाएं। और इसके अतिरिक्त अगर आपके पास किसी तरह का कोई दिमाग में बातें नहीं आ रही हो कि हम को क्या करना चाहिए, तो आप अपने साथी से मदद लें, क्योंकि उस समय आपकी जो मन स्थिति होती है उस लेवल पे नहीं होती है कि आप कहीं भी कुछ कर पाने में सक्षम होते हैं। ज़्यादातर हमने इस तरह के ग्रामीणों को देखा है कि वो ज़्यादा हाय तोवा में ही अपना वो वक्त जाया कर देते हैं।
1: जी
0: और हम भागलपुर के जो लोग हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उनके बीच जो आजकल जो सबसे जो अपडेटेड वर्जन जो काम कर रहा है, आजकल पिछले एक साल से काम कर रहा है, उसमें एक बहुत ही कॉमन देखा जा रहा है कि किसी न किसी अधिकारी या फिर कोई दोस्त या पुलिस वाले के नाम से व्हाट्सएप पे कोई संदेश आता है कि जो हो सकता है कि वो आपके फ्रेंड लिस्ट में हो। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब भी कोई नया फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो आप ज़रूर देख लें कि वो उसका जो प्रोफाइल है वो कितना पुराना है, कितने लोग उससे जुड़े हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो पिछले दो चार सप्ताह या दो चार महीने या दो चार साल पहले ही बनी हो और वो इसी मकसद से बनाई गई हो, क्योंकि हमारे अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे पांच लोगों के साथ हमने सुना है कि कोई हम आर्मी से ट्रांसफर हुआ है और हमारा सामान कहीं बेचना है।
1: नॉर्मल ट्रेंड है जी,
0: बहुत नॉर्मल है और लोग झांसे में आ जाते हैं, वो सामान का फोटो भेजते हैं। मैंने देखा, मैंने खुद ही उनको, चूंकि वो ट्रैप हो चुके थे हमारे मित्र, उनको मैंने उसमें बचाया। वो 75,000 डाल चुके थे और बाकी और भी पैसे डालते चले जा रहे थे और ये जो चीजें थी वो एक हफ्ते से चली आ रही थी। उनको पता नहीं था कि मेरे साथ साइबर ठगी हो रही है। तो वो सामान जो है आपको पूरा भेजा जाएगा, आपका सामान का फोटो भी आएगा, समय समय पे आपको नाके का ही फोटो आएगा, जबकि वो

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 23 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। मौसम आधारित चेतावनी ये है कि जिले के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसान भाई बहनों को खेत के कार्य स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन हेतु तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। किसान भाई बहनों जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रोपाई इस महीने में पूरी कर ले। धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और खेत में जल जमाव बनाए रखें। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया का ऊपरी निवेशन करें यानी कि यूरिया डालें। धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों बाद यूरिया का ऊपरी निवेशन करना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा को खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखना बहुत जरूरी होता है। बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जो मिर्च की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर लेनी चाहिए। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगीती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। पशुओं का विशेष ध्यान रखें, खुरपका और मुंहपका रोग होने की संभावना होती है तो उन्हें टीके जरूर लगवा लें और अगर रोग के कोई लक्षण दिखे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने की पानी की व्यवस्था करें, उन्हें संतुलित आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: at each corner. Four students are standing in a line. One student is bending down to pick up a ball. Another student is throwing the ball to the other side of grassy field. Page number 25. After throwing, students will run to collect the ball and place it back at point B. Purpose: to develop power in their throw and also to foster a quick response. Variation: vary the number of students in each team, vary the size of the playing area and the distance between the spots. Circle time: how did you predict the ball's direction after hitting the target, and how did you reach the ball quickly? Did you know focus and concentration are the key aspects to target precisely? On the bottom of this page, there is an image on which two circles are marked on the wall. One of them is blue in color and the other one is red in color. These two circles are the targets. One coach is also standing on the field.
1: Khel Yog. You were just listening to this audiobook, textbook of physical education and well-being for class 5. Narration: Meha Kheda. Sound recordist: Manju Kumari. Assistance in production: Chetna Sharma. Directed and produced by Vimlesh Chaudhary. This audiobook is presented to you by CIET NCERT.
2: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो, नाटक देखो, नाटक देखो, आओ।
3: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
4: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
4: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
5: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
6: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
7: क्या क्या क्या?
4: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
7: अच्छा,
6: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
4: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
8: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
4: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
8: 11 दोस्त?
4: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
8: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
4: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
8: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
8: टीकी, तो इसका हल क्या है?
4: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
8: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
8: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
9: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।

0: बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
3: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
8: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
9: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम एक ऐसे फूल के बारे में बात करने वाले हैं जो खूबसूरत तो होते ही है, साथ ही थोड़े लंबे समय तक टिकते भी है। जी हाँ, गेंदा के फूलों की खेती के बारे में आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ममता कुमारी। आप है मैम KVK सबौर से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो मैम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गेंदा की खेती का महत्व क्या है।
1: धन्यवाद उमा, हमारे किसान भाइयों का सादर अभिनंदन है। गेंदा का महत्व बहुत ज्यादा है आज के डेट में। हर जगह इसकी उपयोगिता है। कभी यह मंदिर तक ही सीमित था, लेकिन मंदिर की बात करें, चाहे किसी कार्यक्रम की बात करें, या किसी के विजय होने की अवस्था में करें, या किसी के जन्म की बात करें, या किसी की मृत्यु की बात करें, हर जगह गेंदा का फूलों का महत्व है। और गेंदा का बाजार भी भागलपुर में काफ़ी उपलब्ध है इसके लिए।
0: जी मैम, तो गेंदा के पौधों को लगाने का उचित समय क्या होता है?
1: गेंदा के पौधों को पूरे साल तक एक चक्र के अनुसार लगाते हैं, और उसके फूल खिलने की अवस्था को किसी खास आयोजन से जोड़ते हैं। गेंदा, जैसे जिन किसान भाइयों के गेंदा मुख्यतः हमारे यहाँ जाड़े में लगता है और इसको अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, लेकिन आज बाजार के डिमांड पे, मांग पर इसको अलग अलग समयों में लगाया जाता है। और खास समय को, जैसे अभी हमारे किसान दशहरा, दिवाली, छठ, ये सबको फोकस करने के लिए, छठ उस समय बाजार में गेंदा की लड़ी को उपलब्ध कराने के लिए किसान भाई अभी हमारे गेंदा का पौधा लगा सकते हैं। अभी लगाएंगे तो उनको अक्टूबर नवंबर में प्रचुर मात्रा में फूल रहेगा, मिला उपलब्ध रहेगा, जिससे वो मार्केट में इसका व्यापार कर सकें।
0: जी मैम, तो ये तो हो गई बात की कब लगाएं, तो लगाने का सही तरीका क्या है गेंदा के पौधों को?
1: गेंदा मुख्यतः बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है, और गेंदा का प्रवर्धन अगर आपके पास अच्छी प्रजातियां हैं तो उसके कटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। और अच्छी प्रजातियां की बात जब हम करते हैं तो बहुत सारी प्रजाति है, जैसे पुसा अर्पिता है, पुसा नारंगी है, जो मुख्यतः लोग रवि के सीजन में लगाते हैं। ऐसे हमारे IIHR बेंगलोर के द्वारा कई अच्छी प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिसमें से अर्का सुबह है, अर्का अभी है, अर्का भानु है। ये किसान हमारे अगर एक बार मंगा लेते हैं, ये सारी हाइब्रिड प्रजाति की हैं, और किसान मंगा लेते हैं और इसे कटिंग के द्वारा भी प्रवर्धित करते रहते हैं, तो उनके पास अपना पौधा रहेगा और वो अपना पौधा और प्रवर्धित बहुत आसानी से हो जाता है। गेंदा के लिए एक बीज सैया बनाया जाता है जिसमें बालू की मात्रा रहनी चाहिए, क्योंकि जो गेंदे का तना का स्वभाव होता है वो सकुलेंट टाइप होता है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर हम मिट्टी में लगाएंगे या जिसमें कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो उसके गलने की संभावना बढ़ जाती है। अतः कम पानी वाले बीज सैया बनाना है जिसमें बालू की मात्रा को दीजिए और उसको कटिंग के द्वारा लगाइए। कटिंग कैसे करें हमारे किसान, जैसे कि पौधा का ऊपरी भाग है जिसमें कली नहीं आया है, तो 3-4 गांठ को लेते हुए लगभग एक अंगुलिका की लंबाई का वो कटिंग करेंगे और एक गांठ को नीचे लगाएंगे, बीज सैया में लगाएंगे, और 2-3 गांठ को ऊपर रहने देंगे। और इस दौरान वो क्या करेंगे, जो सारी पत्तियां हैं, एपिकल पोर्शन, जिसको ग्रामीण भाषा में कहा जाए तो टूसा कहते हैं, उसे छोड़ करके सारी पत्तियों को हटा दें और उसे जमीन में लगा दें। तो वो जो सफलता है, जो पौधों के ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, जड़ पकड़ने की संभावना है, उसको बढ़ा देता है। तो ऐसे करके वो करेंगे तो लगभग 25 दिन में उनको गेंदा का पौधा तैयार हो जाता है और उसे पुनः वो भूमि में लगा सकते हैं।
0: जी मैम, तो आपने गेंदा के बाजार के बारे में भी बात की, तो गेंदा के बाजार के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए।
1: इसके पूर्व हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि गेंदा की खेती का सबसे खास पहलू ये है कि गेंदा की खेती में खर्च कम है और लागत कम है और मुनाफा ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर लें कि अगर एक किसान गेंदा की खेती करके 10 रुपया पा रहा है तो उसमें वो 3 रुपया और 4 रुपया ही खर्च कर रहा है, उसे शुद्ध मुनाफा 6 से 7 रुपया हो रहा है। तो इस तरह से करेंगे, क्योंकि गेंदा की खेती में बहुत ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। गेंदा की खेती में मिट्टी को हल्का कर लेना है जुताई करके, जुताई करने के समय ही उसमें गोबर का खाद मिला देना है, DAP की मात्रा को देना है और बहुत ज़्यादा उसमें और अन्य उर्वरक की आवश्यकता नहीं है। तो किसान जुताई करके मिट्टी को हल्का कर लें, किसान जो उन्होंने प्रवर्धित किया है पौधा उससे 45-45 सेंटीमीटर पर लगाएं, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30-40 सेंटीमीटर वो रख सकते हैं। ये करने के बाद किसान उसमें हल्का हल्का सिंचाई करे, बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं, हल्की सिंचाई की आवश्यकता है। और पौधों में गेंदा की खेती में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है पिंचिंग। गेंदा जब लगा देते हैं किसान भाई तो उसमें शाखाओं को बढ़ाना है, नंबर ऑफ ब्रांचेज को बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब गेंदा लग गया है तो उसमें गेंदा लगने के बाद जब उसमें बढ़ने लगता है तो ऊपर के टूसा को आप तोड़ दीजिए, टूसा को तोड़िए, फिर पुनः टूसा को तोड़िए। तो अगर इस तरह से हमारे किसान टूसा को तोड़ते रहते हैं तो प्रारंभिक को तोड़ते हैं तो उन्हें 4-5 कल्ला प्राप्त होता है। 4-5 कल्लों को तोड़ते हैं तो हर एक कल्ला में अगर 4-4 कल्ले बनते हैं तो ऐसे करके अगर हमारे किसान करते हैं तो 4×16 16 कल्ला प्राप्त होते हैं, 16 से 32 कल्ला प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में कल्लों को बढ़ाना है। और कल्लों को जब हम लोग बढ़ाने लगते हैं तो पौधा एक गुंबद आकार का आकार प्राप्त करता है और उसमें पौधे का जो शारीरिक ये है वो भारीपन की तरफ जाता है। तो उससे बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या चाहिए, 45 दिन के अंदर 45 दिन में किसान उस पर मिट्टी चढ़ा सकते हैं। और इसमें हमारे किसान ज़्यादा ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें, कार्बनिक पदार्थों का ही उपयोग करें, इसमें जीवामृत का प्रयोग करें। मतलब कहने का मतलब कि इसका जो लागत है उसको किसी प्रकार से हमारे किसान को कम करना है। और नाले में सिंचाई करें, नाले में सिंचाई करने से क्या होता है कि पौधे में बढ़वार भी अच्छा रहता है, पौधों के गिरने की संभावना भी कम रहती है और क्वालिटी भी मेंटेन होता है। तो सबसे पहले हमारे किसान इसे लगाना प्रारंभ करें
0: जी मैम।
1: और हमारे भागलपुर में इसका बहुत ही संभावना है। बाजार की जहाँ तक आपने बात की तो बाजार यहाँ पर उपलब्ध है, लगभग फूल का बाजार यहाँ कई लोग करते हैं। और सबसे बड़ा कमज़ोर पहलू है हमारे किसान भाइयों के लिए और गेंदा की खेती में कि यहाँ का जो बाज़ार है, भागलपुर का जो बाज़ार है फूलों का बाज़ार, कलकत्ता के द्वारा गवर्न किया जाता है। क्योंकि अगर कलकत्ता के मार्केट में गेंदा की खेती, गेंदा के फूलों की लड़ी का दाम कम है तो उसी के अनुसार भागलपुर में भी गेंदा की लड़ी का दाम घट जाता है। ये हमारे किसान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसके पूर्व, हमारे किसान के उगाने के पूर्व ही हमारे भागलपुर के बाज़ार पर कलकत्ता के ही बाज़ार का कब्जा था और जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को इसमें समस्या आ रही है। अब बहुत सारा परिवर्तन आया है, लगभग 10 हेक्टेयर में हमारे किसान यहाँ पर खेती कर रहे हैं और वो समूह में परिवर्तित हो रहे हैं। जब समूह में परिवर्तित होंगे तो जाहिर सी बात है कि एक संगठन आएगा, बाजार पे भी उन लोगों का एक नया रूप उभर करके आएगा और बाजार यहाँ उपलब्ध है, बाजार की कोई समस्या नहीं है
0: जी मैम। अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को जो गेंदा की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: हम उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि 10 कट्ठे से वो प्रारंभ ना करें, 1 कट्ठे से प्रारंभ करें। क्योंकि किसान भाई को पहले समझना होगा कि हमको इससे क्या मुनाफा है, किस तरह से मुनाफा है। और किसान भाई को इसका वैज्ञानिक पहलू को समझना पड़ेगा कि गेंदा है क्या, गेंदा किस तरह से प्रवर्धित होता है, वो इसकी लागत को कम कैसे कर सकते हैं। हालांकि इसका एक बहुत अच्छा पहलू है कि हमारे बहुत सारे किसान आगे आए हैं, जैसे सकरामा में अरविंद जी हैं, कुशवाहा नगर में राहुल हैं, बगल में आपको लोदीपुर में राजकुमार है जो कि खेल गेंदा की खेती कर रहा है और वो अर्का भानु को प्रवर्धित करके लगा रहे हैं, IIHR से मंगा करके कृषि विज्ञान केंद्र। और उनको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो कृषि विज्ञान केंद्र में आए, निजी तौर पर आए, बैठे, हमसे समझें
0: जी मैम।
1: और वो उसको करना प्रारंभ करने, और पैसे की कमी नहीं है इसमें
0: जी। तो किसान भाई बहनों, जैसे कि मैम ने बताया, आप गेंदे की खेती कीजिए, और ख़ास तौर से जब हमारे पास बाजार मौजूद है तो ज़रूर करनी चाहिए। और कोई परेशानी हो तो कृषि विज्ञान केंद्र जाकर, जहां आपको मैम भी मिलेंगी, आप जाकर उनसे बात कीजिए, समझिए, और गेंदा की खेती आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू उमा।
0: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो, या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
4: खुद भी बचे देश भी बचाए।
5: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
7: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ। सुनो।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज टू रिमाइंड यू ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। इफ योर किड्स आर 5 और लेस हु हैव मिस्ड अ वैक्सीन, हियर दिस अपील। Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
4: So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर।
12: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 23 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। मौसम आधारित चेतावनी ये है कि जिले के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसान भाई बहनों को खेत के कार्य स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन हेतु तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। किसान भाई बहनों जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रोपाई इस महीने में पूरी कर ले। धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और खेत में जल जमाव बनाए रखें। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया का उपरी निवेशन करें यानी कि यूरिया डालें। धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों बाद यूरिया का ऊपरी निवेशन करना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा को खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखना बहुत जरूरी होता है। बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, जो मिर्च की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर लेनी चाहिए। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी एक और पंजाब लाल। संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोणकन, कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगीति और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। पशुओं का विशेष ध्यान रखें, खुरपका और मुंहपका रोग होने की संभावना होती है तो उन्हें टीके जरूर लगवा लें और अगर रोग के कोई लक्षण दिखे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने की पानी की व्यवस्था करें, उन्हें संतुलित आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए चलते हैं कक्षा एक की ध्वनि शाला में।
3: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छी बात है कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे से हैं, कुशल पूर्वक रह रहे हैं। तो बच्चों, आज हम कहां से शुरू करें? जो आप कहेंगे हम वहीं से शुरू करेंगे, हम वही बात करेंगे जो आप कहेंगे। तो ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं स्कूल के पहले दिन से। हमने स्कूल में पहला दिन कैसे बिताया ये सब आपको याद होगा। मुझे भी तो याद है अपने स्कूल का पहला दिन। ये अलग बात है कि बहुत बहुत बहुत साल बीत गए जब मैं स्कूल में पहली बार गई थी। ये 1857 की बात नहीं है, ये बात है 1976 की, जब मैं स्कूल में पहली बार गई थी। तब तक तो आप में से कोई भी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होगा। तो पता है स्कूल का पहला दिन कैसा बीता था कल्याणी का? नंदिनी दीदी ने सब बच्चों को खूब सारे गीत गवाए थे और कहानी सुनाई थी। दरअसल नंदिनी दीदी कल्याणी की टीचर हैं, जो कक्षा एक को पढ़ाती हैं। तो नंदिनी किसका नाम है? शाबाश, कल्याणी की टीचर का नाम है। आपको अपनी टीचर का नाम याद है? शाबाश, तो आपको भी अपनी टीचर का नाम याद है। आपके टीचर का क्या नाम है? बबीता। अच्छा, और अमरजीत ने क्या बताया? नंदिनी। वेरी गुड, क्योंकि नंदिनी और अमरजीत तो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। मुझे भी अपने टीचर का नाम आता है, याद है। उनका नाम है मिसेस आनंद। वे बच्चों को बहुत प्यार करती थी। तो बच्चों, आपको अपने टीचर का नाम याद है और मुझे अपने टीचर का नाम याद है। अच्छा, तो हम एक काम करें, आज आप अपने स्कूल की एक बात बताइए और मैं अपने स्कूल की एक बात बताती हूँ। तो सारे बच्चे तैयार हैं? तो ठीक है, हम शुरू करते हैं अपने अपने स्कूल की बातें। तो शुरू मैं करती हूँ, उसके बाद आप शुरू कीजिएगा। तो मेरे स्कूल में, जहां मुझे याद आ रहा है, खूब सारे कमरे थे। आप कहेंगे स्कूल में तो कमरे होते ही हैं, इसमें कौन सी नई बात है? तो आपने कहा कि हमारे स्कूल में भी कमरे थे। मैंने कहा हमारे स्कूल में एक खूब बड़ा सा मैदान था। आप कहेंगे हमारे स्कूल में भी खेल का बहुत बड़ा सा मैदान था। मैंने कहा हमारे स्कूल में जगह जगह गड्ढे थे और उसमें बालू भरी हुई थी। अब आपका सिर चकराने लगा होगा कि स्कूल के मैदान में गड्ढे और गड्ढे में बालू, ये क्यों? तो ये इसलिए क्योंकि हम वहाँ खेलते थे। हम वहाँ लॉन्ग जंप का काम करते थे, तो एक जगह से कूदकर हमें दूसरी जगह जाना होता था। तो हम ऐसी कूद मारते थे, अगर मिट्टी नहीं होगी, बालू रेत नहीं होगी तो चोट लगने का डर रहता है, इसलिए वहां गड्ढा खुदा हुआ था और उसमें खूब सारी बालू भरी हुई थी। आपने कहा हमारे स्कूल में तो ऐसी कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो फिर हमारे स्कूल में क्या था? हमारे स्कूल में खूब सारे झूले लगे हुए थे, तरह तरह के झूले। आपने कहा हमारे स्कूल में भी झूले लगे हुए थे। अब आप कहेंगे कि अब हम शुरू करते हैं अपने स्कूल की बात। तो आपने कहा हमारे स्कूल में खूब बड़ा सा कमरा था और वहां तरह तरह के यंत्र रखे हुए थे, कंप्यूटर्स रखे हुए थे। तो मैं कहूंगी हमारे स्कूल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, यानी कि हमारे जमाने में स्कूल में कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। तब तक तो कंप्यूटर आए भी नहीं थे, इसलिए हमारे स्कूल में कंप्यूटर नहीं थे। तो ये बातचीत तो बहुत लंबी होती चली जाएगी। आप अपने दोस्तों के नाम बताइए, मैं अपने दोस्तों के नाम बताती हूँ। तो आपने कहा मेरे दोस्त का नाम है प्रियंका, नीरा, इरा, गर्वित, अनमोल, अभिषेक, आकांक्षा और मसूद। शाबाश, तो आपने अपने इतने सारे दोस्तों के नाम बताए। अब मैं अपने दोस्तों के नाम बताती हूँ जो मेरे साथ क्लास एक में पढ़ते थे। तो उनमें सबसे जो मेरी करीबी दोस्त थी उनका नाम था डिंपल। तो मेरी पहली दोस्त है डिंपल, दीपिका, श्रुति, अभिषेक, रोहित, अमित, माधव, दुर्गा, भाव्या और सबीना। तो ये मेरे दोस्त हैं। तो बच्चों आपने ये देखा कि आपके और हमारे दोस्त हैं और सब दोस्तों के नाम हैं। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम और आप सब मिलकर अपने अपने दोस्तों के नाम एक कागज पर लिख लेते हैं। तो झटपट जाकर एक कागज और एक पेंसिल या कॉपी और पेंसिल ले आइए, दौड़ कर जाइए और भाग कर आइए। मैं आपका यही इंतजार करती हूँ। शाबाश, तो आप सब अपनी कॉपी और पेंसिल ले आए। तो हम लिखना शुरू करें। तो आप एक एक करके अपने दोस्तों के नाम लिखिए। ध्यान से नाम लिखिएगा और अगर नाम लिखने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, बस आप तो अपने दोस्तों के नाम लिख डालिए। उधर आप लिखिए, इधर मैं लिखती हूँ। और जब आप नाम लिख लें तो हमें बता दीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, आपने अपने दोस्तों के नाम लिखे, मैंने अपने दोस्तों के नाम लिखे। अच्छा ये बताइए कि आपके ऐसे कितने दोस्त हैं जिनके नाम में शुरू की आवाज न है? ऐसे कितने दोस्त हैं जिनके नाम में शुरू की आवाज म है? और ऐसे कितने दोस्त हैं जिनके शुरू की आवाज में अ की आवाज है? यानी कि आपके और हमारे सभी दोस्तों के नाम में कोई ना कोई आवाज तो है। बिना आवाज के तो कोई नाम होगा ही नहीं। तो बच्चों आपने बताया दोस्तों के नामों में बहुत सारे आवाजें हैं, बहुत सारे अक्षर आते हैं और हर अक्षर की एक आवाज है। जैसे कल्याणी में क की आवाज है, नंदिनी में न की आवाज है, गर्वित में ग की आवाज है, मयंक में म की आवाज है, नीरा में न की आवाज है, नेहा में न की आवाज है, बबीता में ब की आवाज है, दीपक में द की आवाज है। तो आप सब अब क्या काम करेंगे, आप सभी बच्चे जो आपने नाम लिखे हैं अपने दोस्तों के, उनके नाम के पहले अक्षर पर आप घेरा लगा दीजिए। लगाया सब बच्चों ने? शाबाश। अगर घेरा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या है ही नहीं, बस आप काम कीजिए। तो सब बच्चों ने अपने अपने दोस्तों के नाम के पहले अक्षर पर घेरा लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसे कितने नाम हैं जिसमें शुरू का अक्षर एक जैसा है। तो समझे इस बात को दोबारा से, ऐसे हमारे कितने दोस्त हैं जिनके नाम में शुरू का अक्षर एक जैसा है, जैसे नंदिनी और नीरा और नेहा। तो नंदिनी में भी शुरू की आवाज है न, नेहा में शुरू की आवाज है न, और नीरा में भी शुरू की आवाज न है। आप ये देख पा रहे होंगे कि तीनों के नामों में जब न की आवाज हम लिखते हैं तो वह एक जैसी है। देखा आपने, पहचाना आपने? तो बच्चों आपने ये देखा कि जो आवाज जैसी होती है उसका एक आकार होता है, उसकी एक आकृति होती है जिसे हम अक्षर कहते हैं। तरह तरह के अक्षरों की तरह तरह की आवाजें होती हैं। अब आप सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम तो बात कर रहे थे स्कूल के पहले दिन की और हम यहाँ अक्षर पे कैसे आ गए। ये तो बहुत मजेदार खेल है बच्चों। अगर हमने अपने दोस्तों के नाम लिख लिए हैं तो हम अक्षरों की पहचान भी कर लेते हैं, और फिर तो मजेदार गेम है कि किसके कितने दोस्त हैं जिनके नामों में शुरू की आवाज एक जैसी है। तो आपने नंदिनी, नीरा, नेहा में न को पहचाना। अच्छा आप बताइए, मयंक, माला, मोहित। दोबारा से सुनेंगे बच्चों, मयंक, माला, मोहित। इन तीनों नामों में शुरू की आवाज कौन सी है? बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये सारे बच्चे बहुत समझदार हैं। इन सब में शुरू की आवाज है म। अब हम म को कैसे लिखते हैं? जैसे आपने मकान लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है, मकान में भी म की आवाज है और इसे खास तरह से बनाया जाता है। अच्छा अगर आपने न लिखा है और आप म लिख रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में काफी समानता है। अगर न में हम एक और ऊपर से डंडी मिला दें तो फिर वह म बन जाएगा, ठीक। तो आपने देखा कि नंदिनी, नीरा, नेहा के नाम में शुरू की आवाज है न, और मोहित, मयंक, माला के नाम में शुरू की आवाज है म। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि किसके नाम में म की आवाज है और नहीं है। तो हम बच्चों शुरू करें ये खेल, ठीक है। तो हम एक मजेदार खेल खेलते हैं। मैं बच्चों के नाम बोलूंगी और आप मुझे बताएंगे कि इनके नाम में शुरू में म की आवाज है या नहीं है। तो तैयार हैं सारे बच्चे? वेरी गुड। तो पहला नाम है माधवन, माधवन, माधवन में शुरू में म की आवाज है। शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक बताया, माधवन में शुरू की आवाज है म। अब हम अगले शब्द की तरफ चले, मुर्गन, मुर्गन। शाबाश, इसमें भी आपने बताया कि शुरू में माँ की आवाज है। मोहित, मोहित, शाबाश, सब बच्चों ने सही पकड़ा है। मोहित में भी शुरू में माँ की आवाज है। मानू, मानू, वेरी गुड, आपने मानू में भी बताया कि शुरू में माँ की आवाज है। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए कि हमारे आसपास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके नाम में शुरू की आवाज म है, पहचान पाएंगे आप? मुश्किल काम नहीं है, सब बच्चे सोच रहे होंगे। सोचिए सोचिए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। जब आप सोच ले अच्छी तरह से और तैयार हो तो हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो लीजिए, सारे बच्चे तैयार हैं, सोचने में ज्यादा समय नहीं लगाया, शाबाश। तो बच्चों ने हमें बताया हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके नाम में शुरू की आवाज म है। सबसे पहला शब्द पता है क्या आया बच्चों? सबसे पहला शब्द आया मोर। क्यों भला? क्योंकि हमने एक गीत गाया था। ये गीत क्या था? नानी

गए। याद आया ये गीत? बिल्कुल सही पहचाना, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। तो मोरनी और मोर दोनों नामों में शुरू की आवाज है म। एक और पक्षी ऐसा है जिसके नाम में म की आवाज आती है, सोचिए। सारे बच्चे सोच रहे होंगे आखिर ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके नाम में म आता है, यानी कि जिसके नाम में म की आवाज है। याद आया बच्चों? तो ये नाम है मुर्गा। वेरी गुड। मुर्गा कुकड़ुकू कुकड़ुकू सुबह सुबह बोलता है। तो हमने अभी जाना कि ऐसे कौन से नाम है जिसमें म की आवाज है। अच्छा, हम एक और खेल खेलते हैं। तैयार हैं सारे बच्चे? तो ठीक है, शुरू करते हैं। मैं कुछ शब्द कहूंगी, ये किसी भी चीज का नाम हो सकता है। आपको ये बताना है कि इन चीजों के नामों में म की आवाज है या नहीं है। वेरी सिंपल। तो तैयार हैं सारे बच्चे, शुरू करें? तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं म की आवाज को पहचानना। पहला शब्द है मदन। म की आवाज है शुरू में। शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने, मदन में शुरू में म की आवाज है, मदन। मसूद, वेरी गुड, मसूद में भी शुरू में म की आवाज है। मटर, वेरी गुड, मटर में भी म की आवाज है। मैना, मैना में भी म की आवाज है। मेला, शाबाश, मेला में भी म की आवाज है। मकान, वेरी गुड, सही बताया आपने, मकान में भी शुरू में म की आवाज है। बटन, बटन में शुरू में ब की आवाज है, म की आवाज नहीं है। तो फिर अगला शब्द है हमारा स्वामी। अगला शब्द दोबारा सुनेंगे बच्चे? अगला शब्द है स्वामी। मालगुडी डेज तो सब बच्चों ने सुना होगा, देखा होगा। एक छोटे से बच्चे की कहानी है और उसका नाम है स्वामी। और पता है बच्चों, एक बहुत मजेदार बात है स्वामी के बारे में। स्वामी की एक दादी है जो रोज रात को स्वामी को कहानियां सुनाती हैं, और स्वामी भी अपनी दादी को दिन भर क्या हुआ ये सुनाता है। और उसके दोस्त का नाम है राजम। तो स्वामी को जब उनकी दादी पुकारती है तो बोलती है छामी छामी। तो ये मुझे बड़ा सुंदर लगता है जब वे स्वामी को बोलती है छामी। तो स्वामी में भी म की आवाज तो है। क्या बच्चे बता पाएंगे कि म की आवाज कहाँ है? शुरू में है क्या? शुरू में तो नहीं है। तो क्या बीच में है? स्वामी, बीच में भी नहीं है। तो फिर तो अंतिम हिस्सा बचा हमारे पास, स्वामी। शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने, स्वामी में अंत में म की आवाज है। आपको याद है बच्चों, स्वामी के दोस्त का क्या नाम बताया था मैंने? शाबाश, स्वामी के दोस्त का नाम था राजम। तो राजम के नाम में म की आवाज है क्या? शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने, राजम के नाम में अंत में म की आवाज है, राजम। तो ये बच्चे तो बहुत ही समझदार हैं, बहुत चतुर हैं, सारे शब्दों में आपने म की आवाज को पहचान लिया। तो अगर आपको खेल में मजा आ रहा है तो क्या हम आगे बढ़ें? तो बच्चों बताइए, आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें? ठीक है, तो आपने कहा और हमने किया और हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम चलते हैं न की आवाज पर। न की आवाज में बहुत सारे शब्द हमें मिल जाते हैं, पहचान पाएंगे आप? अच्छा ठीक है बच्चों,
मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ तो आप पहचान लेंगे, वही जो हम सबके घर में है। अब आप सोचेंगे कि हम सबके घर में तो बहुत कुछ है, अब वहां हम न की आवाज को कैसे पहचानेंगे? सोचिए, सोचने के लिए समय लीजिए, मैं आपका यही इंतजार कर रही हूँ। सोचिए और ध्यान लगा के सोचिए कि हमारे घर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके नाम में न की आवाज है। याद आया कुछ? तो बच्चों, मुझे तो याद है, आपको याद है? लीजिए, ये बच्चे तो बहुत चतुर हैं और इन्होंने पहचान लिया। तो सुबह सुबह जब आप स्नान करते हैं तो उसमें एक चीज का इस्तेमाल करते हैं जहां से हमें पानी मिलता है। वेरी गुड, ये शब्द है नल। नल से पानी टपकता है, पानी बहता है और आप नल के नीचे बाल्टी लगाते हैं, पानी भरते हैं और उसके बाद स्नान करते हैं। शाबाश, तो पहला शब्द आप सबने बताया नल। नल के नाम में शुरू की आवाज है न, नल। पहचाना आपने बच्चों? अच्छा, अब एक और शब्द है जो हमारे घर के कौन से हिस्से में है? रसोई घर में। रसोई घर में कौन सा हिस्सा है? मसालदानी। यहाँ मसाले रहते हैं, तो रसोई घर में एक चीज है जिसके नाम में न की आवाज है। बच्चों, कुछ याद आया क्या? शाबाश, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये चीज है नमक। नमक ज्यादा हो जाए तो मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है और नमक कम हो तो कोई स्वाद ही नहीं आता। तो नमक तो मन के मुताबिक होना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए नमक। तो नमक में न की आवाज है और ये न की आवाज कहाँ है? शुरू में। नमक, नमक, पहचाना आपने? तो अब आप ऐसे और कौन से शब्द बता सकते हैं जिनके नाम में न की आवाज है? आप अपने दोस्तों के नाम सोचेंगे बच्चों? सोचिए। तो मैं भी सोच लेती हूँ अपने दोस्तों के नाम जिनके नाम में न की आवाज है। तो ये नाम हो सकता है नंदू, शाबाश, नीना, वेरी गुड। और क्या नाम हो सकता है बच्चों? और नाम हो सकता है नदीम, शाबाश। तो नदीम, नंदू, नीना, इन तीनों के नामों में शुरू में है न की आवाज। तो अब एक और खेल खेलते हैं। ये खेल क्या होगा? ये खेल ये होगा, मैं कुछ शब्द कहूंगी, कुछ चीजों के नाम लूंगी और आप सभी बच्चों को ये बताना होगा कि इनके नाम में शुरू में न की आवाज है या नहीं है। बच्चों, मुश्किल तो नहीं है ना ये काम? आपने जैसे झटपट म के लिए किया था, ऐसे अब हम न के लिए करते हैं। नमक, शाबाश, इसमें शुरू में न की आवाज है। नाला, वेरी गुड, नाला में भी शुरू में न की आवाज है। नींबू, वेरी गुड, सही पहचाना बच्चों आपने, नींबू में भी न की आवाज है। तो हम नींबू से आगे बढ़ते हैं और हम अगले शब्द पर चलते हैं। यह अगला शब्द है नीला, वेरी गुड, नीला में भी न की आवाज है। और जब हम सफेद कपड़ों को रंगते हैं, यानी कि उनकी सफेदी बरकरार रहे, बनी रहे, उसके लिए हम एक चीज के घोल में सफेद कपड़ों को डालते हैं और फिर निकालते हैं, निचोड़ते हैं और सुखा देते हैं। कुछ याद आया? ये शब्द है नील। हल्का सा नीला पाउडर होता है या फिर हल्का सा लिक्विड होता है नीले रंग का, जिसकी एक दो बूंद हम पानी में डालते हैं, फिर सफेद कपड़े उसमें डालते हैं और फिर बाहर निकाल कर निचोड़कर सुखा देते हैं, तो सफेद कपड़ों की सफेदी बनी रहती है।
अच्छा एक बात और बताइए बच्चों, आपने नल की आवाज को सुना है? बंद आवाज को नहीं भाई, बंद नल को नहीं। जब नल खुलता है, पानी बहता है और हम उसके नीचे बाल्टी लगाते हैं, तो आपने पानी की आवाज को सुना होगा। क्या ये पानी की आवाज नदी के पानी की आवाज जैसी है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आप एक काम कीजिएगा, काम ये है कि जब आप अगली बार स्नान करें, ठीक है, स्नान तो रोज करना चाहिए, तो जब आप अगली बार स्नान करें और नल के नीचे बाल्टी लगाएं, तो आप गौर कीजिएगा कि जैसे जैसे बाल्टी भरती जाती है पानी से, वैसे वैसे पानी की आवाज बदलती जाती है। जब बाल्टी एकदम खाली है और उसमें आप नल खोलते हैं, पानी की पहली धार बाल्टी में जाती है, तो बहुत तीखी आवाज आती है, बहुत शोर होता है। जैसे जैसे बाल्टी में पानी भरता जाता है, वैसे वैसे पानी की आवाज बदलती चली जाती है और पानी की आवाज थोड़ी और भारी हो जाती है, तब उसमें खनक नहीं होती है। ठीक है, मजेदार खेल है ये। और आपने नदी की कलकल को भी सुना होगा। नदी की कलकल में एक जैसी ही आवाज रहती है। अगर आप नदी के किसी एक हिस्से पर खड़े हैं और पानी बहुत तेजी से आ रहा है, तो उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। उस आवाज को सुनते सुनते आपको ये पता चल जाएगा कि नदी पत्थरों से टकरा रही है या नहीं टकरा रही। पत्थर से जब पानी टकराता है तो उसकी एक अलग आवाज होती है। बहुत सारे बच्चों ने तो ये महसूस किया होगा और देखा भी होगा और सुना भी होगा कि जब नदी अलग अलग हिस्सों से गुजरती है तो उसके पानी की आवाज अलग अलग होती है। अगर पानी की आवाज की बात हो ही रही है, तो फिर हम समुद्र को कैसे छोड़ सकते हैं? समुद्र के किनारे घूमना, बैठना, लहरों को आते जाते देखना मुझे बहुत पसंद है। आप सब बच्चों ने भी समुद्र देखा होगा। अगर सामने नहीं देखा होगा तो टीवी पर देखा होगा। तो लहरें आती हैं और फिर चली जाती हैं, फिर एक लहर आती है, तट पर आती है और फिर वापस चली जाती है। तो लहरों की आवाज भी एक जैसी ही होती है, आने और जाने की। तो आज हमने क्या किया? आज हमने म को पहचाना, हमने न को पहचाना, इसकी आवाज को पहचाना और ये देखने की कोशिश की कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें म की आवाज है और जिसमें न की आवाज है।

0: तो मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।
1: तो साथियों, अभी आपने सुनी कक्षा एक की ध्वनिशाला। विषय विशेषज्ञ थी प्रोफेसर उषा शर्मा, NCERT। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना?

0: नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, हम खास तौर पर आपके लिए लेकर आते हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम, और इसमें बातें होती हैं खेती बाड़ी की और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें। तो आज एक खास विषय हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए। हम आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे नींबू वर्गीय फलों के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे बिहार में इनकी खेती को लेकर क्या कुछ संभावनाएँ हैं। और इस खास विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर कुमारी करुणा मैम, और मैं आपको बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उद्यान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद
6: मैम। नींबू वर्गीय फलों के बारे में और हमारे श्रोताओं को आप बताएं, क्योंकि बहुत सारे कम लोग जो है नींबू वर्गीय इस वर्ग में कौन कौन से फल आते हैं नहीं जानते हैं, और उनकी क्या उपयोगिता है उनके बारे में भी बताएं।
8: सही कहा, नींबू वर्गीय फलों में खास करके मौसमी, संतरा, गागर नींबू, पूर्वी नींबू, कागजी नींबू इत्यादि प्रमुख है। लेकिन किसान भाई इसको लगाते हैं, किचन गार्डन के रूप में लगाते हैं, किचन में एक दो पौधा लगाते हैं, लेकिन बिहार में देखें तो इसकी व्यावसायिक खेती उतना प्रचलन में नहीं है। जबकि नींबू की खेती के लिए बिहार का जलवायु काफ़ी उपयुक्त है। यहाँ अगर व्यावसायिक खेती की जाए तो किसान भाई को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। बिहार में नींबू की खेती प्रचलित है, यहाँ संतरा और मौसमी की खेती की जा सकती है, जैसे कि पंजाब में होता है, महाराष्ट्र में मौसमी होता है, पंजाब में किन्नू होता है जिसको संतरा बोलते हैं, तो यहाँ भी वैसे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई अभी इसके प्रति उतना अवेयर नहीं है, उतना नहीं जानते हैं, इसीलिए इसको अभी उतना व्यावसायिक तौर पे अपना नहीं रहे हैं
6: जी।
8: अब इसकी बात करें कि इससे क्या क्या बन सकता है। इसको हम लोग एक तो फ्रेश खाते हैं, संतरा कहें तो उसको छीलकर खाते हैं, और नींबू कहें तो आपका दाल में गाड़ के खाते हैं, उसका सलाद में डाल के खाते हैं, चाय बनाकर पीते हैं, इसका अचार भी बनता है, चटनी बनता है, स्क्वाश बनता है, आर्टियस बनता है। इसका छिलका जो है उसमें काफ़ी वाइल होता है, तेल होता है, तो इसको अगर हम व्यावसायिक तौर पे करें तो फैक्ट्री वाले इसके छिलका को भी ले जाएंगे, वो अपना वाइल निकालेंगे, तो इस तरह से इसका बहुत सारा यूज है, बहुत सारी उपयोगिताएँ हैं।
6: तो यहाँ पर आपने नींबू वर्गीय फलों के बारे में जाना, और ख़ास तौर पर मैम ने बताया कि अभी फ़िलहाल बिहार में जो लोग हैं इसे व्यवसाय

0: तौर पर इसकी खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसके बारे में अभी कम जानकारी है। तो मैम इसकी कौन कौन सी किस्में जो हैं जो हमारे किसान भाई लगा सकते हैं?
1: इसकी जो है इसको हम वर्गीकरण इसका करना बहुत ही कठिन है। इस छोटा फल से लेके बहुत बड़ा बड़ा फल होता है। छोटा फल कहें तो जैसे कि कागजी नींबू है, बहुत छोटा होता है
0: जी।
1: और बड़ा कहें तो आप देखते हैं चकोतरा है जिसको कि डावा नींबू कहते हैं, छठ पर्व में चढ़ता है। तो इसका अगर हम वर्गीकरण करना चाहते हैं तो बहुत ही कठिन होता है इसका वर्गीकरण। जैसे कि आम है तो आम ही है, लेकिन नींबू के केस में क्या है कि फल का जो साइज में भिन्नता बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका वर्गीकरण थोड़ा कठिन होता है। अब संतरा की बात करें तो संतरा को हम लोग छील कर खाते हैं, यानी कि पौधा में ही फल पक जाता है, उसको तोड़ते हैं और छिलका छिलकर हम लोग खाते हैं। जैसे कि फरवरी में इसका मेन फसल आता है, हार्वेस्ट होता है। आप देखती होंगी कि ये होली के टाइम में बहुत अधिक संतरा रहता है बाजार में, और इतना रहता है कि 100 रुपीज में 3-4 केजी तक दे देता है रिटेलर। तो ये बहुत अधिक उपज देता है संतरा। संतरा में वेराइटी है, ये वर्ग हुआ संतरा, जैसे बोले ना कि वर्गीकरण करना काफ़ी कठिन है, तो संतरा एक वर्ग हुआ। उसी तरह से एक नारंगी वर्ग होता है, कागजी नींबू वर्ग होता है, तो इसका वर्गीकरण बहुत है। तो संतरा में अगर हम वैरायटी की बात करें, किस्म की बात करें, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट किस्म है, मुख्य है किन्नो, जो कि हम लोग यहाँ भी लगाए थे, बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी किन्नो हम लोग लगाए थे, 200 के करीब प्लांट हम लोग लगाए थे, और यहाँ भी अच्छा उपज दिया और दे रहा है अभी तो। बहुत 10 साल हो गया है तो पौधा करीब करीब डिक्लाइन के कंडीशन में है, लेकिन यहाँ उपज बहुत अधिक आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार का जलवायु जो है संतरा के लिए उपयुक्त है। इसमें किस्में हैं किन्नो है, कुर्ग है, नागपुर है, खांसी है, लेकिन किन्नो में बहुत अधिक उपज आता है। अब नारंगी की बात करें तो इसमें सभी किसान भाई जानते हैं कि बाजार में मौसमी बहुत बिकता है, सभी लोग बच्चे बड़े आदमी सभी लोग जानते हैं मौसमी, और इसका जूस खास करके इसका हम लोग जूस निकाल कर पिया जाता है। क्यों पिया जाता है? क्योंकि इसका छिलका जो होता है आप हाथ से नहीं हटा सकते हैं, छिलका काफ़ी उसका जो जूसी पार्ट रहता है अंदर में वो उससे सटा हुआ रहता है, वो इजीली अलग नहीं होता है, उसको चाकू से अलग करना पड़ता है। यही सब इसका, इसीलिए इसको वर्गीकरण किया गया। संतरा अलग है, हम छिल के खाते हैं, लेकिन नारंगी में किस्म है जैसे हेमलिन है, मौसमी है, ब्लड रेड है, जाफा है, बहुत सारी किस्में हैं, तो इसको हम लोग छिल कर नहीं खा पाते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं टाइट स्किन, यानी कि वो सटा रहता है, गूदा से सटा हुआ रहता है। अच्छा। तो उसको चाकू से छिल करके फिर उसका जूस निकाल कर लोग पीते हैं, इसलिए कहता है कि मौसमी का जूस, मौसमी का जूस मार्केट में बहुत मिलता है
0: जी।
1: अब बात करें कागजी नींबू की, तो कागजी नींबू क्या है कि इसको हम लोग जैसे कि सलाद में डालकर खाते हैं, या चाय बनाकर पीते हैं, या दाल में डालकर खाते हैं, मतलब इसको हम लोग इसके रस को यूज करते हैं खाने में, और इसका अचार भी बना सकते हैं, कागजी नींबू का ही हम लोग अचार भी बनाते हैं। तो ये पुराना है, घर में लोग अचार बनाकर रखते हैं, ये बहुत ही एपेटाइजर का काम करता है, इसको खाने से पेट का दर्द कहता ठीक हो जाता है, पाचन शक्ति बढ़ जाता है, तो इसके फल से अचार, शरबत, साइट्रिक एसिड इत्यादि बनाया जा सकता है
0: जी। तो किसान भाई यहाँ पर किस्मों की बात आपने यहाँ पर आपको बताई गई, जिसमें कि वर्गीकरण के बारे में मैम ने आपको बताया। मैम पौध तैयार, जब खेती की ओर जाते हैं तो पौध तैयार की बात सबसे पहले की जाती है, तो ये कैसे करें हमारे किसान भाई?
1: हम पौध तैयार करने की का बहुत सारा विधि है, जैसे कि कलम विधि से भी कर सकते हैं। कलम विधि क्या है कि आप जो सूट होता है, जो तना होता है, परिपक्व तना, जैसे कि ब्राउन जिसको हो जाता है तना, उसको परिपक्व कहते हैं। अर्ध परिपक्व जैसे कि हरा ही है तना और उसमें थोड़ा सा ब्राउनिश भी आ गया है, तो उसको अर्ध परिपक्व कहते हैं। और तीसरा है मुलायम, कि हरा ही है तना, हरा है, तो तीनों का कटिंग करके हम इसका पौधा तैयार कर सकते हैं। किसी इसमें क्या है कि 15 से 20 सेंटीमीटर काटते हैं और 3 भाग को सॉइल में डालना है, मिट्टी में डालना है, 1 भाग ऊपर रहेगा मिट्टी से ऊपर।
0: अच्छा।
1: और ये कार्य जून जुलाई में करना चाहिए इस काड़ी को, क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता होती है, तो जून जुलाई में वर्षा का सीजन है हम लोग के जगह यहाँ, तो जून जुलाई में करने से सक्सेस अच्छा होता है। किसान भाई इसको मार्च अप्रैल या फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं, जहाँ की सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। अगर कटिंग हम लगाते हैं तो फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं, और सिंचाई करते रहेंगे तो उसमें भी सक्सेस होता है। और है गुटी बांधना, आप देखेंगे कि गुटी पौधा में ही मिट्टी ले जाकर बांधते हैं और उसको पॉलीथीन से रैप करते हैं, फिर 20-25 दिन के बाद उसमें जड़ आता है, उसको काट कर अलग कर लिया जाता है और फिर पॉटिंग करके कुछ दिन छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसके जड़ का ग्रोथ अच्छा हो। जब जड़ का ग्रोथ अच्छा हो जाता है तब उसको मेन फील्ड में लगाता है। और है चश्मा मेथड, चश्मा मेथड उसको बोलते हैं, बडिंग यानी कि बडिंग मेथड से भी इसका प्रवर्धन करते हैं। ये भी अगस्त सितंबर में इसका अच्छा देखा गया है, और हम लोग के कंडीशन में दिसंबर में और फरवरी मार्च में इसका जो है चश्मा मेथड या वेज ग्राफ्टिंग भी हम लोगों ने किया है। वेज ग्राफ्टिंग में भी ये अच्छा किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, 80% सक्सेस आता है, और ये इसको हम लोग दिसंबर में और फरवरी मार्च में कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि मूल वृंत का जरूरत पड़ता है, मूल वृंत जिसको बोलते हैं कि नीचे का जो रूट स्टॉक बोलते हैं, जिस पर कि हम लोग ग्राफ्ट करते हैं पौधा को, उसको हम लोग बोलते हैं रूट स्टॉक या मूल वृंत हिंदी में बोलते हैं। तो इसका अलग वेराइटी होता है। इसको क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो मूल वृंत होता है, रूट स्टॉक होता है, वो काफ़ी हार्डी होता है, तो वो बीमारी से बचाता है, वो जलवायु से बचाता है, एडवर्स सिचुएशन जो जलवायु का होता है, प्रतिकूल स्थिति जैसे हवा, वर्षा, आंधी, तूफान, उससे ये जो मूल वृंत है, रूट स्टॉक है, वो पौधा को बचाता है। इसलिए रूट स्टॉक का प्रयोग करना चाहिए। इसमें बहुत सारी वेराइटी हैं, जंभीरी है, जट्टी खट्टी है, करना खट्टा है, बहुत सारा रूट स्टॉक है, उसको प्रयोग में लाने से पौधा का जो लाइफ होता है वो बढ़ जाता है।
0: तो इस प्रकार किसान भाइयों, अभी आपने पौध तैयार की जो विधि है वो जानी, और मैम इसके बाद ज़रूरी है इसकी खेती में या फिर किसी भी फसल की खेती में कि खाद हम कितनी मात्रा में दें, कौन से खाद दें, सिंचाई कब करें, कटाई छटाई कब करें, पौध रोपण कब करें, कैसे करें, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो नींबू वर्गीय फलों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए इन सभी चीज़ों को कैसे करना चाहिए?
1: हम जैसे पौधरोपण की बात करें तो जैसे सब फल वृक्ष का पौधरोपण करते हैं, जैसे कि मिट्टी को तैयार करना, फिर गड्ढा बनाना, तो ये कार्य जो है अप्रैल मई में हम लोग कहते हैं कि करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी को तैयार करने के लिए अगर अप्रैल मई में जुताई उसकी की जाए और जुताई कर 10-15 दिन छोड़ दिया जाए तो उसमें जो कीड़े हैं, जो जो इन्फेक्ट कर सकते हैं प्लांट को, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो अप्रैल मई में ज़मीन की जुताई करनी चाहिए, उसके बाद फिर पाटा चलाकर 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर का गड्ढा बना लेना चाहिए। गड्ढा हम देखिए नींबू का हम शुरू में ही बोले कि इसका वर्गीकरण अलग होता है, इसका पौधा का साइज भी सबका अलग अलग होता है। तो हम कौन सा पौधा लगा रहे हैं, अब डवा नींबू लगा रहे हैं या कागजी नींबू लगा रहे हैं या संतरा लगा रहे हैं या मौसमी लगा, उस अनुसार से उसका लेआउट करना पड़ता है, यानी कि पौधा से पौधा और कतार से कतार की दूरी हम लोग उसी अनुसार से रखते हैं जो हम लोगों ने सोचा है कि हमको ये लगाना है, उसी अनुसार से करते हैं। जैसे आप मौसमी के केस में 5 मीटर आप रख सकते हैं पौधा से पौधा और कतार से कतार। संतरा आप लगाएंगे, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके लिए 6 मीटर है, और महानींबू है उसके लिए 7 मीटर है, अब चकोतरा है जिसको कि डाभा नींबू को बोलते हैं, इसके लिए 8 मीटर, इसका पौधा और बड़ा होता है। तो इस अनुसार से हम लोग कहते हैं कि प्लांटिंग डिस्टेंस आप बना लीजिए और ले आउट कर लेना है। उसके बाद गड्ढा खोद कर उसमें 40 किलो गोबर की खाद, 2.5 किलो हड्डी का चूरा और 1 किलो राख 3 टोकरी मिट्टी में मिलाकर गड्ढे को भर देना चाहिए। अब गड्ढा भरने के बाद एक बारिश कम से कम जरूर होना चाहिए, पौधा लगाने से पहले एक बारिश हो जाए, जिससे कि गड्ढा का मिट्टी जो है, जो हम भरे हैं, वो अच्छी तरह बैठ जाए, फिर उसको ले आउट करके जहाँ बीच सेंटर पे जहाँ पौधा लगाने का जगह है वहाँ पर पौधों को लगा देना चाहिए। ये कार्य जून जुलाई में करना चाहिए, पौधे लगाने का कार्य जून जुलाई में करना चाहिए जब बरसात शुरू हो जाता है
0: जी।
1: अब खाद की बात करें तो पहला वर्ष आप नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का जो अनुपात है 75 ग्राम 40 ग्राम और 75 ग्राम रखना चाहिए, और ये अनुपात हर एक साल बढ़ते जाएगा। जैसे 75 ग्राम पहली साल था नाइट्रोजन, तो दूसरे साल 150 ग्राम होगा, फिर तीसरे साल 225 ग्राम होगा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये 10वें साल में नाइट्रोजन की मात्रा 750 ग्राम होगा और फास्फोरस की मात्रा 400 ग्राम होगा और पोटास की मात्रा 750 ग्राम होगा। ये 10वें वर्ष में देना है पौधा को, और यही जो खाद की मात्रा है यही हर एक वर्ष अब पड़ेगा। अब इसका मतलब है कि पौधा मेरा मैच्योर हो गया है, अब उसको इतना ही भोजन हर एक वर्ष चाहिए। इसके अलावे हम लोग कहते हैं कि खाद FYM जो होता है सड़ी हुई गोबर की खाद 50 किलो प्रति पौधा देते रहना चाहिए। अब सिंचाई की बात करें तो गर्मी के दिन में वीकली इंटरवल पे सिंचाई करना चाहिए, यानी सप्ताह में एक बार, और जाड़ा में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए
0: जी।
1: अब निकाई गुड़ाई की बात है तो वो तो बरसात के समय में घास बहुत निकल आता है, तो उसका बीच बीच में सफाई होते रहना चाहिए जिससे कि मेरा जो मेन क्रॉप है नींबू का वो अच्छा रहे। अगर अधिक घास रहेगा तो उससे बीमारी और कीड़ा का भी प्रकोप बढ़ जाएगा। अब कटाई छटाई की बात करें तो नीचे 30 से 40 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर कोई तना नहीं रखना चाहिए। जैसे पौधा हम लगाए तो 40 सेंटीमीटर मेरा फ्री रहना चाहिए, क्योंकि हम बाद में गड्ढा के चारों ओर खाद डालेंगे, वो सब कार्य करने में हमको आसानी होगा। निकाई गुड़ाई करेंगे तो वो सब कार्य करने में अगर नीचे से ही मिट्टी के सतह से ही अगर दूसरा सूट निकल जाएगा, तना निकल जाएगा, तो वो जो निकोनी गरोनी का जो कार्य है, खाद पानी देने का जो कार्य है वो बाधित होगा। तो इस तरह से कटाई छटाई करनी चाहिए
0: जी। तो यहाँ पर किसान भाइयों आपने पूरी जानकारी पाई कि कैसे आपको पौधरोपण करना है, खाद आपको कैसे देना है, सिंचाई कटाई छटाई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। और अब अंत में बात करते हैं फलों की तुड़ाई और उपज के बारे में। मैम तो ये भी बता दें कि क्या मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को उपज।
1: फलों को तोड़ना, जैसे कि अब जब फूल लगता है नींबू में उसके 6 से 9 महीने बाद फल तोड़ने लायक हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी और कौन सा नींबू हमने लगाया है। तो इस तरह से, और जब फल सेट होता है, जब पकने की स्थिति में होती है, जब मैच्योर होने की स्थिति में होती है, तो कलर का, उसका फल का जो कलर है थोड़ा चेंज होता है। ये भी डिपेंड करता है कि ये कौन सा किस्म है। सभी का फल जो है पीला पूरा नहीं होता है, तो किसी किसी में हरा ही रहता है, थोड़ा लाइट ग्रीन रहता है, थोड़ा सा किसी में अधिक पीला होता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी है। अब उपज की बात करें तो नींबू वर्गीय फल वृक्ष से 5 से 8 वर्ष में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाता है। तो फलों का उत्पादन जाति, उसके जाति, किस्म, बाग की देखरेख और जलवायु पर निर्भर करती है। एक अच्छे माल्टे के पौधे से 500 करीब फल प्राप्त होता है, प्रति पेड़ 500 फल मिलता है। संतरा की बात करें तो 1000 से 1500 फल प्रति पेड़ मिलता है। अब ग्रेपफ्रूट की बात करें कि 300 फल प्रति पेड़ मिलता है। लाइम की बात करें तो 1000 फल प्रति पेड़ मिलता है। इस तरह से जो किस्म है, जो जाति है, उस अनुसार से उसका उपज प्राप्त होता है
0: जी। तो किसान भाइयों इस प्रकार यहाँ पर बातें हुई नींबू वर्गीय फलों की खेती के बारे में, और साथ ही बिहार में इसकी खेती को लेकर क्या कुछ संभावनाएं हैं उनकी बातें यहाँ पर हमने की हैं। तो आशा करते हैं कि इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा नींबू वर्गीय फलों के बारे में। और अगर आप व्यावसायिक तौर पर खेती करना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है कि कितना उपज प्राप्त हो सकता है आपको। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक खास विषय को लेकर और हम हाजिर होंगे एक अलग विषय के साथ। तो फिलहाल आज के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
6: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: करना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 23 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। मौसम आधारित चेतावनी ये है कि जिले के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसान भाई बहनों को खेत के कार्य स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन हेतु तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। किसान भाई बहनों जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रोपाई इस महीने में पूरी कर ले। धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और खेत में जल जमाव बनाए रखें। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया का ऊपरी निवेशन करें यानी कि यूरिया डालें। धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों बाद यूरिया का ऊपरी निवेशन करना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा को खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखना बहुत जरूरी होता है। बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जो मिर्च की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर लेनी चाहिए। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगीती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। पशुओं का विशेष ध्यान रखें, खुरपका और मुंह पका रोग होने की संभावना होती है तो उन्हें टीके जरूर लगवा लें और अगर रोग के कोई लक्षण दिखे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने की पानी की व्यवस्था करें, उन्हें संतुलित आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, अगर हम अपनी फसलों में जल प्रबंधन का ध्यान रखते हैं और पोषक तत्वों का भी ध्यान रखते हैं और फिर भी अगर कीटों का प्रकोप हो जाता है तो हमारी फसलों को बहुत नुकसान होता है। और अभी खरीफ का मौसम चल रहा है तो ऐसे में बहुत सारे किसान भाई बहनों ने खरीफ सब्जियों की खेती की होगी या करने वाले होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि खरीफ सब्जियों में कीटों से बचाव के उपाय कौन कौन से हैं। इस बारे में आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह, सर है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, सर है कीट विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद। किसान भाइयों, जो आज जो हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो खरीफ मौसम में क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए ताकि आपकी पैदावार जो है अधिक से अधिक हो और आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके।
0: जी बिल्कुल सर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि खरीफ मौसम में मुख्यतः कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती है?
2: हाँ, मुख्यतः किसान भाइयों, आप लोग जो लगाते हैं इस क्षेत्र में तो बैंगन है, उसके बाद भिंडी है, फिर हरी मिर्च हम लोग लगाने के लिए लेते हैं, हरी मिर्च लेने के लिए, फिर कद्दू वर्गीय जो विभिन्न प्रकार के जो लत्तीदार सब्जियां होती हैं उसको मुख्यतः उगाते हैं। ये प्रमुख जो सब्जियां हैं जो इस मौसम में लगती हैं। और इस मौसम में क्या होता है कि चूँकि वर्षा भी होते रहती है और तापमान भी उस ढंग से रहता है तो बड़ी तेज़ी से जो है फसल बढ़ता है और जिसके चलते जो है कि उसकी उत्पादन क्षमता भी अधिक हो जाती है इस मौसम में।
0: सर, सब्जी लगाने से भी पहले कुछ सावधानी बरतने की जरूरत होती है, वो कौन कौन से सावधानियां हैं जो किसान भाई बहन रख सकते हैं?
2: हाँ, ये किसान भाइयों, चूंकि सिर्फ कीटनाशी ही निदान नहीं है किसी भी कीट के रोकथाम करने के लिए, तो इसको क्या है कि कुछ बातें जो है कि हम लोग अगर ध्यान में रखें तो मतलब जो कीटनाशी है उसका उपयोग हमको कम से कम करना पड़ेगा। तो कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि अब जो गर्मा मौसम है ये समाप्त होने वाला है और खरीफ शुरू होने वाला है या कुछ लोग अब शुरुआत कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में मैं बताना चाहूँगा कि जो फसल चक्र है ये एक बहुत बड़ा वरदान है। फसल चक्र का है तो मतलब एक ही फसल को अगर हम लोग लगातार एक ही खेत में करते रहते हैं तो जिसके चलते जो है कि हर फसल का कीट अलग अलग होता है और एक ही खेत में चूंकि लगाते हैं तो उनका क्रम कभी टूटता नहीं है, और क्रम जब नहीं टूटता है तो इस कारण से वो हमारे जो भी जो सब्जी की जो फसल है उस पे उनका ज़्यादा आक्रमण होता है और जिसके चलते हमारी क्षति ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जैसे कि जो सब्जी अगर हम लगा रहे हैं, जिस खेत में मान लीजिए एक ही खेत में बैंगन बार बार लगा रहे हैं तो उस खेत में मतलब हर 3 साल के बाद बैंगन ना लगा करके, सब्जी ना लगा करके उसमें अगर हम सस्य वाले जैसे कि धान है या गेहूँ है इसको लगाते हैं कम से कम एक साल के लिए, तो एक उसका फसल चक्र टूटता है और इस कंडीशन में जो है कि कीड़ों का प्रकोप कम होता है। अब जो दूसरा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो फर्टिलाइजर देते हैं, उर्वरक जो देते हैं, उसकी समुचित मात्रा ही देनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसान भाइयों के मन में भ्रांति हो गई है कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर देंगे, ज़्यादा उर्वरक देंगे, तो उससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा मात्रा में हम देते हैं तो पौधे की बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है, और उस कंडीशन में जब बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है तो उसके मुलायम पत्तियों को खाने के लिए कीट बड़ी तेज़ी से आते हैं, और आपके की मुलायम जो हिस्से हैं जो आपके पौधे के, उसको खा करके उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसीलिए अनुशंसित मात्रा ही जो है यूरिया और DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास का देना चाहिए, ठीक है। और पोटेशियम की मात्रा जहाँ तक हो वो समुचित देने से क्या होता है कि फसल जो पौधे होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार से कीटों से लड़ने से की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब वो जहाँ भी अगर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हम लोग देते हैं तो उसमें कीटों का प्रकोप कम होता है। तो ये कुछ बातें हैं। अब जो हम लोग मेन एक और चीज़ है, चूँकि ये खरीफ मौसम आने वाला है और खरीफ मौसम में आपको किसान भाइयों को बता दें कि कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होने का ये कारण है कि चूँकि वर्षा बराबर होते रहती है, और वर्षा बराबर होते रहती है उस ढंग से उसका तापमान मिलता है, साथ में आर्द्रता मिलती है, जिसके चलते जो जो कीट है उसका जीवन चक्र बड़ी तेज़ी से बहुत कम कम टाइम में वो मतलब वृद्धि होता है। और जब कीट की जब वो तेजी गति से अगर उसमें मतलब वो पैदा लेगा, फिर बढ़ेगा, अपना जीवन चक्र पूरा करेगा, तो उस कंडीशन में आपके फसल को भी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करता है वो। तो इस कंडीशन में बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बीज उपचार कैसे करें, तो बीज उपचार कैसे करें और किन चीज़ों से करें, तो ये चूँकि इसमें आपको रोग भी लग सकता है और साथ साथ कीट भी लग सकता है, तो बीज उपचार मुख्यतः दो चीज़ों के लिए हम लोग सब्जी में करते हैं। तो अगर दो बीज उपचार करना है तो पहला हम लोग को फफूंद नाशी से करना चाहिए। फफूंद नाशी से इसलिए करना चाहिए कि उसके बीज उपचार अगर हम लोग कर देते हैं तो लगभग 21 दिन से एक महीने तक आपकी फसल को विभिन्न प्रकार के रोगों से ये बचाव करता है। तो किससे करें बीज उपचार, तो बीज उपचार करने के लिए जो कार्बेंडाजिम है, कार्बेंडाजिम का ये 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से उसमें डालना है, और साथ में थोड़ा सा पानी मिला करके और उसको हिला करके और उसको सूखे उसको फर्श पे या जो पॉलीथीन सीट है उसको उसमें छायादार जगह पे उसको सुखाना है, और सुखाने के बाद मतलब उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि फफूंद नाशी से तो बीज उपचार करें ही करें, फफूंद नाशी से करेंगे तो ये रोगों से बचाएगा, साथ ही साथ आपको कीटों से क्षति को रोकने के लिए भी कीटनाशी से उपचार करना है। तो कीटनाशी से किससे उपचार करें, तो कीटनाशी से उपचार करने के लिए एक गौचो दवा आती है जो इमिडाक्लोरोपिड 70 WP रहता है, ये वेजिटेबल पाउडर के रूप में रहता है, मतलब ये भिंगाने वाला पाउडर के रूप में रहता है। तो इसकी जो है 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से इसको मिला करके, और फिर उसमें पानी उतना ही डालना है जितना कि वो भींग जाए बीज, और इसको कोई अगर आपका बीज पॉलीथीन सीट में है या पैकेट में है तो उसी में थोड़ा सा ये मतलब जो मात्रा मैंने बताया वो कीटनाशी का और थोड़ा सा जल दे करके उसको मिला करके और फिर सूखे फर्श पे मतलब उसको सुखा करके तब इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो ज़मीन में जो विभिन्न प्रकार के जो ज़मीन में जो पाए जाने वाले कीट है, तो वो अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो वो हमारे बीज को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, और क्षतिग्रस्त करने के साथ के बाद जो है कि बीज का जमाव नहीं हो सकता है। अगर बीज जम भी गया, अंकुरित हो भी गया, तो पौधा चूँकि बहुत कमज़ोर रहता है तो उस कंडीशन में पुनः दूसरे कीट का आक्रमण होता है, और उसके बाद जो है कि हमारा जो जो जो सब्जी है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये चीज आपको बीज उपचार करना चाहिए। उसके बाद जो है कि हम लोग जो जो लाइन से लाइन और पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी है, इन चीज़ों को आपको अच्छा से मेंटेन करना चाहिए, जिसके चलते क्या होता है कि ये बढ़वार अगर अच्छा होगा तो इस पर कीट का आक्रमण कम होता है। और पुनः हमारे अपने जो, चूँकि ये हम लोग बात कर रहे हैं खरीफ सीजन में, तो खरपतवार से हम लोगों को मतलब अपने खेत को फ्री रखना चाहिए, क्योंकि अगर खरपतवार को अगर फ्री नहीं रखेंगे तो ये दो टाइप से हम लोग को नुकसान करता है। पहला तो ये जो हमारे सब्जी के लिए जो भोजन होता है उसको ये खरपतवार खा जाता है, और दूसरा क्या है कि हमारे जो कीटों के लिए जो है ये आश्रय स्थल बनता है। वहाँ पे जो कीट है वो छुपे रहते हैं, छुप जाते हैं, और पुनः वहाँ से जब उनको मौका मिलता है तो हमारे मेन जो सब्जियाँ हैं उस पर आकर के उनके पत्तियों को और दूसरे हिस्सों को वो क्षतिग्रस्त करता है। तो ये कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं इसको किसान भाइयों आप लोग ज़रूर करें। दूसरा एक बात और कहना चाहेंगे, जो कीटनाशी जहाँ से भी लेते हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाली कीटनाशी लीजिए, अच्छे दुकान से जहाँ पर कीटनाशी मिलता है वहाँ से लीजिए, और आप पक्का कैश में ज़रूर डिमांड करिए, क्योंकि अगर आपके पास ओरिजिनल कैश में रहेगा तो उस कंडीशन में अगर कीटनाशी काम नहीं करता है या कोई परेशानी होती है तो आप उसको जो है आप कहीं पे भी अपने जो ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके पास जाकर के आप उसके विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं कि हमने यहाँ से परचेज किया था और ये काम नहीं कर रहा है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए।
0: यस सर, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब हम सर विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन से कीट मुख्य रूप से खरीफ सब्जी में लगते हैं और उनका समेकित प्रबंधन कैसे करना चाहिए।
2: हाँ, तो हम बात करते हैं पहले ब्रिंजल से, क्योंकि ब्रिंजल जो बैगन बोलते हैं जो किसान भाई बहुत लगाते हैं, अब तो थ्रू आउट ईयर बैगन मिलता है। तो बैगन में किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला चीज़ होती है वो फल एवं तना छेदक जो बैगन का आता है वो उसको परेशान करता है। तो यूं तो किसान भाई उसको कंट्रोल करने के लिए सीधे कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं कीटनाशी का इस्तेमाल ना करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि अब ट्रैप है, प्रपंच जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रैप कहते हैं, और फेरोमोन ट्रैप आता है तो उसका आप किसान भाइयों इस्तेमाल करें। ये फेरोमोन ट्रैप की संख्या 8 से 10 होनी चाहिए प्रति एकड़ में, और इसको जो है इसको जो जनरली जो पौधे जो होता है उसके ऊंचाई से 1.5 फीट से ऊंचा पे इसको किसी लकड़ी के द्वारा इसको सेट किया जाता है। और इसमें जो है, और इसको कब लगाएं अपने खेत में, तो लगभग जो आपकी जो बैंगन की खेत है, बैंगन की जो फसल है उसके 30 दिन के बाद, मतलब जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब कहने का मतलब जो उसके बिचड़ा को जब हम लोग मेन फील्ड में जब लगाते हैं तो जब उसका लगभग 1 महीना हो जाए तो उसमें फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उस समय किसान भाई आप लोग को लगाना चाहिए। और इस जो फेरोमोन ट्रैप है, इस ट्रैप में क्या होता है कि एक ऐसा ट्रैप है जिसमें मतलब मादा का सेंट निकलता है और जिसके चलते नर जो कीट है उसमें आके फंस जाते हैं। तो इसमें एक टेबलेट लगा होता है, ये टेबलेट एक सुगंध निकालता है, तो इस टेबलेट को हर 30 दिन के बाद बदल देना चाहिए, क्योंकि 30 दिन के बाद इसमें जो है उसमें जो निकलने वाली गंध होती है उसका असर घट जाता है, कम हो जाता है, इसलिए आपको बदलना चाहिए। तो ये हो गया बैगन के लिए। अब दूसरी बात क्या है कि ये तो हो गया जो हम लोग ट्रैप लगाते हैं, दूसरी बात है कि एक इस ट्रैप के अलावे जो रस चूसने वाले जो कीट है, जैसे कि अगर आपके बैगन के खेत में अगर थ्रिप्स लगा हुआ है तो उस कंडीशन में उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप, येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं कि पीला चिपकदार प्रपंच होता है, एक कार्डबोर्ड में होता है, उस वो पीला से पेंट किया हुआ रहता है और उसमें गूंद लगाया हुआ रहता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग किसी लकड़ी के माध्यम से फील्ड में अगेन 1.5 फीट की ऊंचाई पे उसको लगाते हैं, और इसमें क्या होता है कि जितने भी रस चूसने वाले जो कीट है उसमें वो चिपक जाता है, और चिपक जाने के कारण जो है उसकी संख्या घट जाती है और आपके जो पौधे हैं बैंगन के जो पौधे हैं वो इससे मतलब ये जो रस चूसने वाले कीट से हैं वो बच जाता है और हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। तो ये हो गया बैगन के फ्रूट एंड सूट बोर्डर के लिए और उनके जो रस चूसने वाले जो कीट हैं उनके लिए। अब हम आगे बात करते हैं भिंडी के लिए। तो भिंडी में क्या होता है, तो भिंडी में भी क्या होता है, भिंडी का जो फल एवं उसके तना को छेद करने वाला एक कीट होता है, तो ये क्या करता है, इसके जो शिशु होते हैं वो जो शुरुआती कंडीशन में क्या होता है, जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है जो भिंडी का, तो उसको काटता है और जब फल निकलने लगता है भिंडी का तो ये भिंडी में इसके जो शिशु है वो छेद करके अंदर घुस जाता है, उसके अंदर खाता है और पुनः आप किसान भाई देखते होंगे क्या कि उसके एक छेद बनाता है और छेद से आप देखते होंगे कि कुछ बाहर की ओर बुरादा की तरफ निकलता है, मतलब वो उसके मल मूत्र हुआ करते हैं। तो ये भिंडी फ्रूट एंड सूट बॉर्डर है। तो इसको जहाँ तक रोकथाम करने के लिए है, तो सबसे पहले किसान भाई मैं बताना चाहूँगा कि ये जहाँ भी आपको दिखे आपके अगर भिंडी में ऐसा कहीं दो चार अगर आपके किसी भिंडी के पौधे में दिख रहा है तो उसको तोड़ लेना चाहिए या काटते हैं अब जैसे भी भिंडी को फल को काट करके और उसको मिट्टी के अंदर दबाना है। सेम केस बैगन के केस में भी करना चाहिए। फील्ड में कभी भी उसको जो काना है या जो भी है जो क्षतिग्रस्त जो है इन कीटों के द्वारा उसको तोड़ करके फील्ड में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसको छोड़ने से क्या होता है, इसमें कीट और रहते हैं और ये क्या होगा कि फिर से उस कीट से बहुत सारे कीट निकल करके उनके जो शिशु हैं या उनके वयस्क हैं वो निकल करके आपके जो दूसरे पौधे हैं उनको वो क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसलिए उसको आपको कहीं एक जगह जमा करके मिट्टी में दबा देना है। अब उसको बात करते हैं दूसरी जो भिंडी के लिए, तो पुनः इसको जो है नीम बेस्ड नीम आधारित जो है कीटनाशी है जो नीम का जो तेल है उसका जैसे 1500 ppm नीम का तेल जो है उसकी 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में और कुछ उसमें स्टिकर मला करके इसको छिड़काव करने से जो है ये भिंडी का फ्रूट एंड सूट बॉर्डर इसे रोक जाएगा। अगर आपकी ये इन्फेस्टेशन ज़्यादा है तब इसके रोकथाम करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5 SG जो सलबुल ग्रेनुल के रूप में आता है उसको पहले भिंगाना है घुलाना है और घुलाने के बाद इसकी 4 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में मिला करके आपको जो है कि मुख्यतः जो है कि 4 बजे के बाद इसको आपको छिड़काव करने से जो है इसका जो है कि रोकथाम हो जाएगा। अब जो भिंडी में जो लगने वाले जो दूसरे कीट है, तो आप देखते होंगे क्या कि भिंडी के जो पत्ता है उसके नीचे हरा हरा बहुत छोटा छोटा फुंसकी टाइप से जो है वो रहता है, तो ये क्या करता है, ये आपके पत्तियों से रस चूसता है और रस चूसने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और पीली जब पड़ जाएंगी तो आपके जो भिंडी का उत्पादन है कहीं ना कहीं घट जाएगा। तो इसके रोकथाम करने के लिए हम लोग जो येलो स्टिकी ट्रैप अभी बात कर रहे थे, एक येलो स्टिकी ट्रैप या ब्लू स्टिकी ट्रैप इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो संख्या है 1 हेक्टेयर में लगभग 100 स्टिकी ट्रैप को इस्तेमाल करने से जो है कि हम लोगों को कीटनाशी का उपयोग नहीं करना पड़ता है और हमारी जो भिंडी है वो कीटनाशी रहित उत्पादन हो सकता है। अब एक और जो कीट है उसका हम लोग व्हाइट फ्लाई कहते हैं, तो ये व्हाइट फ्लाई ये आपके जो खरीफ मौसम आ रहे हैं इसमें इनकी समस्या किसान भाइयों ज़्यादा आता है। आप चूंकि समझ नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है कि सफ़ेद मक्खी किसको बोलते हैं, तो आपके जो खेत में जो पत्तियां होती हैं वो पीली और चितकावर जब दिखने लगे तो यही जो है कि व्हाइट फ्लाई के चलते होता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका जो खेत है खेत में बीच बीच में कहीं कहीं देखेंगे कि उसका जो भेन और भेनलेट है जो पत्तियाँ होती है वो हरा रहेगा और भेन और भेनलेट पीला हो जाता है। और जब आप नहीं इसको देखभाल करेंगे कंट्रोल करने के लिए उपाय नहीं करेंगे तो होता है कि पूरे खेत में आपके भिंडी का पूरा पौधा ऐसे ही दिखने लगता है, कभी कभी तो भिंडी भी पीला हो जाता है। तो ये व्हाइट फ्लाई के चलते होता है और इस ये जो व्हाइट फ्लाई है सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं ये येल्लो वेन मोज़ेक वायरस एक होता है, एक वायरस को ये ट्रांसमिट करता है। मतलब ये ट्रांसमिट करने का मतलब है क्या कि अगर एक पौधे में हो गया तो इस पे व्हाइट फ्लाई इससे रस चूसेगी और ये जहाँ जहाँ दूसरे पौधे पे जाकर के रस चूसेगी उस पौधे में ये फैल जाता है। तो किसान भाइयों इसको रोकथाम करने के लिए जो पहला जहां आप देखें कि अगर जिस पौधे में ये है तो जिस पोर्शन में है उसको ऊपर से काट करके इसको मिट्टी में दबा देना है। अगर पौधे में ज़्यादा फैल गया है तो पूरे पौधे को उखाड़ करके मिट्टी में दबाना है, और उसके बाद जो कीटनाशी है जैसे थायोमेथोक्सम 25WG इसकी आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में साथ में स्टिकर मिला करके इसको छिड़काव करना है। अगर थायोमेथोक्सम उपलब्ध नहीं है देन आप जो है थायोमेथोक्सम 25WG एक टारा के नाम से भी आता है, एक टारा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा तो इमिडाक्लोपीड 17.8 SL इसकी आधा ML मात्रा प्रति लीटर पानी में इसको आपको छिड़काव करने से ये जो एलोवेरा मोज़ेक वायरस है ये आप रोकथाम इससे हो सकता है। अब कुछ बात करते हैं जो मिर्च लगा होता है तो मिर्च में भी क्या होता है, मिर्च में भी आप देखेंगे क्या कि ऊपर के जो पत्तियां होती है वो किकूड़ने लगती हैं, जिसको आप लोग लोकल भाषा में किकूड़ना कहते हैं। तो ये मुख्यतः रस चूसने वाले कीटों के चलते होता है, और इसके रोकथाम करने के लिए पुनः जो हमने अभी बताया थायोमेथोक्सम या इमिडाक्लोपीड जो जितना मात्रा बताए हैं उसको इस्तेमाल करने से ये आप मिर्च में इसका जो किकुरी रोग है इसे आप लोग बच सकते हैं। किसान भाइयों को बहुत लोग का रहता है कि मैं दवा इस्तेमाल करता हूं उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, तो इसके लिए ये है किसान भाई को जिसमें हो जाएगा उसको कभी भी सही नहीं हो पाएगा, उसको आपको उखाड़ के हटाना है, दूसरे में ये फैलने से आपको बचाता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें, वो काम जरूर करता है लेकिन जो पोर्शन अगर क्षतिग्रस्त हो गया है वो कभी सही नहीं होगा। अब आते हैं कद्दू वर्गीय सब्जी में, तो कद्दू वर्गीय सब्जी में खरीफ मौसम में भी लोग करेला लगाते हैं, उसके बाद खीरा लगाते हैं, कुछ कद्दू भी लगाते हैं। तो इसमें जो है अगर कद्दू की बात करें तो कद्दू में जो लाल भृंग का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो उस कंडीशन में जो है अगर हम लोग राख का इस्तेमाल करते हैं तो राख छिड़काव करने से ये इसके भृंग का प्रॉब्लम कम होता है। अगर जहाँ राख नहीं है तो फेन वैलेरेट का जो डस्ट है 5% उसकी जो है 10 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुड़काव करने से उससे हम लोग मतलब बच सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर खीरा में जो शिशु है कैटरपिलर है या शिशु या जो चलने वाले कीट है उसके चलते अगर कोई छेद कर रहा है या फ्रूट फ्लाई लगता है तो अगेन जो है उसके लिए जो क्यू लियो ट्रैप आता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ट्रैप आपके पास उपलब्ध नहीं है देन आप जो है ये तब आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करके इससे रोकथाम कर सकते हैं। तो ये संक्षेप में जो है मुख्यतः जो भी आपके जो खरीफ फसलों में जो लगने वाली कीट है उनके लिए हमने उपाय बताया है। इसमें देखना आपको ये है कि आपको कैसा कीटनाशी आपको छिड़काव करना चाहिए, नीम बेस से लेकर के हमने रासायनिक का भी नाम बताया है, लेकिन कोशिश किसान भाइयों की यही रहनी चाहिए कि हम कम से कम जहरीला कीटनाशी इस्तेमाल करें ताकि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दुष्प्रभाव ना पड़े। धन्यवाद।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जो तरीके बताए उन तरीकों को अपनाकर किसान भाई बहन अपने खरीफ फसलों को खरीफ सब्जियों को बचा सकते हैं कीटों के प्रभाव से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
8: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
9: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
8: और लाइट बिल के
9: अब 0 रुपए कैसे दूं?
8: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
10: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर।
12: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मोटे अनाज के बारे में जिसे कि श्री अन्न भी कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं बाजरा के बारे में। बाजरा जो कि कुछ ऐसे क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां वर्षा काफी कम होती है। तो आइए आज हम बाजरा की वैज्ञानिक खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर आनंद कुमार से। सर, आप हैं अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग से। सर, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: किसान भाइयों, आज हम लोग जो बात करेंगे वो बाजरा की वैज्ञानिक खेती कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें और अपनी आय वृद्धि कैसे करें, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।
0: जी सर, तो सर सबसे पहला सवाल यही है कि बाजरा की वैज्ञानिक खेती अपनाने से किसानों का क्या उत्पादन लाभ भी मिलता है किसानों को, और पोषण सुरक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो क्या इस क्षेत्र में भी लाभ मिलते हैं?
2: जैसा कि किसान भाई हम लोग जानते हैं कि बाजरा प्रमुख श्री अन्न फसलों में से एक है, और जहां तक वैश्विक स्तर पर हम लोग देखते हैं तो यह छठी सबसे महत्वपूर्ण धान्य फसल है। इसका जो खेती होता है वो मोस्टली कहाँ होता है? जहां शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए है, जहां पर सूखा की स्थिति रहती है और वहां की भूमि क्या होती है, कम उर्वरा शक्ति वाली होती है, और ये उच्च तापमान जहां पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है वहां जीवित रहने में ये सक्षम होती है। इसके लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वह हल्की मध्य भूमि में सबसे अच्छी उपज देती है, इसलिए सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक किसानों के लिए एक वरदान है। जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि बदलती जलवायु परिस्थिति में बाजरा एक क्या है, एक

0: जलवायु सहिष्णु फसल के रूप में उभर रहा है और बाजरा अत्यधिक पौष्टिक अनाज है। इसमें देखिएगा प्रोटीन का मात्रा जिसे चावल के अपेक्षा बहुत ज्यादा है 11.5% होती है, फाइबर होती है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम तथा अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसका हरा चना में और भूसा पशुओं के लिए भी उत्तम चारा के रूप में हम लोग किसान भाई उपयोग करते हैं। तो बाजरा की खेती में कम लागत भी बहुत कम लगता है, कम पानी की आवश्यकता पड़ता है और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बाजार में इसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए किसानों की आय बढ़ाने तथा खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में बाजरा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
1: जी सर, अगर हम बाजरा की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु की बात करें और किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए और बुआई का सही समय क्या है?
0: जैसा कि किसान भाई हम लोग जानते हैं कि बाजरा को जो है वह शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त फसल है। तो बाजरा की खेती कैसे भूमि में हम लोग कर सकते हैं? तो ऐसे खेत जो दोमट बलुई एवं बलुई भूमि में है तो उसमें सफलतापूर्वक हम लोग कर सकते हैं। और एक बात का हम लोग को ध्यान रखना है कि भूमि में जल निकास की सुविधा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि अधिक समय तक खेत में पानी भरा रहना फसल को नुकसान पहुँचा सकता है। और वर्षा के पश्चात जैसे ही मानसून शुरू हो के पहले प्रथम जुताई में मिट्टी पलटने वाले हल या डिस्क हैरो से हम लोग खेत को जुताई कर देनी चाहिए और इसके पश्चात हैरो द्वारा एक क्रॉस जुताई करके पाटा लगाकर खेत को एकदम समतल कर देना चाहिए कि कहीं भी पानी नहीं जमे। तो जहां तक हम लोग बीज दर के बारे में बात करेंगे तो बाजरा की बुआई का समय किस्मों के पकने की अवधि पर निर्भर करता है। तो बाजरा में तीन तरह का फसल हम लोग लेते हैं। तो बाजरा में दीर्घायु जो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है वो 80 से 90 दिनों में पकने वाली किस्मों की बुआई करते हैं। इसके लिए जो उचित समय होता है वह जुलाई के प्रथम सप्ताह में है तथा मध्यम अवधि जो 70 से 80 दिनों में किस्मों में पकने की होती है उसकी बुआई 10 जुलाई तक हर हालत में कर देनी चाहिए। और जो शीघ्र और जल्दी जो अर्ली होती है वो 65 से 70 दिनों में पकने वाली किस्में होती है उसका बुआई हम लोग 10 से 20 जुलाई तक कर सकते हैं। और जहां तक बीज दर का बात है तो बाजरे की फसल के लिए उचित बीज दर 3 से 4.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। तो बाजरा की बुआई हमेशा पंक्ति में करना ज्यादा फायदा होता है। तो बाजरा की बुआई यदि पंक्ति में करते हैं तो जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है वह 40 से 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधा से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो बीजों की हम लोग बुआई करेंगे तो उसमें गहराई होना चाहिए 2.5 से 3 सेंटीमीटर। इसी तरह हम लोग अब बात करेंगे खाद एवं उर्वरक के बारे में। तो किसान भाइयों को चाहिए कि बुआई के लगभग एक माह पूर्व 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद या सरा हुआ जो गोबर हुआ कंपोस्ट का प्रयोग करें। और जहां पर शुष्क क्षेत्र होता है जैसे कि हम लोग जमुई गया ये सब जो क्षेत्र है में अच्छी फसल प्राप्त करने हेतु उर्वरक की जो अनुशंसित मात्रा होती है वह 40-20-20 यानी 40 kg नेत्रजन, 20 kg फॉस्फोरस और 20 kg पोटास प्रति हेक्टेयर तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए जो खाद की मात्रा होती है वो 60-30-20 यानी नेत्रजन 60 kg, 30 kg फॉस्फोरस और पोटास 30 kg। तो बुआई के समय फॉस्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा नेत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए और एक महीने के बाद जो शेष बची हुई नेत्रजन होती है उसको हम लोग को खेत में डाल देना चाहिए।
1: जी सर, अब हम बात करते हैं उन्नत और अनुशंसित किस्मों के बारे में। तो बाजरा की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?
0: जैसा कि किसान भाई अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए बाजरा में चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संकर किस्में का उपयोग करें। तो बाजरा में संकर और जो संकुल है जिसको हम लोग कंपोजिट किस्में बोलते हैं वो दोनों तरह की किस्में उपलब्ध है। तो बाजरा के जो उन्नत संकर किस्में अनुशंसित उन्नत संकर किस्में हैं उसमें सबसे अच्छा प्रो एग्रो 9001 है जिसको हम लोग 25 जुलाई से 15 अगस्त तक लगा सकते हैं। इसकी जो परिपक्वता अवधि पकने की अवधि है वो 85 से 87 दिनों में तैयार हो जाती है और 52 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हम लोग इसकी उपज ले सकते हैं। और इसकी विशेषता है कि देर से पकने वाले प्रभेद ये हैं और जो इसमें मृदु रोमिल आशिता इसको हम लोग डाउनी मिल्ड्यू रोग कहते हैं झोंका के प्रति इसमें सहने की क्षमता होती है और ये जैव समर्थित प्रभेद है। तो इसमें आयरन की मात्रा 45 ppm और जिंक की मात्रा 37 ppm होती है। उसी तरह दूसरा प्रभेद जो 2024 में रिलीज हुई है वो है HBH191294, ये भी 25 जुलाई से 15 अगस्त की है और ये इसकी परिपक्वता अवधि ये 84 दिनों में तैयार हो जाती है और इसकी औसत उपज 41 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह PBH1879 और कावेरी सुपर बॉस, ये भी बहुत अच्छी प्रभेद है कावेरी सुपर बॉस, ये भी 25 जुलाई से 15 अगस्त इसका बुआई का समय है और इसकी ये भी 50 दिनों में तैयार हो जाती है और ये भी उपज 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देती है और इसके दानों में भी आयरन की मात्रा बहुत अच्छी मात्रा होती है जैसे 46 ppm होती है और जिंक की मात्रा 40 ppm। इसी तरह और भी बहुत अच्छी प्रभेद है जो बहुत अच्छा उपज दे रही है जैसे HSB67 या MPM H17 या GHB538। तो किसान भाइयों को जो भी अच्छी कहीं से भी अच्छे संकर बीज मिले वे लगा सकते हैं। इसी तरह यदि किसान भाई संकुल किस्में लगाना चाहते हैं तो उसमें धन शक्ति और PC701 जिसको हम लोग पूसा कंपोजिट 701 कहते हैं ये लगा सकते हैं। इसकी उपज थोड़ा जो संकर किस्में होती है उससे कम होती है।
1: जी सर, अब आप हमें ये बताइए कि अगर हम बाजरा के प्रमुख रोगों और कीटों के बारे में बात करें तो वो कौन कौन से हैं और उनके प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है और क्या समेकित प्रबंधन किसान भाई बहन कर सकते हैं।
0: जैसे कि किसान भाई बाजरा में जो प्रमुख रोग लगते हैं उसमें मृदा रोमिल आसिता रोग जिसको हम लोग डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं और इसमें स्मट जिसको कंडुआ रोग कहते हैं और अर्गट तथा रतुआ रोग, ये मोस्टली यही जो रोग हैं वो बाजरा में लगते हैं। तो रोगों को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा है कि जो हम लोग बताए हैं प्रतिरोधी किस्म उसका उपयोग करें तो उसका देखिएगा कि उसमें आपको डिजीज बहुत कम लगेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इसमें जो बाजरा में लगता है वो डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदा रोमिल आसिता रोग, इसको आप लोग कैसे पहचानिएगा तो इसके पहचानने का सबसे बड़ा लक्षण है कि पत्ती के जो निचली सतह होती है उस पर सफ़ेद अलैंगिक बीजाणु जनन से संक्रमित हरिमाहीन पर्ण आपको दिखाई देगा और गंभीर स्थिति में ये जो संक्रमित पौधे होते हैं वे छोटे रह जाते हैं तथा उसमें देखिएगा कि पुष्प गुच्छ उसमें नहीं बन पाता है और हरी बालियां जैसे लक्षण उसमें आपको दिखाई देंगे। इसका प्रबंधन है कि एक ग्रीष्मकालीन जब ग्रीष्म सीजन रहता है उसमें गहरी जुताई कर दें या यदि आपको रोग दिखाई दे तो एक दवा आती है मेटालेक्जिल एप्रोन जिसको हम लोग एप्रोन 35 ST उसको 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप या चिटोसिन दवा आती है जो 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से आप बीजोपचार कर दें तो इसे देखिएगा कि इसका जो इसका रोग आपको उसमें नहीं लगने की समस्या रहेगा। यदि आप दूसरा जो रोग है वो है स्मट, ये इस बीमारी में देखिएगा कि पौधे की जो बाली होती है उसमें दाने हरे रंग एवं बड़े हो जाते हैं। इस बीमारी के कारण देखिएगा कि बाद में ये जो दाने हरे रहते हैं वे काले पड़ जाते हैं तथा पूरे फफूंद के स्पॉट आपको भरे दिखाई देते हैं। तो ग्रसित बालियों को आप खेत से हटाकर तुरंत जला दें या पत्ती निकलने की अवस्था में पुष्प गुच्छ पर जिनेब दवा आती है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप दो छिड़काव कर दें फिर 15 दिनों के बाद पुनः उसको रिपीट कर दें। तीसरा जो बीमारी है अर्गट, इस रोग को आसानी से पहचाना जा सकता है। इस रोग में संक्रमित जो पुष्प जो बाली में पुष्प रहते हैं मलाई जैसे रंग हल्के गुलाबी रंग के मधुरस पदार्थ का स्राव होता है इसमें अनेक जो कुनाइडिया होते हैं कुछ दिनों के बाद यह पदार्थ भूरा और चिपचिपा हो जाता है और बाद में काले पदार्थ के रूप में बदल जाता है। तो फसल पर जो हम लोग बाली जो जिसको हम लोग सिट्टी बोलते हैं उस जैसे ही बनता हो उसमें 2.5 किलो जो जिनेब फफूंदनाशक जिनेब दवा होती है या 2 किलो मैनकोजेब दवा कम से कम 3 से 4 छिड़काव जो 3 से 15 दिनों के पर अपना करते रहें। इसी तरह हम लोग बात करेंगे जो प्रमुख कीट लगते हैं तो बाजरा में जो प्रमुख कीट लगते हैं उसमें देखिएगा कि सूट फ्लाई जिसको हम लोग परोह मक्खी बोलते हैं तो इसको पहचानने का है कि जैसे ही ये इसका कीट का प्रभाव होता है तो देखिएगा कि बाजरा का जो बीच वाला केंद्रीय तना होगा वो सूखने लगेगा और परों जो मक्खी का जो सबसे बड़ा ये रहता है कि प्रकोप होने पर अंकुरण के 10 या 20 दिनों के बाद जो फसल पर साइपरमेथ्रिन एक दवा आती है उसका छिड़काव कर दें तब इससे बचाव हो सकता है। उसी तरह दूसरी प्रमुख जो कीट है वो सफ़ेद मक्खी है तो सफ़ेद मक्खी का जो सुंडी जिसको हम लोग ग्रब कहते हैं वो जड़ों पर हमला करता है और पौधों को क्या करता है, मृत्यु के कारण। देखिएगा कि जो पौधा और पौधा के बीच में क्या होता है, बीच में पौधा मर गया तो अंतराल आपको ज़्यादा दिखाई देगा। और व्यस्क जो इसका कीट होता है वो जो बाजरे की दुधिया अवस्था में जो फूल और दाना बनता है उसको खा जाता है। तो इसका प्रबंधन का सबसे अच्छा उपाय है बीज के साथ 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एक बाजार में कार्बोफिरोन दवा 3G आती है, उसको जो बुआई के समय उसके लिए कूड़ा जो बनाते हैं उसमें वो डालते जाएं, तो इसका देखिएगा कि इस कीट को वो आपके खेत में नहीं लगेंगे।
1: जी सर, तो आपने जो उपयोगी बातें बताई, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाई बहनों, आप बाजरा की खेती कीजिए और खेती को वैज्ञानिक तरीके से कीजिए तो आपको काफी लाभ होगा। तो उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आज के लिए इतना ही, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी फसलों का भी विशेष ध्यान रखें। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
6: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है
1: कविता, शीर्षक है चींटी, कवि है सुमित्रा नंदन पंत। चींटी को देखा, चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, वह सरल विरल काली रेखा, तम के धागे सी जो हिलडुल, तम के धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपील का पाती, वह है पिपील का पाती, देखो ना किस भांति, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत, कन कन करके चुनती अविरत, गाय चराती धूप खिलाती, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती, घर आंगन जनपथ बुहारती, देखो वह बलमीक सुघर, देखो वह बलमीक सुघर, उसके भीतर है दुर्ग नगर, उसके भीतर है दुर्ग नगर, अद्भुत उसकी निर्माण कला, अद्भुत उसकी निर्माण कला, कोई शिल्पी क्या करे भला, कोई शिल्पी क्या करे भला, उसमें है सौध धाम जनपथ, उसमें है सौध धाम जनपथ, आंगन गुगृह भंडार अकथ, आंगन गुगृह भंडार अकथ, चींटी है प्राणी सामाजिक, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक।
0: अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 23 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। मौसम आधारित चेतावनी ये है कि जिले के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसान भाई बहनों को खेत के कार्य स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की बीएलएम 389, आरयू8, बाकुला इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन हेतु तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। किसान भाई बहनों जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रोपाई इस महीने में पूरी कर ले। धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और खेत में जल जमाव बनाए रखें। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया का ऊपरी निवेशन करें यानी कि यूरिया डालें। धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों बाद यूरिया का ऊपरी निवेशन करना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा को खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखना बहुत जरूरी होता है। बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जो मिर्च की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर लेनी चाहिए। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी एक और पंजाब लाल। संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगीती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। पशुओं का विशेष ध्यान रखें, खुरपका और मुंह पका रोग होने की संभावना होती है तो उन्हें टीके जरूर लगवा लें और अगर रोग के कोई लक्षण दिखे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने की पानी की व्यवस्था करें, उन्हें संतुलित आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं सेहत से जुड़ी हुई। क्या हो गया है ना कि आजकल के समय में फोन हमारा इतना अच्छा साथी बन गया है कि इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर एक चीज पर पड़ता है, फिर चाहे वो रिश्ते हों या फिर हमारी दिनचर्या। और हमारी दिनचर्या तो इतनी बुरी तरह से बिगड़ी है कि उसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां भी हो रही है हमें, चाहे मोटापा हो, डायबिटीज हो, हार्ट की बीमारी हो, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारी दिनचर्या एक जैसी है ही नहीं। कभी 10 बजे सो गए, कभी 12 बजे सो गए, कभी 3 बजे सो रहे हैं तो किसी दिन शाम को 6 बजे ही नींद आ गई, कभी सुबह 4 बजे जग रहे हैं, कभी 6 बजे जग रहे हैं, कभी 10 बजे जग रहे हैं। और ये जो सोने और जागने का ठीक समय नहीं होता है जिसकी वजह से हमारा शरीर अच्छे से अपने आप को संतुलित नहीं बना पाता है। सोचिए आपके ऑफिस वाले कभी आपको सुबह 6 बजे बुला रहे हैं, कभी 8 बजे बुला रहे हैं, कभी 10 बजे बुला रहे हैं और आपको छुट्टी दे रहे हैं, कभी 7 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, तो आपका दिमाग भन्ना जाएगा या नहीं? उसी तरीके से हमारे शरीर का दिमाग भी भन्ना जाता है और वो हमारे अंदर ढेर सारी बीमारियां पैदा करने लगता है। तो क्या होते हैं सही समय पर नहीं सोने और जागने के नुकसान, आइए इस बारे में जानते हैं और किस तरीके से आप इसे सुधार सकते हैं इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर का एक सर्कैडियन रिदम होता है, ये शरीर का एक 24 घंटे की जैविक घड़ी है। जैसे हम रूटीन बना कर रखते हैं ना कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी 24 घंटे का एक रूटीन बना कर रखता है। और जो हमारे दिमाग का हिस्सा होता है जिसे कि हम SCN कहते हैं, वो यही तय करता है कि कब नींद आएगी, कब भूख लगेगी, हार्मोन कब निकलेंगे। और अगर एक ही समय पर हम सोते और जागते हैं तो जो सोने वाला हार्मोन होता है यानी कि मेलाटोनिन, जिसे कि हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, वो सही समय पर निकलता है। और जब ये सही समय पर निकलता है तो हमें नींद अच्छी आती है, गहरी आती है। और जब हम गहरी और अच्छी नींद सोते हैं तो सुबह उठने में भी हमें थकान बिल्कुल नहीं लगती और हम बिल्कुल तरोताजा फ्रेश महसूस करते हैं। अगर हम सही समय पर सोते हैं तो हार्मोन और शरीर पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो कॉर्टिसोल, जिसे कि हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो संतुलित रहता है। इसके साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर रहती है। जी हाँ, इंसुलिन, जिससे कि डायबिटीज का खतरा होता है, वो भी आपके निश्चित समय पर सोने और जागने से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रोथ हार्मोन भी सही समय पर निकलता है, जिससे कि हमारे जो मांसपेशी होते हैं वो रिपेयर होते हैं। और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन हमारे लिए एक एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। यानी कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना कि उम्र से पहले ही वो काफी बूढ़े लगते हैं। इसके पीछे हालांकि कई सारी वजहें होती हैं और उनमें से एक वजह ये भी होती है कि आप सही समय पर, आप निश्चित समय पर नहीं सो रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं। निश्चित समय पर सोने और जागने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके लिए कई सारे रिसर्च भी किए गए हैं। और रिसर्च क्या कहते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो लोग रोज अलग अलग समय पर सोते हैं उनमें मोटापा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी जो बीमारियां हैं वो काफी ज्यादा पाई जाती है और उनमें हार्ट डिजीज का खतरा भी 20-30% अधिक होता है। वहीं जो लोग निश्चित समय पर सोते हैं, जागते हैं, उनकी जो याददाश्त शक्ति होती है वो बेहतर होती है, वो किसी चीज़ पर फोकस अच्छा कर सकते हैं, उनका जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, आइए अब हम ये जानते हैं कि हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। जी हाँ, अगर हम आयुर्वेदिक दिनचर्या की बात करें तो ये कहता है कि रात 10 से 2 बजे तक, जो कफ से पित्त काल कहा जाता है, इस समय हमारा शरीर लीवर डिटॉक्स करता है, टिश्यू रिपेयर करता है और डाइजेशन को रीसेट करता है। लीवर डिटॉक्स यानी कि जो आपके लीवर में जितनी भी गंदगियां हैं वो रात के 10 बजे से 2 बजे तक साफ होते हैं। हमारे शरीर में अगर कोई चोट लगी है या फिर किसी और तरह की कोई परेशानी है तो वो रिपेयर भी इसी समय में होता है, हमारा डाइजेशन भी उस वक्त रिसेट होता है। तो 10 से 2 बजे का जो समय होता है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे शरीर के रिपेयर के लिए, हमारे शरीर को साफ सुथरा करने के लिए। इसलिए अगर हम 10 से 2 बजे तक जागते रहते हैं तो हमारा शरीर तो दूसरा काम कर ही नहीं पाता,
इस वजह से हमारा शरीर और भी खराब होता जाता है। और अगर आप 10 बजे के बाद जागते हैं तो आपके अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है, यानी कि गैस से संबंधित समस्या होती है, त्वचा की समस्या होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, आपके अंदर घबराहट जैसी परेशानी बढ़ती है। वहीं अगर आप 10 बजे तक आयुर्वेद के हिसाब से सो जाते हैं तो आपको ये सारी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जागो, तो इससे क्या होता है? अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो उस वक्त हमारा दिमाग सबसे शांत और सबसे स्पष्ट होता है। अब अगर आप कभी किसी फैसले को लेने में उलझे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और उस वक्त थोड़ा ध्यान कीजिए और फिर सोचिए कि आपके फैसले का समाधान क्या क्या हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच का माना जाता है। वहीं ये जो मुहूर्त होता है यानी कि 4 से 6 बजे का, उस समय कहा जाता है कि ध्यान करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। ये आपने सुना होगा ना, हमारे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि सवेरे जागकर पढ़ाई करो, उस वक्त अच्छी पढ़ाई होती है, उस वक्त जो चीज़ें याद करते हैं वो याद रह जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रहता है और ऐसे में हम जो भी पढ़ते हैं वो याद रह जाता है। और अभी जो कि शुरुआत में ही हमने बात की, हमारा जो मोबाइल है वो आजकल हमारे ज़िंदगी में इस तरीके से शामिल हो गया है कि क्या कहने। हालांकि कुछ लोग लैपटॉप पर स्क्रीन पर पूरे दिन काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग मोबाइल पर भी टाइम वेस्ट करते हैं। और अगर आप मोबाइल पर काम कर रहे हो या फिर किसी स्क्रीन पर काम कर रहे हो तो ध्यान रखें कि जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है ये दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, मत सो। और इसका वैज्ञानिक प्रभाव ये पड़ता है कि ये ब्लू लाइट मेलाटोनिन को 50-80% तक दबा देती है, जिससे नींद आने में 30-90 मिनट की देरी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी देरी हो सकती है। अगर आप लगातार फ़ोन को चला रहे हैं, दिन भर फ़ोन चला रहे हैं और सोने से ठीक पहले भी आप फ़ोन चला रहे हैं, तब तो आपको नींद आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि आपकी नींद बहुत हल्की आती है, आपकी नींद बार बार टूट जाती है और जब आप सुबह जागते हैं तो आपको बहुत थकान लगती है। तो साइंस और आयुर्वेद दोनों को माने तो रात 9:30 से 10 बजे तक सोना सबसे सही है और सुबह 5 से 6 बजे तक जगना सबसे बेहतर माना जाता है। और जो लोग दिन भर स्क्रीन पर काम करते हैं वो सोच रहे होंगे हम क्या करें, हमारे पास तो हमेशा ब्लू लाइट रहता है, तो आप दिन में काम कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी या तेज लाइट वाली कोई भी चीज़ है तो उसे बंद कर दीजिए। आप दिन भर काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वैसे तो कहा जाता है कि सोने से 3 घंटे पहले ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो कम से कम 1 घंटा पहले तो ये काम ज़रूर करें। तो आप सोने से पहले कर क्या सकते हैं, तो आप हल्का संगीत सुनिए, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो पढ़िए, पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। और एक रूल बना लें कि बिस्तर पर मोबाइल का यूज़ करना ही नहीं है। और इसके साथ ही अब तक हमने मोबाइल के बारे में बात की, हमने कहा ना आपको कि रात में जो हमारा शरीर होता है वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है, उसे ठीक ठाक करता है। तो उस दौरान अगर हमारा शरीर सोचिए खाना पचाने में लग जाए तो हमारा शरीर रिपेयर कब होगा? इसलिए सुझाव दिया जाता है कि देर रात खाना नहीं खाना चाहिए, ख़ास तौर से सोने के 3 घंटे पहले तक आप अपना खाना फिनिश कर लीजिए। और अगर आपको उसके बाद कुछ खाना भी हो तो बहुत हल्का, तला भुना नहीं और बहुत स्पाइसी मत खाइए। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी गई हो या फिर आप काम में बिजी रहे और आपको खाने का वक्त नहीं मिला तो, ये कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन आम तौर पर आपको सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि खाना जो होता है हमारा 3 घंटे में पच जाता है और जब हम सोएंगे तो हमारा शरीर खाना खाने में वक्त नहीं लगाता, बल्कि वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है। और अगर हम सिंपल सी बात करें तो कितनी नींद से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोते कब हैं और क्या आप निश्चित वक्त पर सोते हैं या नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना

सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: साथियों, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। साथियों, खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है। अब खेती में भी दिमाग वाला कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में AI की संभावनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं, और हमारे साथ आज हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन के प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र। आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप विश्वविद्यालय में खेती में AI के अभिनव प्रयोग पर कार्य करते रहते हैं। आप बताएं कि AI किस तरह से खेतों में उपयोगी हो सकता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का नमस्कार। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि AI क्या है। देखिए, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इंसान और चाहे हम जानवर की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, उनके बीच और इंसान के बीच एक जो पतली सी जो सूत्र है ना, वो है बुद्धिमत्ता की। यानी कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें इंसान दिमाग लगाने वाला प्राणी है। लेकिन अब जो ज़माना आ चुका है, आने वाला है, ये हम नहीं कहेंगे, ये पिछले वर्षों तक की बात थी कि आने वाला है, बल्कि यह AI का दौर है और आ चुका है। तो ये जो बुद्धिमत्ता है, अब मशीनी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। तो ऐसे में जो सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, आकलन करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें मशीन में आ चुकी है। तो कहते हैं कि जो पिछला वर्ष जो गुजरा, 2024 का जो वर्ष था, वो AI एक एक्साइटमेंट के तौर पे आया था। फिर 2025 में AI एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया। लेकिन अब जो AI है ना, वो हमारे ज़िंदगी का भाग बन चुका है। एक हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो अब खेती जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। इससे के बगैर चाहे वो दुनिया जितना भी एडवांस हो जाए, जितना भी दुनिया तरक्की कर ले, लेकिन खेती में जब तक कि विकास की बात ना करें तो बातें अधूरी रह जाती हैं। यानी कि ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए हमें खेती ज़रूरी है। तो अब खेती में AI का क्या प्रयोग हो सकता है? तो देखिए, पहले की बात कि AI का आप अभी कैसे प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल में प्रयोग कर रहे थे, मार्केटिंग वाले बड़ा आसानी से आपका डेटा ले लेते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वो आपको प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही थी, अब ये आम आदमी जो है अब करने लगा है। ChatGPT से आप सवाल पूछते हैं, जवाब देता है।
0: मतलब उसमें अब AI बड़ी बड़ी कंपनियों से
1: आम आदमी के आसपास आ चुका है। गूगल का जो AI स्टूडियो है, आपका काम आसान कर रहा है, विद्यार्थियों का काम आसान कर रहा है। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। तो जो चर्चाएं हैं, नकारात्मक वाली पहले होती हैं। तो AI जब कदम रख रहा था, तो या अभी भी जिनके लिए AI नया है, तो उनके बारे में AI के बारे में बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं। AI जॉब खा जाएगा, AI हमारा नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। जब कंप्यूटर भारत में आ रहा था तो इसी तरह की अफवाहें थी, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारी ज़िंदगी आसान हुई। टिकट की लाइन अब नहीं लगती, हमारे मोबाइल पे ही टिकटिंग होती है। सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के ये जो दुनिया बदलाव देख रहे हैं, इस कंप्यूटर के बदौलत ही हुई है। तो AI इसका एक नया वर्जन है, और उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और खेती में भी ये बदलाव हमारे सामने होगा।
0: यानी कि AI को हम अगर हम अपना साथी बना लें, उसे दुश्मन न समझे, तो चीज़ें आसान हो जाएगी।
1: बिल्कुल, ये ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी, बल्कि वो चीज़ें हमारे लिए सुलभ भी हो जाएगी। इससे गरीबों का भी फायदा होने वाला है। अब देखिए, खेती जो है वो किसान करते हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश की, जो अभी भी हमारे राज्य की निर्भरता खेती के ऊपर ही है। अब देखिए, खेती में इसका प्रयोग से कैसे किसान अपना खर्च बचा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि खेती में पहला कदम जो है AI से हम कैसे करवा सकते हैं। तो फसल के चयन और बुआई में भी हम AI की मदद ले सकते हैं।
0: अच्छा।
1: तो अक्सर किसान भाई पूछते हैं, जब हम अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान होते हैं, जब हम उनसे मिलते जुलते हैं, प्रशिक्षणों में मिलते हैं, तो कहते हैं क्या कि इस साल कौन सी फसल बोए, इस साल कौन सी फसल का की बारी है, मंजर आएगा कि नहीं, बारिश की संभावना कितनी है, होगी नहीं, या ये इस बार ज़्यादा बारिश हो गई है तो क्या लगाएं। हाँ। तो ऐसा जो सिस्टम है ना, तो हम उसको अगर इसमें एआई से हम पूछें तो एआई के पास अगर इस तरह के डाटा है तो जो जवाब देगा वो बहुत ही सटीक होगा, बल्कि भ्रामक नहीं होगा। अब मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो भी सटीक होती है, कई बार वो भी उसमें कमी रह जाती है, लेकिन जो एआई की जो अपनी जो एआई भविष्यवाणी नहीं करता बल्कि डेटा के आधार पर ही आपको चीज़ों से अवगत कराता है। तो ऐसे में एआई से हम पूछें कि इस बार कौन सी फसल बोएं, तो एआई पहले ये देखेगा कि इस बार मौसम जो है वो पिछले बार कैसा रहा था। पिछले 50 साल के जो मौसम का डेटा, एक पैटर्न होता है बारिश का कि अगर इतना तापमान है तो बारिश की इतनी संभावना होगी, कोई अगर एल नीनो जैसे अभी चल रहा है तो उसका प्रभाव से कितना बारिश की संभावना है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, एआई आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं ये भी जल्द ही एआई आपको बता देगा। और हम लोग भी एआई आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके जरिए आपको मौसम की के जो मिजाज हैं उसके अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एआई आपको फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है, बुआई के समय में। अब देखिए जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है, तो इस चीज़ को एआई बहुत तेज़ी से गणना करता है। जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज़्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो। तो ऐसे में जब ये बारिश हो रही थी उस समय, तो आप एआई के जरिए अनुमान लगा करके इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ की क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सब के डेटा अगर आपके एआई के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में एआई आपको मदद करता है।
0: अच्छा, एआई क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है और कैसे दे सकता है एआई हमें मौसम की सटीक जानकारी?
1: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो एआई आधारित मौसम प्रणाली है उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं और अगली बुआई का पहले से ये तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाप की आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे, तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है एआई से जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल का बुआई कर सकते हैं।
0: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में एआई मदद कर सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, ये देखिए कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद पानी जो श्रम है, इसके अतिरिक्त जो कृषि रसायन है ना, जिसमें कि कीटों को रोकथाम, इसके रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है। यानी कि जो एक किसान खेती करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस बार की खेती में हमें मात्र 20% मुनाफा हुआ या 10% ही मुनाफा हुआ, या फिर कोई मुनाफा तो हुआ ही नहीं, बस जो हमने
2: जितना लगाया था उतना ही हमें निकल पाया। तो इस चीज़ को करने के लिए खेती के जो खेती से आमदनी को दोगुनी और तीनगुनी करने में सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम कैसे हम इसका प्रबंधन कीटों और रोगों को सही तरीके से करें। तो जो AI है वो कीटों की पहचान करने में, उसकी रोकथाम करने में, सलाह देने में बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ई निरोग ऐप है, ये भी इस पे काम कर रहा है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने खेतों में जो भी पौधे आक्रांत हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप यानी कि कोई आपकी पारंपरिक खेती हो या फिर बागवानी हो, लत्तेदार सब्जियां हो, तो उनके फसलों के जो आक्रांत वाले भाग हैं उसको फोटो खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो AI सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है, उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती हैं। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और IIIT के सहयोग से, अच्छा। और ये काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप भी कार्यरत हैं, जैसे प्लांटिक्स के नाम से एक ऐप है, उसमें भी आप लोड करके और अपने जो भी प्लांट हैं उसके भाग को फोटो खींच करके आप उसमें दे सकते हैं, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको सहज है तो गूगल आज ये फैसिलिटी देता है, गूगल जेमिनाई हो या गूगल का AI मोड पे आप जाएं, आप अपने पौधे की फ़ोटो खींचें, आप उसके बारे में पूछें। हाँ, आप ध्यान रखें कि फ़ोटो आपका सही एंगल से रहना चाहिए, उसमें जो फ़ोटो को सही एंगल के साथ साथ फ़ोटो सही प्रकाश में यानी कि सही लाइट में खींची जानी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके। नहीं तो हो सकता है कि आपका अगर फ़ोटो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो तो उसका जो रिप्लाई है, जो आपका प्रतिउत्तर जो आएगा, उसमें थोड़ी सी आपकी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें गलती की संभावना कम रहती है जो AI जो डाटा दे रहा है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, आप सीधे अपने दुकानदार भाई से जाके पूछते थे कि इसमें ऐसा कीट लग गया है, फल ससमट लग गया है, इसमें मधुआ लग गया है, तो इसके लिए कोई दवा बता दी। तो क्या करता था कि वो दवा आपके फायदे से ज़्यादा उनके फायदे में कौन सा हो सकता है, किस पे ज़्यादा उनका कमीशन है, ऐसी संभावना बनती थी और वो आपको दे देते थे। सबसे ज़्यादा जो किसान सलाह लेते हैं वो दुकानदार से ही लेते हैं जो दवा बेचने वाला है। तो ऐसे में आप पहले से अगर जागरूक रहेंगे तो पूछ सकते हैं कि नहीं भैया उसमें कीट तो ये है तो हम फिर ये दवा क्यों डालें। तो ये एक है उसमें कि आपको कीटनाशक का जो नाम आ जाएगा, छिड़काव की विधियां आ जाएंगी, और एक सिस्टेमिक जो दवा है जो कि वैज्ञानिक ही बता पाते हैं कि कब कब किस मात्रा में दवा दें ताकि उसका सिर्फ निदान नहीं हो पाए बल्कि अगली बार भी जो है वो खेती में आपका कीट ना आ पाए, इसका भी निदान बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है AI अभी बखूबी करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पैसा कम लगा, फसल में ज़्यादा रसायन नहीं पड़े तो फसल भी जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा और सुरक्षित रहेगा, हमारे कंजप्शन के हिसाब से ज़्यादा सटीक रहेगा। तो इस तरह से हमारे लिए जो कीट और रोग की पहचान निदान में हमारा AI जो है सहायक बन रहा है।
0: बस किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो भी फोटो खींचते हैं वो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सही प्रकाश में सही एंगल से ली गई होनी चाहिए। हमने कीट और उसके प्रबंधन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या AI की मदद से स्मार्ट सिंचाई भी की जा सकती है?
2: हाँ बिल्कुल, देखिए पानी आज सबसे बेशकीमती संसाधन है, हम बेतरतीब तरीके से सिंचाई करें और एक हम सूक्ष्म तरीके से सिंचाई करें और ज़रूरत पड़ने पे ही सिंचाई करें, ये दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि हम सिंचाई के लिए या तो बिजली खपत करते हैं या फिर हम डीजल इंजन चलाते हैं और सबसे जो ज़्यादा कि हम अपने धरती का दोहन करते हैं। तो इन सभी बातों में क्या होता है कि हमारा पैसा लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है अगर हम सही तरीके से सिंचाई न करें, लेकिन AI जो है यहाँ पर भी मदद कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं या कई किसान भाई अपना चुके हैं, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो बड़े स्तर पर जो खेती कर रहे हैं वो AI आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी लगा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि AI को पता होता है कि पानी कब देना है, कितना कितनी मात्रा में देनी है, पानी देनी भी है या फिर नहीं देनी है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर सेंसर लगा होता है। वो मॉइस्चर सेंसर ये बताते रहता है कि इस पौधे में मिट्टी में कितना अभी पानी की मात्रा है या फिर बिल्कुल पानी नहीं है। डेटा पहले से ही बता रहा होता है कि इस फसल में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो एक स्मार्ट तरीके से चल रही होती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और ये पानी जो है अपने उपयोग के हिसाब से ही कमांड जाता है और मोटर चालू हो जाता है और जो भी आपका स्प्रिंकलर है या ड्रिप है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी पानी वहाँ पर जाते रहती है। अगर किसी एरिया में लो लैंड है वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है, आपका कुछ एरिया जो है खेत का अपर लैंड है, तो ऐसे में क्या होता है वहाँ भी वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को चॉक कर देता है और जहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है तो वहीं पे पानी देता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि एआई की मदद से पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, फसल की सेहत बेहतर रहती है और कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों का भी यहाँ पर सदुपयोग हो पाता है।
0: मतलब एआई की मदद से किसान भाई बहन स्मार्ट सिंचाई कर सकते हैं, पानी की कितनी ज़रूरत है और कब पानी देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें एआई की मदद से काफ़ी बेहतर तरीके से की जा सकती है और पानी को भी और फसल को भी बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और एआई और कृषि मशीनें ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से किसान भाई बहनों की मदद कर सकता है?
2: हाँ देखिए, जो मशीनें हैं ना वो एक हार्डवेयर होती है। अब आप कल्पना करिए कि उस हार्डवेयर पे अपना जो कमांड कौन देता है? इंसान देता है। तो ये इंसानी बुद्धि जो है उसको चला रहा है। अब वह दिन भारत में दूर नहीं, चूँकि अब दूर पहले विदेशों में ऐसा हो रहा था, अब इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कि एआई से चलने वाली मशीनें आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको बीज कहाँ पे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी मशीनों में पहले से डेटा फिट रहेगी। आपको वह दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर भी एआई आधारित आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि विदेशों में ऐसे ऐसे कार चल रहे हैं जिसमें ड्राइवर लेस है, जो सब कुछ जानता है, जबकि सड़क पर गाड़ी चला लेना बहुत मुश्किल होता है और खेतों में थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से प्रयोग के स्तर पर की जा रही हैं कि ट्रैक्टर में एआई इनेबल लगाया जाए, ऐसे उसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं, इस तरह के रडार लगाए जा रहे हैं कि खेत को स्कैन करके और जो ट्रैक्टर है वो उसमें परिचालित होता है। अब उसमें आप चाहे तो ज़ीरो टिलेज से की बुआई कर रहे हों तो क्या होता है कि ज़ीरो टिलेज में बीज की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एआई कंट्रोल कर लेगा और उसमें खाद और दवा की जो सटीक मात्रा है वो भी आपको ये चला जाएगा और इस सारा डेटा जो है वो एक सर्वर पे जाएगा और वो सर्वर को ये पता रहेगा कि खेत में कब बुआई हुई है, कब इसमें खाद पड़ना है, सेंसर के जरिए पता होगा कब इसमें सिंचाई होना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है वो एक सीध में होती है और एआई जो है वो खेती को संपादित करता है। तो इससे मजदूरी का खर्च घटेगा आने के दिनों में और काम तेज और सही तरीके से ही होगा।
0: बिल्कुल, मतलब एआई मशीनों के साथ मिलकर और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। किसान भाई बहन की एक और समस्या होती है फसल को उगाने के बाद कि बाजार तक कैसे पहुँचे और उससे अच्छी आमदनी कैसे ले, तो क्या इसमें भी एआई कुछ सहायता कर सकता है?
2: जी बिल्कुल, देखिए एआई अब यह भी बताता है कि फसल की अनुमानित पैदावार कितनी हुई है, उस आधार पर उसका मंडी का भाव क्या है, कब बेचने से ज़्यादा दाम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो हैं वो बिचौलियों पर कम निर्भर रहेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस स्तर के जो कार्य हैं जहाँ पे कॉरपोरेट फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर कि एक बड़े स्तर की खेती हो रही है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो इंगेज हैं वहाँ पे ये एआई आधारित जो बाज़ार भाव है वो उसका सही आकलन हो रहा है। जैसे गेहूं की इस बार अभी खेती हो रही है, मौसम अनुकूल रहता है, बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है, बहुत शानदार फसलें होती हैं, तो क्या होगा कि ज़्यादा उत्पादन यानी कि बाज़ार में मांग कम, तो ऐसी स्थिति में एआई को पता रहेगा कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है। तो किसान भाई अगर इसको ये देखेंगे अपने एआई के माध्यम से कि दूर के मंडी में इतना भाव इसका गिर चुका है बड़ी मंडी में, और छोटे मंडी वाले में अभी भी जो बाजार भाव है वो ठीक ठाक मिल रहा है या हमें स्थानीय स्तर पर ज़्यादा मिल रहा है, तो वो एआई के मदद से अपने अनाज का सही भाव पे, उचित भाव पे उसको बेच सकेंगे। एआई यहाँ यह भी निर्देशित करेगा कि आपको अभी बाज़ार में होल्ड करने की ज़रूरत है, अभी आपका सामान स्टोर रखने की ज़रूरत है क्योंकि बाज़ार में मांग आने वाली है। एआई चूँकि सारी चीज़ें जो है डेटा एनालिसिस के आधार पर करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के आधार पर करते हैं, तो इसका जो डिमांड है, इसका जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो डेटा आते रहती हैं उसके आधार पर आपको ये बताता है कि कब खरीदना है, कब बेचना है। जैसे शेयर मार्केट में होता है, एआई आधारित शेयर मार्केट की जो जानकारियां जो दी जाती है तो उसमें बहुत ही सटीक आधार पर होता है कि कब शेयर खरीदना है, कब बेचना है। तो ठीक उसी तरह से जो कमोडिटी बाज़ार है, जो मंडी भाव है, वहाँ पर भी इसकी जानकारियाँ आपको सही तरीके से दी जाती रहेगी, जिससे कि आपको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जो फसल है उसका उचित दाम मिल पाएगा।
0: मतलब अब एआई बाजारों तक किसान कब पहुँचे तो उनके लिए बेहतर होगा, और कब पैदावार अच्छी हुई है ये एआई अनुमान लगा लेता है, इसके बाद उसका भाव क्या रहने वाला है ये भी अनुमानित हो जाता है, जिससे किसान भाई बहनों को अच्छी जो अच्छा जो मुनाफा है वो मिलता है। और इसके अलावा क्या एआई से होने वाली कुछ चुनौतियां भी है होती है, या फिर उससे कुछ आने वाली मुश्किलें जो होती है उसका कुछ समाधान भी है क्या?
2: देखिए एआई एक सुविधा, एक सुलभता तो है ही, इसमें कई चुनौतियां भी हैं। एआई के जो फायदे के अलावे जो चुनौतियां हैं, जैसे किसान भाई में अभी भी थोड़ी सी लिटरेसी की कमी है, उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो उनके साथ सहज नहीं है, तो एक चुनौती तो है। थोड़ा एक क्या है कि तकनीकी डर है, जैसे अभी हम एक इंसान के तौर पर इंसान से वार्तालाप करते हैं, अब एक निर्जीव चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना कि बताओ भाई इसमें कौन सा फसल लगाएं, इस फसल में क्या रोग लगा हुआ है, तो एक तकनीकी डर है, एक तकनीकी झिझक है, एक चुनौतियां हैं। अब इसका जो समाधान ये है कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जैसे हम अपने किसान भाइयों को दैनिक स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं कि कब क्या लगाएँ, कितना दूरी पर लगाएँ, किस मौसम में लगाएँ, नई नई खेती, इस सब चीज़ों का प्रशिक्षण चलता है, तो अब उनको इस प्रशिक्षण में एआई को भी शामिल करने की ज़रूरत है। तो किसान भाई इस तरह के जो खेती हैं उसमें अगर एआई के बारे में और भी ज़्यादा जागरूक रहें, तो देखिए आप ज़रूरी नहीं कि आप हमारे वार्ता को, हमारी परिचर्चा को सुनकर कल से एआई का प्रयोग शुरू ही कर देंगे, लेकिन एक ये होता है कि आप एआई का दौर आने वाला है, आप कहीं पीछे ना छूट जाएं, आप बिल्कुल तैयार बैठे रहें कि आपके पास एआई का स्किल है, शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो आप खेती कर रहे हैं, कई किसान भाई ड्रोन दीदी जो है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो ड्रोन भी एआई के जरिए आपका वो एक प्रिसाइज वे में खेती का सलाह भी देता है, साथ ही वहाँ पर छिड़काव भी करता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप पहले से संलग्न हैं, तो आने वाला दिन आपका रहेगा। बाकी जो किसान भाई छूट जाएंगे उसमें आप एआई वाले किसान भाई रहेंगे। देखिए एआई से पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से पहले क्या हुआ, मशीन आया। कहते हैं कि जो 1757 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मशीनी युग आया, तो जहाँ पर 10 मजदूर काम करते थे एक मशीन काम करने लगा जी। बड़े बड़े फिर भीमकाय मशीन आने लगे, जहाँ 100 मजदूर काम करते थे एक ही मशीन काम करने लगा, यानी मशीनों ने मजदूरों का जो हक कहते हैं कि छीना था, तो क्या हुआ कि जो मजदूर का हक छीना गया वो मजदूर जो बुद्धिमान थे वो मशीन चलाना सीख लिया, यानी कि जिस मशीन से उनकी नौकरी जाने वाली थी, उनकी दिहाड़ी जाने वाली थी, उन्होंने उस मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया, तो क्या हुआ वो आगे चल के एक बड़े इंजीनियर बन गए, उद्योगपति बन गए। ऐसे ही कंप्यूटर का युग आया, तो जब कंप्यूटर का युग आया तो ऐसे में किसकी नौकरी छीनी, जहाँ पर कि जो क्लरिकल जॉब था, जहाँ पर 10 क्लर्क काम करते थे, वहाँ पर एक कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, जो जिन्होंने कंप्यूटर को सीख लिया उनको तरक्की मिल गई, उस काम को तेज़ी से संपादित करने लगे, उनको अपने काम में ज़्यादा प्रगति मिली और ज़्यादा प्रमोशन मिला। जो नहीं सीखते गए, जो आलोचना करते रहे, वो पीछे छूटते चले गए। ऐसे ही AI का युग है। आपको आलोचना करने से, आप में डर बना करके रखने से, भ्रम फैलाने से AI के दौर पर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। AI आपके जीवन का हिस्सा है, आगे रहेगा, ये आपको स्वीकार करना चाहिए। चाहे वो खेती हो, वो कारोबार हो, शिक्षा जगत हो, मीडिया जगत हो, कोई क्रिएटिव जगत हो, हर जगह पर AI ही AI का बोलबाला रहेगा। अगर आप AI से डरेंगे तो AI वास्तव में आपका जो जॉब है उसका नुकसान पहुंचाएगा, AI से आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप उस AI से काम निकालना सीख जाएंगे तो आप उस AI के मास्टर बन जाएंगे, AI आपका फायदा पहुंचाने वाला बन जाएगा।
0: यानी कि AI से नुकसान हो सकता है, वो नुकसान तभी हो सकता है जब AI से आप अच्छी तरीके से परिचित ना हो। आप अचानक से AI के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लगते हैं, AI से बहुत ज़्यादा मदद लेने लगते हैं उसे बिना जाने समझे, तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो। लेकिन जब आप AI का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं।
2: बिल्कुल, तो आज की खेती सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी और तकनीक से आगे बढ़ेगी। AI जो है वो खेती का दुश्मन नहीं, किसान का नया साथी है। तो याद रखिए, जब तकनीक खेती से जुड़ती है तो खेती भविष्य बन जाती है। इसी संदेश के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
0: धन्यवाद ईश्वर चंद्र जी, आपने AI से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से AI की मदद से किसान भाई बहन बहुत तरक्की कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं, अच्छी पैदावार पा सकते हैं और अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। साथियों, खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है, अब खेती में भी दिमाग वाला कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में एआई की संभावनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं और हमारे साथ आज हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन के प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र। आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप विश्वविद्यालय में खेती में एआई के अभिनव प्रयोग पर कार्य करते रहते हैं, आप बताएं कि एआई किस तरह से खेतों में उपयोगी हो सकता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का नमस्कार। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एआई क्या है। देखिए, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इंसान और चाहे हम जानवर की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, उनके बीच और इंसान के बीच एक जो पतली सी जो सूत्र है ना, वो है बुद्धिमत्ता की। यानी कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें इंसान दिमाग लगाने वाला प्राणी है, लेकिन अब जो जमाना आ चुका है, आने वाला

0: है ये हम नहीं कहेंगे, ये पिछले वर्षों तक की बात थी कि आने वाला है, बल्कि यह एआई का दौर है और आ चुका है। तो ये जो बुद्धिमत्ता है अब मशीनी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। तो ऐसे में जो सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, आकलन करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें मशीन में आ चुकी है। तो कहते हैं कि पिछला वर्ष जो गुजरा, 2024 का जो वर्ष था, वो एआई एक एक्साइटमेंट के तौर पे आया था। फिर 2025 में एआई एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया। लेकिन अब जो एआई है ना, वो हमारे ज़िंदगी का भाग बन चुका है। हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो अब खेती जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। इससे के बगैर चाहे वो दुनिया जितना भी एडवांस हो जाए, जितना भी दुनिया तरक्की कर ले, लेकिन खेती में जब तक कि विकास की बात ना करें तो बातें अधूरी रह जाती हैं। यानी कि ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए हमें खेती ज़रूरी है। तो अब खेती में एआई का क्या प्रयोग हो सकता है? तो देखिए, पहले की बात कि एआई का आप अभी कैसे प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल में प्रयोग कर रहे थे, मार्केटिंग वाले बड़ा आसानी से आपका डेटा ले लेते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वो आपको प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही थी, अब ये आम आदमी जो है अब करने लगा है। चैट जीपीटी से आप सवाल पूछते हैं, जवाब देता है
1: मतलब
0: उसमें।
1: अब एआई बड़ी बड़ी कंपनियों से आम आदमियों के
0: आम
1: पास
0: आदमी
1: आ चुका है।
0: के आसपास आ चुका है। गूगल का जो एआई स्टूडियो है, आपका काम आसान कर रहा है, विद्यार्थियों का काम आसान कर रहा है। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। तो जो चर्चाएं हैं नकारात्मक वाली पहले होती हैं। तो एआई जब कदम रख रहा था, तो या अभी भी जिनके लिए एआई नया है, तो उनके बारे में, एआई के बारे में बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं। एआई जॉब खा जाएगा, एआई हमारा नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। जब कंप्यूटर भारत में आ रहा था तो इसी तरह की अफवाहें थीं, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारी ज़िंदगी आसान हुई। टिकट की लाइन अब नहीं लगती, हमारे मोबाइल पे ही टिकटिंग होती है। सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के ये जो दुनिया बदलाव देख रहे हैं, इस कंप्यूटर के बदौलत ही हुई है। तो एआई इसका एक नया वर्जन है और उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और खेती में भी ये बदलाव हमारे सामने होगा।
1: यानी कि एआई को हम अगर हम अपना साथी बना ले, उसे दुश्मन न समझे, तो चीजें आसान हो जाएगी।
0: बिल्कुल, ये जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी, बल्कि वो चीजें हमारे लिए सुलभ भी हो जाएगी। इससे गरीबों का भी फायदा होने वाला है। अब देखिए, खेती जो है वो किसान करते हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश की, जो अभी भी हमारे राज्य की निर्भरता खेती के ऊपर ही है। अब देखिए, खेती में इसका प्रयोग से कैसे किसान अपना खर्च बचा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि खेती में पहला कदम जो है एआई से हम कैसे करवा सकते हैं। तो फसल के चयन और बुआई में भी हम एआई की मदद ले सकते हैं। तो अक्सर किसान भाई पूछते हैं, जब हम अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान होते हैं, जब हम उनसे मिलते जुलते हैं, प्रशिक्षणों में मिलते हैं, तो कहते हैं क्या कि इस साल कौन सी फसल बोए, इस साल कौन सी फसल की बारी है, मंजर आएगा कि नहीं, बारिश की संभावना कितनी है, होगी नहीं, या ये इस बार ज़्यादा बारिश हो गई है तो क्या लगाएं।
1: हाँ,
0: तो ऐसा जो सिस्टम है ना, तो हम उसको अगर इसमें एआई से हम पूछें, तो एआई के पास अगर इस तरह के डाटा है, तो जो जवाब देगा वो बहुत ही सटीक होगा, बल्कि भ्रामक नहीं होगा। अब मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियां होती हैं वो भी सटीक होती है, कई बार वो भी उसमें कमी रह जाती है। लेकिन जो एआई की जो अपनी जो एआई भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि डेटा के आधार पर ही आपको चीज़ों से अवगत कराता है। तो ऐसे में एआई से हम पूछें कि इस बार कौन सी फसल बोएं, तो एआई पहले ये देखेगा कि इस बार मौसम जो है वो पिछले बार कैसा रहा था। पिछले 50 साल के जो मौसम का डेटा, एक पैटर्न होता है बारिश का, कि अगर इतना तापमान है तो बारिश की इतनी संभावना होगी, कोई अगर अलनीनो जैसे अभी चल रहा है तो उसका प्रभाव से कितना बारिश की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, एआई आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं, ये भी जल्द ही एआई आपको बता देगा। और हम लोग भी एआई आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं, वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके जरिए आपको मौसम की के जो मिजाज है उसके

0: अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि AI आपको फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है, बुआई के समय में। अब देखिए, जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है। तो इस चीज़ को AI बहुत तेज़ी से गणना करता है। जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज़्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो। तो ऐसे में जब ये बारिश हो रही थी उस समय, तो आप AI के जरिए अनुमान लगा करके इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ की क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सब के डेटा अगर आपके AI के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में AI आपको मदद करता है।
1: अच्छा, AI क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है और कैसे दे सकता है AI हमें मौसम की सटीक जानकारी?
0: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो AI आधारित मौसम प्रणाली है उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं और अगली बुआई का पहले से ये तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाप की आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे। तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है, AI से जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल का बुआई कर सकते हैं।
1: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में AI मदद कर सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, ये देखिए, कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद पानी जो श्रम है, इसके अतिरिक्त जो कृषि रसायन है ना, जिसमें कि कीटों को रोकथाम, इसके रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है। यानी कि जो एक किसान खेती करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस बार की खेती में हमें मात्र 20% मुनाफा हुआ है या 10% ही मुनाफा हुआ है या फिर कोई मुनाफा तो हुआ ही नहीं, बस जो हमने जितना लगाया था उतना ही हमें निकल पाया। तो इस चीज़ को करने के लिए खेती के जो खेती से आमदनी को दोगुनी और तीनगुनी करने में सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम कैसे हम इसका प्रबंधन कीटों और रोगों को सही तरीके से करें। तो जो AI है वो कीटों की पहचान करने में, उसकी रोकथाम करने में, सलाह देने में बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ई निरोग ऐप है, ये भी इस पे काम कर रहा है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने खेतों में जो भी पौधे आक्रांत हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप यानी कि कोई आपकी पारंपरिक खेती हो या फिर बागवानी हो, लत्तेदार सब्जियां हो, तो उनके फसलों के जो आक्रांत वाले भाग हैं उसको फोटो खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो AI सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है, उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती है। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और ट्रिपल IT के सहयोग से, और ये काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे

0: में खींची जानी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके। नहीं तो हो सकता है कि आपका अगर फोटो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो तो उसका जो रिप्लाई है, जो आपका प्रति उत्तर जो आएगा, उसमें थोड़ी सी आपकी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें गलती की संभावना कम रहती है जो AI जो डाटा दे रहा है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि आप सीधे अपने दुकानदार भाई से जाके पूछते थे कि इसमें ऐसा कीट लग गया है, फल ससमट लग गया है, इसमें मधुआ लग गया है, तो इसके लिए कोई दवा बता दीजिए। तो क्या करता था कि वो दवा आपके फायदे से ज़्यादा उनके फायदे में कौन सा हो सकता है, किस पे ज़्यादा उनका कमीशन है, ऐसी संभावना बनती थी और वो आपको दे देते थे। सबसे ज़्यादा जो किसान सलाह लेते हैं वो दुकानदार से ही लेते हैं जो दवा बेचने वाला है। तो ऐसे में आप पहले से अगर जागरूक रहेंगे तो पूछ सकते हैं कि नहीं भैया उसमें कीट तो ये है, तो हम फिर ये दवा क्यों डालें। तो ये एक है उसमें कि आपको कीटनाशक का जो नाम आ जाएगा, छिड़काव की विधियां आ जाएंगी, और एक सिस्टेमिक जो दवा है जो कि वैज्ञानिक ही बता पाते हैं कि कब कब किस मात्रा में दवा दें ताकि उसका सिर्फ निदान नहीं हो पाए बल्कि अगली बार भी जो है वो खेती में आपका कीट ना आ पाए, इसका भी निदान बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है AI अभी बखूबी करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पैसा कम लगा, फसल में ज़्यादा रसायन नहीं पड़े तो फसल भी जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा और सुरक्षित रहेगा, हमारे कंजप्शन के हिसाब से ज़्यादा सटीक रहेगा। तो इस तरह से हमारे लिए जो कीट और रोग की पहचान निदान में हमारा AI जो है सहायक बन रहा है।
1: बस किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो भी फोटो खींचते हैं वो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सही प्रकाश में सही एंगल से ली गई होनी चाहिए। हमने कीट और उसके प्रबंधन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या AI की मदद से स्मार्ट सिंचाई भी की जा सकती है?
0: हाँ बिल्कुल, देखिए पानी आज सबसे बेशकीमती संसाधन है, हम बेतरतीब तरीके से सिंचाई करें और एक हम सूक्ष्म तरीके से सिंचाई करें और ज़रूरत पड़ने पे ही सिंचाई करें, ये दोनों में बहुत अंतर है क्योंकि हम सिंचाई के लिए या तो बिजली खपत करते हैं या फिर हम डीजल इंजन चलाते हैं और सबसे जो ज़्यादा कि हम अपने धरती का दोहन करते हैं। तो इन सभी बातों में क्या होता है कि हमारा पैसा लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है अगर हम सही तरीके से सिंचाई न करें, लेकिन AI जो है यहाँ पर भी मदद कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं या कई किसान भाई अपना चुके हैं, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो बड़े स्तर पर जो खेती कर रहे हैं वो AI आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी लगा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि AI को पता होता है कि पानी कब देना है, कितना कितनी मात्रा में देनी है, पानी देनी भी है या फिर नहीं देनी है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर सेंसर लगा होता है, वो मॉइस्चर सेंसर ये बताते रहता है कि इस पौधे में मिट्टी में कितना अभी पानी की मात्रा है या फिर बिल्कुल पानी नहीं है। डेटा पहले से ही बता रहा होता है कि इस फसल में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो एक स्मार्ट तरीके से चल रही होती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और ये पानी जो है अपने उपयोग के हिसाब से ही कमांड जाता है और मोटर चालू हो जाता है और जो भी आपका स्प्रिंकलर है या ड्रिप है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी पानी वहाँ पर जाते रहती है। अगर किसी एरिया में लो लैंड है वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है, आपका कुछ एरिया जो है खेत का अपर लैंड है, तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ भी वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को चॉक कर देता है और जहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है तो वहीं पर पानी देता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि AI की मदद से पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, फसल की सेहत बेहतर रहती है और कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों का भी यहाँ पर सदुपयोग हो पाता है।
1: मतलब AI की मदद से किसान भाई बहन स्मार्ट सिंचाई कर सकते हैं, पानी की कितनी ज़रूरत है और कब पानी देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें AI की मदद से काफ़ी बेहतर तरीके से की जा सकती है और पानी को भी और फसल को भी बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और AI और कृषि मशीनें ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से किसान भाई बहनों की मदद कर सकता है?
0: हाँ देखिए, जो मशीनें हैं ना वो एक हार्डवेयर होती हैं। अब आप कल्पना करिए कि उस हार्डवेयर पे अपना जो कमांड कौन देता है, इंसान देता है। तो ये इंसानी बुद्धि जो है उसको चला रहा है। अब वह दिन भारत में दूर नहीं, चूंकि अब दूर पहले विदेशों में ऐसा हो रहा था, अब इस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कि एआई से चलने वाली मशीन

0: इन्हें आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको बीज कहाँ पे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी मशीनों में पहले से डेटा फिट रहेगी। आपको वह दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर भी AI आधारित आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि विदेशों में ऐसे ऐसे कार चल रहे हैं जिसमें ड्राइवर लेस है, जो सब कुछ जानता है, जबकि सड़क पर गाड़ी चला लेना बहुत मुश्किल होता है, और खेतों में थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से प्रयोग के स्तर पर की जा रही हैं कि ट्रैक्टर में AI इनेबल्ड लगाया जाए, ऐसे उसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं, इस तरह के रडार लगाए जा रहे हैं कि खेत को स्कैन करके और जो ट्रैक्टर है वो उसमें परिचालित होता है। अब उसमें आप चाहे तो जीरो टिलेज से की बुआई कर रहे हो तो क्या होता है कि जीरो टिलेज में बीज की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो AI कंट्रोल कर लेगा, और उसमें खाद और दवा की जो सटीक मात्रा है वो भी आपको ये चला जाएगा, और सारा डेटा जो है वो एक सर्वर पे जाएगा, और वो सर्वर को ये पता रहेगा कि खेत में कब बुआई हुई है, कब इसमें खाद पड़ना है, सेंसर के जरिए पता होगा कब इसमें सिंचाई होना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है, वो एक सीध में होती है, और AI जो है वो खेती को संपादित करता है। तो इससे मजदूरी का खर्च घटेगा आने के दिनों में, और काम तेज और सही तरीके से ही हो जाएगा।
1: बिल्कुल, मतलब AI मशीनों के साथ मिलकर और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। किसान भाई बहन की एक और समस्या होती है फसल को उगाने के बाद कि बाजार तक कैसे पहुंचे और उससे अच्छी आमदनी कैसे ले, तो क्या इसमें भी AI कुछ सहायता कर सकता है?
0: जी बिल्कुल, देखिए AI अब यह भी बताता है कि फसल की अनुमानित पैदावार कितनी हुई है, उस आधार पर उसका मंडी का भाव क्या है, कब बेचने से ज्यादा दाम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो बिचौलियों पर कम निर्भर रहेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस स्तर के जो कार्य हैं, जहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर कि एक बड़े स्तर की खेती हो रही है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंगेज हैं, वहाँ पे ये AI आधारित जो बाजार भाव है वो उसका सही आकलन हो रहा है। जैसे गेहूं की इस बार अभी खेती हो रही है, मौसम अनुकूल रहता है, बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है, बहुत शानदार फसलें होती हैं, तो क्या होगा कि ज़्यादा उत्पादन यानी कि बाजार में मांग कम। तो ऐसी स्थिति में AI को पता रहेगा कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है। तो किसान भाई अगर इसको ये देखेंगे अपने AI के माध्यम से कि दूर के मंडी में इतना भाव इसका गिर चुका है बड़ी मंडी में, और छोटे मंडी वाले में अभी भी जो बाजार भाव है वो ठीक ठाक मिल रहा है या हमें स्थानीय स्तर पर ज़्यादा मिल रहा है, तो वो AI के मदद से अपने अनाज का सही भाव पे, उचित भाव पे उसको बेच सकेंगे। AI यहाँ यह भी निर्देशित करेगा कि आपको अभी बाजार में होल्ड करने की ज़रूरत है, अभी आपका सामान स्टोर रखने की ज़रूरत है, चूँकि बाजार में मांग आने वाली है। AI चूँकि सारी चीज़ें जो है डेटा एनालिसिस के आधार पर करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के आधार पर करते हैं, तो इसका जो डिमांड है, इसका जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो डेटा आते रहती हैं उसके आधार पर आपको ये बताता है कि कब खरीदना है कब बेचना है। जैसे शेयर मार्केट में होता है, AI आधारित शेयर मार्केट की जो जानकारियां जो दी जाती है तो उसमें बहुत ही सटीक आधार पर होता है कि कब शेयर खरीदना है कब बेचना है। तो ठीक उसी तरह से जो कमोडिटी बाजार है, जो मंडी भाव है, वहाँ पर भी इसकी जानकारियाँ आपको सही तरीके से दी जाती रहेगी, जिससे कि आपको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जो फसल है उसका उचित दाम मिल पाएगा।
1: मतलब अब AI बाजारों तक किसान कब पहुँचे तो उनके लिए बेहतर होगा, और कब पैदावार अच्छी हुई है ये AI अनुमान लगा लेता है, इसके बाद उसका भाव क्या रहने वाला है ये भी अनुमानित हो जाता है, जिससे किसान भाई बहनों को अच्छी जो अच्छा जो मुनाफा है वो मिलता है। और इसके अलावा क्या AI से होने वाली कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं, या फिर उससे कुछ आने वाली मुश्किलें जो होती है उसका कुछ समाधान भी है क्या?
0: देखिए AI एक सुविधा, एक सुलभता तो है ही, इसमें कई चुनौतियां भी हैं। एआई के जो फायदे के अलावे जो चुनौतियां हैं, जैसे किसान भाई में अभी भी थोड़ी सी लिटरेसी की कमी है, उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो उनके साथ सहज नहीं है, तो एक चुनौती तो है। थोड़ा एक क्या है कि तकनीकी डर है, जैसे अभी हम एक इंसान के तौर पे इंसान से वार्तालाप करते हैं, अब एक निर्जीव चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना कि बताओ भाई इसमें कौन सा फसल लगाएं, इस फसल में क्या रोग लगा हुआ है, तो एक तकनीकी डर है, एक तकनीकी झिझक है, एक चुनौतियाँ हैं। अब इसका जो समाधान ये है कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जैसे हम अपने किसान भाइयों को दैनिक स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं कि कब क्या लगाएं, कितना दूरी पे लगाएं, किस मौसम में लगाएं, नई नई खेती, इस सब चीज़ों का प्रशिक्षण चलता है, तो अब उनको इस प्रशिक्षण में एआई को भी शामिल करने की ज़रूरत है। तो किसान भाई इस तरह के जो खेती हैं उसमें अगर एआई के बारे में और भी ज़्यादा जागरूक रहें, तो देखिए आप जरूरी नहीं कि आप हमारे वार्ता को, हमारी परिचर्चा को सुनकर कल से एआई का प्रयोग शुरू ही कर देंगे, लेकिन एक ये होता है कि आप एआई का दौर आने वाला है, आप कहीं पीछे ना छूट जाएं, आप बिल्कुल तैयार बैठे रहें कि आपके पास एआई का स्किल है, शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो आप खेती कर रहे हैं, कई किसान भाई ड्रोन दीदी जो है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो ड्रोन भी एआई के जरिए आपका वो एक प्रिसाइज वे में खेती का सलाह भी देता है, साथ ही वहाँ पर छिड़काव भी करता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप पहले से संलग्न हैं, तो आने वाला दिन आपका रहेगा। बाकी जो किसान भाई छूट जाएंगे उसमें आप एआई वाले किसान भाई रहेंगे। देखिए एआई से पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से पहले क्या हुआ, मशीन आया। कहते हैं कि जो 1757 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मशीनी युग आया, तो जहां पर 10 मजदूर काम करते थे एक मशीन काम करने लगा, बड़े बड़े फिर भीमकाय मशीन आने लगे, जहां 100 मजदूर काम करते थे एक ही मशीन काम करने लगा, यानी मशीनों ने मजदूरों का जो हक कहते हैं कि छीना था, तो क्या हुआ कि जो मजदूर का हक छीना गया वो मजदूर जो बुद्धिमान थे वो मशीन चलाना सीख लिया, यानी कि जिस मशीन से उनकी नौकरी जाने वाली थी, उनकी दिहाड़ी जाने वाली थी, उन्होंने उस मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया, तो क्या हुआ वो आगे चल के एक बड़े इंजीनियर बन गए, उद्योगपति बन गए। ऐसे ही कंप्यूटर का युग आया, तो जब कंप्यूटर का युग आया तो ऐसे में किसकी नौकरी छीनी, जहाँ पर कि जो क्लर्कल जॉब था, जहाँ पर 10 क्लर्क काम करते थे वहाँ पर एक कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, जो जिन्होंने कंप्यूटर को सीख लिया उनको तरक्की मिल गई, उस काम को तेज़ी से संपादित करने लगे, उनको अपने काम में ज़्यादा प्रगति मिली और ज़्यादा प्रमोशन मिला। जो नहीं सीखते गए, जो आलोचना करते रहे, वो पीछे छूटते चले गए। ऐसे ही एआई का युग है, आपको आलोचना करने से, आप में डर बना करके रखने से, भ्रम फैलाने से एआई के दौर पर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। एआई आपके जीवन का हिस्सा है, आगे रहेगा, ये आपको स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो खेती हो, वो कारोबार हो, शिक्षा जगत हो, मीडिया जगत हो, कोई क्रिएटिव जगत हो, हर जगह पर एआई ही एआई का बोलबाला रहेगा। अगर आप एआई से डरेंगे तो एआई वास्तव में आपका जो जॉब है उसका नुकसान पहुंचाएगा, एआई से आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर आप उस एआई से काम निकालना सीख जाएंगे तो आप उस एआई के मास्टर बन जाएंगे, एआई आपका फायदा पहुंचाने वाला बन जाएगा।
1: यानी कि एआई से नुकसान हो सकता है, वो नुकसान तभी हो सकता है जब एआई से आप अच्छी तरीके से परिचित ना हो, आप अचानक से एआई के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लगते हैं, एआई से बहुत ज़्यादा मदद लेने लगते हैं उसे बिना जाने समझे, तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो, लेकिन जब आप एआई का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं।
0: बिल्कुल, तो आज की खेती सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी और तकनीक से आगे बढ़ेगी। एआई जो है वो खेती का दुश्मन नहीं, किसान का नया साथी है। तो याद रखिए, जब तकनीक खेती से जुड़ती है तो खेती भविष्य बन जाती है। इसी संदेश के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
1: धन्यवाद ईश्वर चंद्र जी, आपने एआई से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से एआई की मदद से किसान भाई बहन बहुत तरक्की कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं, अच्छी पैदावार पा सकते हैं और अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों स्वागत है आपका आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आजकल जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर होटलों में, तो वहां पर हम सूप या सब्जियों में अक्सर देखते हैं बेबी कॉर्न का इस्तेमाल होता है और बहुत सारे उत्पाद बेबी कॉर्न के आजकल बाजार में उपलब्ध हैं और घर पर भी हम बेबी कॉर्न को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बेबी कॉर्न की मांग काफी ज्यादा है और जब मांग है तो यानी कि रोजगार का मौका भी है। तो बेबी कॉर्न की खेती किस प्रकार से की जा सकती है और क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, इन सभी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कुमारी रश्मि। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार।
1: आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट DKAC किशनगंज से। मैम आप सबसे पहले तो बताइए कि बेबी कॉर्न की खेती किस तरीके से की जा सकती है और बेबी कॉर्न की खेती का महत्व क्या है।
3: बेबी कॉर्न का काफ़ी महत्व है, आज हम इस पर काफ़ी डिस्कस करेंगे कि बेबी कॉर्न की खेती से कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं। और बेबी कॉर्न एक तरह की अपरिपक्व मक्के के भुट्टे की सब्जी है, इसे सब्जी सलाद सूप इन सभी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। इसके काफ़ी तरह के व्यंजन बनते हैं और इसे बड़े बड़े शहरों के होटलों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसका उपयोग होता है। बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट पौष्टिक तथा बिना कोलेस्ट्रॉल वाला खाद्य आहार है एवं इसमें फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है। इसमें खनिज की मात्रा एक अंडे में जो जितनी खनिज होती है उतनी मात्रा में होती है खनिज। बेबी कॉर्न के भुट्टे चूंकि पत्तों में लिपटे होने के कारण इसमें कीटनाशक रसायनों से भी काफ़ी ज़्यादा मुक्त होती है। यह स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है इसलिए इसे हम उपयोग में करते हैं। और इसकी जो सिल्क होती है, जो इसके रेशे होते हैं, इसको मोचा बोलते हैं, इसका चाय भी बनता है और ये हर्बल टी, और ये काफ़ी सुपाच्य होता है और इसको हम लोग हर तरीके से उपयोग में कर सकते हैं। और इसका छिलका जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बेबी कॉर्न का कोई भी भाग वेस्ट नहीं होता है। बेबी कॉर्न हम खाने में उपयोग में लाते हैं, बेबी कॉर्न के छिलके को आप चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं, बेबी कॉर्न के सिल्क का आप चाय बना सकते हैं और बेबी कॉर्न का जो बच जाता है प्लांट फील्ड में हार्वेस्टिंग के बाद उसको हम फॉडर में यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी लाभदायक है और इसकी फसल हम साल में 3 से 4 बार ले सकते हैं, तो सालों भर इसकी खेती होती है और लोग इसमें काम में लगे रह सकते हैं।
1: जी मैम, यानी कि जिस तरीके से आपने बताया कि बेबी कॉर्न की अगर खेती करते हैं तो उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई किसान भाई बहन कर सकते हैं।
3: जी जी।
1: और बेबी कॉर्न की फसल से कमाई कितनी आमदनी हो सकती है।
3: एक एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न की फसल 15,000 रुपये का खर्च आता है जबकि कमाई 1,00,000 रुपये तक हो सकती है और साल में 4 बार फसल लेकर किसान 4,00,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर आगे हम बात करें कि इसकी कहाँ कहाँ खेती होती है, कहाँ कहाँ इसको किसान भाई लगा रहे हैं, तो विदेशों की बात करें तो ये थाईलैंड चाइना इन सभी देशों में काफ़ी प्रचलित है। इसके साथ साथ ये विकासशील देश जैसे भारत और काफ़ी ताइवान है, इन सभी देशों में इसकी खेती हो रही है। और भारत में बेबी कॉर्न की खेती उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में हो रही है। बिहार के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इसकी खेती काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। आमतौर पर धान और गेहूँ कृषि प्रणाली में जब हम जाते हैं तो इसमें किसान काफ़ी कम कमा पाते हैं, 30,000 से 40,000 रुपए ही कमा पाते हैं, जबकि बेबी कॉर्न की खेती से मैंने आपको पहले ही बताया कि कितनी कमाई हो सकती है। और जब किसान भाई जैद की फसल के रूप में गर्मा मूंग लेते हैं जिसका आर्थिक लाभ किसान नहीं उठा पाते, गर्मा मूंग की खेती अगर किसान 15 मार्च के बाद करते हैं तो उन्हें कम लाभ मिलता है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में किसान बेबी कॉर्न लगाएंगे तो काफ़ी लाभप्रद होगा।
1: जी मैम, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि बेबी कॉर्न के भुट्टे का बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और अगर बेबी कॉर्न की अगर कोई खेती करना चाहे तो श्रेष्ठ प्रभेद या प्रजाति का चयन कैसे कर सकते हैं वो?
3: जी, बेबी कॉर्न का पूरा भुट्टा खाया जाता है, इसे पका के भी खा सकते हैं और इसे कच्चे सलाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और इसके विभिन्न व्यंजन जैसे चटनी, कटलेट, कोफ्ता, कड़ी, मंचूरियन, रायता, सलाद, सूप, अचार, बिरयानी, जैम, मुरब्बा, बर्फी, हलवा, खीर इत्यादि व्यंजन बनते हैं। इसके अलावा पौधे का उपयोग चारे में मैंने पहले ही बताया कि किया जाता है, और जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। जब हम जानवरों को चारा, जिस दिन चारे में बेबी कॉर्न खिलाते हैं, बेबी कॉर्न का छिलका, उसके तीसरे ही दिन 2 लीटर दूध ज़्यादा उत्पादन देती है, इसलिए ये काफ़ी लाभप्रद है चारे के रूप में। इसके सूखे पत्ते एवं भुट्टे हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं अगर ये सूख जाता है तो। और जहाँ तक प्रजाति की बात है, इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे अगात प्रजाति को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, और इसमें एक खास बात यह है कि जिन जिन प्रभेद में भुट्टे की संख्या ज़्यादा होती है उसको भी हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जैसे 3 से 4 भुट्टे एक पौधे में आए तो हम लोग उसको लेते हैं, प्रजाति के रूप में चयन करते हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट में जिसमें 6 से 7 भुट्टे भी एक पौधे में आते हैं। तो मैं विभिन्न प्रजातियों के नाम बताती हूँ, VL78, HM4 और VL42, HM129, गोल्डन बेबी, G5414, ये सभी बेबी कॉर्न की विभिन्न प्रजातियां हैं। इसके अलावा बेबी कॉर्न की उत्पादन तकनीक के बारे में मैं आगे जानकारी विस्तृत।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
3: इसमें जैसे कि मृदा की तैयारी कैसे करते हैं, तो जैसे सामान्य मक्के के लिए खेत की तैयारी करते हैं, फसल प्रबंधन करते हैं, उसी तरह से हम इसकी खेती के लिए जो अवधि हम अगात प्रजाति को चुनेंगे 60 से 65 दिनों के अंदर जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाए वैसी प्रजातियों का हम चयन करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जब हम बीज के लिए मक्का को लगाते हैं तो 110 से 120 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग होती है अगात प्रजाति की, जबकि बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग हम लोग 60 से 65 दिनों के अंदर ही कर लेते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि जो झंडे होते हैं मतलब नर फूल, उनको हम तोड़कर हटा देते हैं, इस प्रक्रिया को डिटैसलिंग बोलते हैं। भुट्टों में मोचा आने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो परागण की क्रिया होने के बाद बीज बन जाता है और बेबी कॉर्न की गुणवत्ता नहीं वैसी बरकरार रहती है। जब हम बुआई का सही तरीका ये है कि बेबी कॉर्न की खेती के लिए खेत की 3-4 जुताई करें एवं मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तो इस में 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर है, एवं बेबी कॉर्न की खेती से पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ ही बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, मेड़ों के बीच में बुआई करनी चाहिए और मेड़ों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में बनाना चाहिए ताकि जो हवा का जब दबाव पड़े तो बाधित ना हो।
1: किसान भाई बहनों को ये भी सलाह दी जाती है कि बीजोपचार जरूरी होता है, तो बेबी कॉर्न में बीजोपचार कैसे किया जा सकता है और ये रोगों से बचाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है?
3: बेबी कॉर्न में बीजोपचार के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होगा, एवं एहतियात के तौर पे जब हम बीजोपचार जब करेंगे फफूंद नाशकों या कीटनाशकों से उपचारित करने के लिए, तो इसमें बेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से हम बीज उपचार करते हैं इस अंगमारी से बचाने के लिए। के बाद थिरम है, थिरम 2 ग्राम प्रति केजी बीज दर से हम डाउनी मिल्ड्यू से बचाने के लिए उपचार करते हैं, एवं इसके बाद आप कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति केजी बीज दर से, ये भी अंगमारी की बीमारी से बचाने के लिए हम उपचारित करते हैं। इसकी बुआई के समय के बारे में बता दूं कि बेबी कॉर्न की खेती वैसे तो पूरे साल की जा सकती है, लेकिन हम खेत में नमी बरकरार रखनी चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न का उत्पादन कर सके, एवं सिंचित अवस्था में करते हैं खेती तो जनवरी से अक्टूबर तक इसको बोया जा सकता है, एवं मार्च के दूसरे सप्ताह में अगर बुआई के बाद अप्रैल के तीसरे सप्ताह से अधिक अगर आपको सबसे अधिक उपज प्राप्त करनी है तो इस कंडीशन में आपको बुआई करना चाहिए। बेबी कॉर्न की खेती में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में अगर हम बताएं तो बेबी कॉर्न की खेती में भूमि की तैयारी के समय 15 टन कंपोस्ट एवं गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। बेसल ड्रेसिंग उर्वरकों के रूप में NPK का जो रेशियो है 75-60-20 है प्रति हेक्टेयर की दर से NPK की बुआई के 3 सप्ताह बाद टॉप ड्रेसिंग हम करेंगे, ये इसमें 80 kg नाइट्रोजन एवं 20 kg पोटास देना चाहिए। सिंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो बेबी कॉर्न की फसल जल जमाव एवं जल ठहराव को सहन नहीं कर पाती है, इसलिए खेत में आंतरिक जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पर पौधे में जब फल आने की अवस्था में बेहतर उपज के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है और नमी हमेशा हमें बरकरार रखना है, लेकिन पानी जल जमाव नहीं होना चाहिए। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। और खरपतवार नियंत्रण को जब हम देखते हैं तो बेबी कॉर्न की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण औसतन 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से सीमाजीन या एट्राजीन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं और इसमें 500 से 650 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पहली निराई बुआई के 2 सप्ताह बाद करनी चाहिए। मिट्टी चढ़ाना या टॉप ड्रेसिंग बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद करनी चाहिए। बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद नर फूलों को तोड़ना चाहिए। डिटैचिंग की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, तभी गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न हम उत्पादन कर सकते हैं।
1: तो मैम, अभी जैसे कि आपने बताया कि बीजोपचार करने के वक्त बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है, तो क्या सारे रोगों से बचा जा सकता है या बाद में रोग लग गए तो किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जा सकता है?
3: बाद में रोग लगने की अवस्था में जैसे इसमें तना छेदक का काफी प्रकोप होता है और बेबी कॉर्न की फसल में शूट फ्लाई, पिंक बोरर, तना छेदक प्रमुख रूप से लगते हैं, तो इसमें इस कंडीशन में हम कार्बेरिल 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। वैसे तो इसमें कीट की समस्या हार्वेस्टिंग पहले ही हो जाती है, चूंकि दाना बनने की जरूरत नहीं होती, पहले ही हार्वेस्ट हो जाती है, तो इसमें कम से कम इंसेक्टिसाइड का यूज होता है और बेबी कॉर्न जो छिलके के अंदर होता है उसमें इसका जरा भी रसायनों का अवशेष नहीं होता
1: जी। और मैम, बेबी कॉर्न से तो लाभ किसानों को बहुत मिलता ही है, लेकिन और अधिक लाभ के लिए कौन से इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, कैसे अंतर्वर्ती फसल लगाए जा सकते हैं?
3: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। किसान भाई बेबी कॉर्न की फसल तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ जो इंटरक्रॉपिंग जिन फसलों को ले सकते हैं वे हैं आलू, मटर, राजमा, चुकंदर, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, फूलगोभी, ब्रोकली, मूली, गाजर, इन सभी को ले सकते हैं। इसके अलावा खरीफ के मौसम में लोबिया, उड़द आदि उगाई जा सकती है और इसके साथ साथ फूलों को भी लगा सकते हैं, ग्लैडियोलस लगा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं, इन सभी का हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं।
1: मैम, आप बार बार कह रही हैं कि बेबी कॉर्न की जब हम खेती करते हैं तो उसे बहुत जल्दी ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो कैसे कटाई की जाती है या तुड़ाई कैसे की जाती है?
3: बेबी कॉर्न को आमतौर पर जब सिल्किंग स्टेज होता है, सिल्क निकलने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर ली जाती है और एक पौधे से 3 से 4 बार हम तुड़ाई कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि अगात प्रजाति के प्रभेद लगाए जाते हैं तो 50 से 60 दिनों के अंदर ही ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। इसकी तुड़ाई के समय भुट्टे का आकार हमें ये ध्यान देना होता है कि भुट्टे का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा हो, इसकी मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा मोटा भुट्टा एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाता है और इसका वजन 7 से 8 ग्राम होना चाहिए। भुट्टे को 1 से 3 सेंटीमीटर सिल्क आने पर ही तोड़ लेना चाहिए। इसको तोड़ते समय इसके ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर कम हो जाने की वजह से ये अच्छा नहीं होता है और जल्दी ही खराब हो जाता है। खरीफ के मौसम में प्रतिदिन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं एवं रबी के मौसम में 1 दिन के अंतराल पर हार्वेस्टिंग करते हैं।
1: कटाई के बाद किस तरीके से बेबी कॉर्न का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि नमी का भी ध्यान रखना होता है, तो क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए?
3: तुड़ाई के बाद बेबी कॉर्न की ताजगी लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है। तुड़ाई के बाद भुट्टों को छायादार जगह में रखकर उसके छिलके को हटाना चाहिए। इसका भंडारण रेफ्रिजरेटर या किसी ठंडी जगह में किसी टोकरी या प्लास्टिक में करना चाहिए। इसकी हम डिब्बाबंदी भी करते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो रेफ्रिजरेटेड वैन में ट्रांसपोर्ट करें और जहाँ हम जिस मंडी में पहुँचाएँ या जहाँ भी किसी हम मॉल में पहुंचाएं वहां पे भी रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में होना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ये मैंने बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है इसका उत्पादन और इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसका एक्सपोर्ट काफ़ी होता है
1: जी।
3: इंग्लैंड, अमेरिका, इन सभी देशों में भी भारत से एक्सपोर्ट होता है और इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ मक्के की कीमत 20 रुपये प्रति केजी किसान भाई पाते हैं, वहीं इसकी कीमत 250 से 300 रुपये प्रति केजी मिलता है। तो और इसकी खेती सालों भर हो सकती है, तो 3 से 4 बार लगा सकते हैं सालों भर। इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ क्रॉप के साथ साथ फॉडर भी मिल जाता है, तो कहीं भी नुकसान नहीं है किसी भी तरह से। सो ये काफ़ी रेम्यूनरेटिव क्रॉप है और रोजगार सृजन के लायक है। हमारे जो भी युवा किसान भाई हैं इसके उत्पादन तकनीक को अपनाकर इस पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है बीयूयू सवर की तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ मेज की तरफ से बेबीकॉर्न की खेती के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चल रहा है एवं ट्रेनिंग दी जा रही है, और भारत सरकार बिहार सरकार आत्मा की तरफ से बीज एवं अनुदान राशि मुहैया कराई जा रही है। तो काफ़ी लाभान्वित होकर किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत बहुत मुनाफा कमा सकते हैं।
1: यानी कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है, तो बेबी कॉर्न की खेती करनी चाहिए और ये काफ़ी लाभदायक खेती है, बहुत मुनाफा कमा सकते हैं और बेबी कॉर्न के हर एक हिस्से से किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैम आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि

0: हाय, मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से। आज मैं आया हुआ हूँ मंसरपुर के एक ग्राम में, और आज हमारे साथ हैं छोटू भैया, जो कि गांव में बहुत सारे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ वगैरह देती है। तो आज हम इनसे जानकारियाँ लेंगे कि पोषण के बारे में, कुछ पोषण क्या होती है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा। हाँ, तो छोटू भैया आप ये बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
1: पोषण हम उसको कहते हैं जो कि हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है
0: जी।
1: वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, आयरन इत्यादि हमें प्राप्त होती है, जो कि हमारे कोशिकाओं को निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम पोषण कहते हैं
0: जी। जी भैया, तो पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं?
1: पोषण को हमें संतुलित आहार से ही प्रदान होता है, जो जीवन में अपनाना जरूरी होता है। संतुलित आहार हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है, और जैसे अंडा, मांस, मछली, चावल, दही, छाछ आदि से हमें प्राप्त होती है।
0: तो मान लिया जाए, जैसे कि पोषण के लिए बहुत सारे व्यक्ति दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति दवाई का प्रयोग करता है, तो वो तो एक आपातकालीन स्थिति में आप दवाई से पोषण को का उपयोग कर लेते हैं, बट अगर व्यक्ति चाहे कि अपने पोषण को खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज कर सके, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज भी अपनी क्यारी अपनी थाली एक कार्यक्रम चलाती है, तो क्या आपके अनुसार कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पोषण को लेने के लिए घरेलू उपचार या घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं?
1: उनके लिए हमें घरेलू उपचार में जैसे पालक, धनिया, सेब, नारंगी, हरा सब्जी, पत्तीदार सब्जी, दाल आदि से हमें प्राप्त करनी चाहिए, ये घरेलू उपचार में
0: जी। अगर आदमी सही से पोषण आहार ना ले तो क्या हो सकता है व्यक्तियों के साथ?
1: उसके लिए पोषण आहार अगर नहीं लेगा तो आदमी संतुलन बिगड़ सकता है
0: जी,
1: और उस संतुलन को फिलहाल बनाने के लिए कभी हमें दवाई के रूप में दवाई भी लेनी चाहिए ज़रूरत से, वो डॉक्टर के सलाह के अनुसार, और अगर ऐसे नॉर्मल अगर कुछ है तो उस हिसाब से हमें साग सब्जी आदि से प्राप्त कर लेना चाहिए।
0: तो भैया, यहाँ पे आपको ये भी पता है कि पोषण के रूप में जैसे कि आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, तो ये जो किया जा सकता है तो पोषण प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस आयरन को लेने के लिए या प्रोटीन को लेने के लिए या कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करने के लिए हमारे आसपास से, हमारे खाद्य पदार्थ से कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
1: उसके लिए गेहूं को भिगोकर हमें उसे अंकुरित कर खाना चाहिए, चना को अंकुरित कर के खाना चाहिए, मूंग दाल को अंकुरित कर के खाना चाहिए इत्यादि, ये सब है। जैसे इसमें जैसे कि चावल को हम लोग भिगो करके और उनका कुछ सामग्री बना करके हमें प्राप्त करनी चाहिए, दाल को भिगो करके उसका उपयोग हमें करनी चाहिए, इस सबसे ज़्यादा संतुलित आहार बहुत प्राप्त मात्रा में प्राप्त होती है।
0: तो भैया, लास्ट क्वेश्चन ये है कि महिलाओं में जो है ना, पोषण को लेकर बहुत पाया गया, बहुत केस पाया गया है कि पोषण उनको कम मिल पाता है, उनको आयरन की कमी ज़्यादा मात्रा में होती है, तो महिलाओं के लिए आपको पोषण के बारे में क्या कहना?
1: महिलाओं में पोषण इसलिए ज़्यादातर पाई जाती है, मानसिक धर्म इत्यादि जो होती है उससे जो है उनका ज़्यादातर उसमें जो है ये कमियां पाई जाती है, उसके लिए उसे हमेशा हरी साग सब्जी इत्यादि को संतुलित मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए। उसके बाद उसे समय समय पर नींबू का घोल लेनी चाहिए और पालक मेथी धनिया की चटनी हरी मिर्च इत्यादि को उसमें ज़रूरत सही समय पे, जैसे लहसुन का उपयोग करना, ये सब सारी चीज़ जो है पोषण बहुत भारी मात्रा में प्राप्त होती है उसे, इसलिए औरत को ये सब सारी चीज़ ज़रूर खानी चाहिए। यह अपना घरेलू उपचार है।
0: तो आज छोटू भैया ने 90.8 FM ग्रीन को पोषण से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी, उनमें से बहुत सी जानकारियाँ फायदेमंद है, सभी व्यक्तियों को ग्रहण करनी चाहिए। और हमारे यहाँ 90.8 FM ग्रीन पर सीधी संवाद हम गांव में भी जाकर कर रहे हैं, और ये सीधी संवाद मंसरपुर ग्राम के छोटू भैया से था। तो धन्यवाद छोटू भैया, आपने अपना कीमती टाइम 90.8 FM ग्रीन को दिया, इसके लिए FM ग्रीन आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है।

0: ಉನ್ನತ್ ಕೃಷಿ. ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं एफएम ग्रीन पर. आपकी होस्ट दोस्त आरजे अनु को स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि कार्यक्रम में. एक खास विषय एक बार फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम अपने किसान भाइयों के लिए लेकर आ गए हैं. जी हाँ, हम आज बात करेंगे एरोबिक धान की खेती के बारे में. मौसम अनुकूल एरोबिक धान की खेती आप कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर. तो इस विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर आनंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आपको पूरी जानकारी मिलेगी इनसे. तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम स्वागत करते हैं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में. तो आइए सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि एरोबिक धान की खेती ये तकनीक क्या है और परंपरागत धान की खेती से ये कैसे अलग है.
1: धन्यवाद. नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे एरोबिक धान, मौसम अनुकूल एरोबिक धान की खेती के बारे में. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धान बिहार में पैदा की जाने वाली खरीफ मौसम की प्रमुख फसल है. हमारे यहाँ परंपरागत रूप से धान की अच्छी फसल लेने वाले किसानों को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. बिहार में धान की खेती बड़े पैमाने पर 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है. एक शोध रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में जितनी चावल की खपत हुई थी उसकी तुलना में 2035 में 25% ज़्यादा चावल की जरूरत होगी, जो बदलते हुए पर्यावरणीय परिवेश में एक बहुत बड़ी चुनौती है. और इस चुनौती को दूर करने के लिए हमारे किसान बंधुओं का एक बहुत बड़ा अहम रोल होगा. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एरोबिक धान की खेती, पानी उपलब्ध होने की परिस्थिति में धान उगाने की एक आधुनिक तकनीक है. यह कम पानी में भी अच्छी हम उपज ले सकेंगे. अनुसंधान परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि एरोबिक धान की जल उत्पादकता जो प्रचलित परंपरागत विधि से हम लोग जो धान उगाते हैं उसकी तुलना में अधिक होती है. एरोबिक विधि से धान उगाने के लिए अधिक पैदावार देने वाली एरोबिक धान की संस्तुत अधिक उपजशील प्रजाति को सीड ड्रिल या देसी हल से सीधे खेत से बुआई करते हैं तथा गेहूँ के भांति धान को उगाया जाता है. साथ ही आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी करते रहते हैं. एरोबिक विधि से धान की खेती से बुआई के समय जो पानी बहुत कम लगता है, जैसे 67% कम पानी लगती है, और जो मजदूर जो धान की खेती में बहुत ज़्यादा लगती है उससे 90% कम मजदूर इसमें लगते हैं, और 30% तेल की बचत होती है तथा 60-70% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है, जबकि उत्पादन लगभग समान धान जैसा होता है.
0: तो इस तरीके से ये अलग है. और डॉक्टर साहब, धान, इस एरोबिक धान की खेती से क्या क्या लाभ मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को, वो भी बता दें.
1: जैसे प्रारंभिक प्रचलित जो हमारे धान किसान भाई खेती करते हैं वह पानी भरी एवं वायु संचारित दशा में धान की खेती करते हैं. उसके सापेक्ष में जो वायु संचारित एरोबिक धान की खेती से बहुत सारे लाभ हैं. इस पद्धति से धान की खेती में हम लोग सीधी बुआई करते हैं तथा खेत में नमी बनाई रखी जाती है. जैसा लेकिन जैसे हम लोग जो परंपरागत हम लोग खेती करते हैं उसमें 5-6 सेंटीमीटर पानी रखी जाती है, इसमें 5-6 सेंटीमीटर पानी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है. इसमें एक नमी केवल खेत में नमी बनाई रखी जाती है और खेत में लगातार पानी भरने रखने की आवश्यकता नहीं होती है. जैसा कि परंपरागत में नर्सरी लगानी पड़ती है तथा रोपाई की आवश्यकता होती है, एरोबिक धान में ऐसा नहीं होता क्योंकि हम लोग इसमें सीधी बुआई करते हैं. इसमें हम लोग सीड ड्रिल के माध्यम से बीज की बुआई करते हैं जिसके कारण बीज की कम मात्रा लगती है और जो लेबर जो परंपरागत में ज़्यादा लगता है इसमें बहुत 50% से ज़्यादा इसमें हम लोग को लेबर नहीं लगता है. और सिंचाई जल 60% सिंचाई जल की बचत होती है तथा पौधा उर्वरक उपयोग क्षमता में वृद्धि करता है और कीट एवं बीमारियों के प्रकोप में भी कमी आती है. एरोबिक धान लगाने से पर्यावरण में हानि पहुंचाने वाले मीथेन गैस के उत्सर्जन में 80-85% कमी आती है. इसमें मजबूत जड़ तंत्र विकास होने के कारण फसल में गिरावट नहीं होती है और ये सबसे बड़ी खूबी है कि ये भूमि की भौतिक दशा में भी सुधार लाता है.
0: तो ये तो बातें हो गई हैं हमारे किसान भाइयों को क्या क्या लाभ मिल सकता है अगर एरोबिक धान की खेती कर रहे हैं. तो अब बात करते हैं स्वास्थ्य क्रियाओं के बारे में और साथ ही प्रभेद के बारे में. तो डॉक्टर साहब, एरोबिक धान की खेती में प्रयुक्त होने वाले प्रभेद और स्वास्थ्य क्रियाओं के बारे में बताएं.
1: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के संयुक्त रूप से एरोबिक धान की खेती तकनीक रूप से विकसित की गई है और एरोबिक धान की खेती ऐसे किस्म करीब करीब उतनी ही उपज देती है जितनी समान तौर से ज़्यादातर पैदावार देने वाली धान की किस्में देती हैं। तकनीकी तौर पर यह एरोबिक राइक कल्टीवेशन कहलाता है। इसमें स्थिर पानी की जरूरत नहीं होती है। यह एपो नाम के ब्राज़ील में एरोबिक राइस की दुनिया में सबसे अच्छी एरोबिक राइस माना जाता है। एपो को भारतीय धान के साथ क्रॉस ब्रीड करवाकर ऐसी तैयार किस्में की गई है जो भारतीय कृषि की परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। इन किस्मों में 40% कम प्रतिशत पानी का इस्तेमाल होता है तथा इसका उपज 4.5 टन प्रति हेक्टेयर को उपज देती है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ जो भी किस्में एरोबिक धान के लिए अनुशंसित है उसमें हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सबौर अर्जल है जिसकी परिपक्वता अवधि 120 से 125 दिनों की है। इसकी औसत उपज 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और दूसरी जो प्रभेद अनुशंसित है वह राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक द्वारा विकसित की गई है। वह है सीआर धान 201 और सीआर धान 202। यह 110 से 15 दिनों की है और इसकी भी औसत उपज 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। एरोबिक धान की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसके जो सीडलिंग होते हैं वो पूर्ण अंकुरण देते हैं और इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। और जो एरोबिक धान में सबसे बड़ा दिक्कत किसान भाई को आती है वो घास के में और ये घास के प्रति प्रतिस्पर्धी होती है और इसका तीव्र बायोमास का विकास होता है जिसके कारण पैदावार अच्छी मिलती है। सबसे पहले हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि एरोबिक धान की खेती में कितनी बीज की मात्रा लगती है और उसको हम लोग कैसे बीजोपचार कर सकते हैं। बुआई से पहले स्वस्थ बीजों को छटनी कर लेनी चाहिए। इसके लिए 10% नमक के घोल का प्रयोग करना चाहिए। नमक का घोल बनाने के लिए 2 किलोग्राम समान नमक 20 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल में 25 किलोग्राम बीज डालकर अच्छी तरह लाएँ। इससे स्वस्थ भारी बीज नीचे बढ़ जाएगा और जो हल्के बीज होंगे वो ऊपर तैरने लगेंगे। इस तरह साफ और स्वच्छ आटा हुआ बीज 20 किलोग्राम बीज वाले मशीन में 25 किलोग्राम मोटे दाने वाले पर्याप्त होते हैं। बीज उपचार के लिए 10 ग्राम बेबेस्टीन और 2.5 ग्राम जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 1 ग्राम एग्रीमाइसिन 10 लीटर पानी में घोल लें। अब 20 किलोग्राम जो छाटे हुए बीज या 25 मोटे दाने वाले 25 किलोग्राम यदि बीज हो उसको अच्छी तरह उसमें मिला लें और उसको अंकुरित होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद हम लोग दूसरे सबसे बड़े बात करेंगे पोषक तत्व प्रबंधन। इस कैसे करते हैं हम लोग एरोबिक धान की खेती में तो अधिक उपज के लिए जैसे कि हम लोग समान जो परंपरागत धान की खेती के लिए 120 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास मात्रा की संस्तुति गई है। उसी तरह इसमें भी एरोबिक धान में भी 120 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर संस्तुति की गई है। उसके बाद 1/3 जो नेत्रजन फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय डालना अति लाभकारी होता है और नेत्रजन की शेष 2/3 मात्रा को बराबर बराबर भाग में बांटकर फूल निकलते समय तथा पुष्पावस्था पर दे देनी चाहिए।
0: जी, तो इसके साथ ही हम और आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कीट व्याधियों के बारे में कि कौन कौन से कीट लग सकते हैं इस एरोबिक धान में और इनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं।
1: कीट प्रबंधन में हमारे किसान भाई जो मुख्यतः कीट लगते हैं वो लगते हैं पौध के भूरे काले हम सफ़ेद रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं। उनके शिशु और वयस्क दोनों ही पौधों के तने और रस को चूसकर फसल को हानि पहुँचाते हैं। फसल पर इस कीट की निगरानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फुदके तने पर रहते हैं और पत्ती पर नहीं दिखते हैं। इसकी निगरानी के लिए प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप का प्रयोग किया सकता है। आवश्यकता अनुसार इमिडाक्लोपीड दवा जो होती है वो 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोलकर पानी का छिड़काव करें और छिड़काव करते समय यह ध्यान रखना है कि नोजल पौधे के तनों पर रखें। और दूसरे सबसे प्रमुख कीट है वह तना छेदक कीट है और तना छेदक की केवल सुइयां ही फसल को हानि पहुंचाती है तथा व्यस्क पतंगे फूलों को शहद आदि को निर्माण करते हैं। बाली आने से पहले इसके हानि लक्षणों को डेड हर्ट तथा बाली आने के बाद सफ़ेद बाली के रूप में जाना जाता है। बुआई के 30 से 35 दिन बाद ट्राइकोकार्ड जो आता है उसमें 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर उसके लार्वा रहते हैं उसको हम लोग ट्राइकोकार्ड का उपयोग कर सकते हैं या रासायनिक कीटनाशक में दानेदार कीटनाशक कार्बोफ्यूरॉन 3G या कटाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G का या फिप्रोनिल 0.3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा कीट गंधी बग है, यह कीट खेत में दुर्गंध फैलाता है, अतः इसे गंधी कीट कहा जाता है। इसके शिशु और व्यस्क दोनों ही दुधिया अवस्था में दानों के रस को चूसकर खाली कर देते हैं। ऐसे दानों पर काला निशान बन जाता है। आवश्यकतानुसार किनॉल फॉस 25 cc 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। रोग प्रबंधन में ब्लास्ट एक प्रमुख रोग है। यह रोग फफूंद से फैलता है। फफूंद सभी भाग इससे प्रभावित हो सकते हैं। वृद्धि अवस्था में यह रोग पत्तियों पर भूरे के रंग के रूप में दिखाई देता है। ट्राइसाइक्लोजोल जो दवा आती है उससे हम लोग को बीज उपचारित कर सकते हैं। उसके बाद यदि पत्तियां पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई दें तो कार्बेंडाजिम 1000 या ट्राइसाइक्लोजोल 500 ग्राम को 500 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बीमारी पत्ती का जीवाणु झुलसा रोग है। यह बीमारी जीवाणुओं के द्वारा फैलाई जाती है। पौधों की छोटी अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक यह बीमारी क्योंकि कमी हो सकती है। इस रोग में पत्तियों के किनारे ऊपरी भाग में शुरू होकर मध्य भाग तक सूखने लगती है। इसमें सबसे पहला बीजोपचार सबसे अच्छा उपाय है। इसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2.5 ग्राम प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के घोल में बीज को 12 घंटे तक डुबोकर बीजोपचार करें। और जिस खेत में बीमारी लगी हो उसका पानी दूसरे खेत में न जाने दें। इससे बीमारी फैलने की आशंका है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ खेत में पानी नहीं रहने देना चाहिए। खेत में बीमारी को फैलने से रोकने के लिए खेत में समुचित जल निकास की व्यवस्था की जाए। बीमारी के नियंत्रण के लिए जो 74 ग्राम एग्रोमाइसिन और 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस प्रकार हम लोग कटाई और मराई जैसे हम लोग धान की खेती करते हैं तो बालियां निकलने में लगभग 1 माह बाद सभी किस्में पक जाती हैं। कटाई के बाद 80% बालियां 80% दाने भर जाएं, उसके बाद 20% उसमें नमी हो तो उस समय उपयुक्त होता है। मराई और सफाई के बाद धान को अच्छी तरह सुखा के भंडारण करना चाहिए। भंडारण के पूर्व दानों में 10% नमी तक सुखा देते हैं। उपज समस्त उपयुक्त संस्क्रियाओं को करके एरोबिक धान को अधिक उपजाऊ संस्तुत किस्मों को अपनाने से प्रति हेक्टेयर औसत उपज 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई पा सकते हैं।
0: जी, तो ये कुछ बातें थी यहाँ पर जो बताई गई हैं आपको एरोबिक धान की खेती के बारे में। और हमारे बीच थे डॉक्टर आनंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। 90.8 MHz पर और भी बातें होंगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार, ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम एक खास विषय लेकर आए हैं हमारे सभी किसान भाइयों के लिए और साथ ही हमारे अन्य श्रोतागण के लिए। तो श्रोताओं, आज हम बता दीजिए, हमारा जो विषय है बहुत ही खास है। आज हम बोरो धान की उन्नत खेती के बारे में जानेंगे और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर आनंद कुमार। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि बोरो धान क्या होता है और साथ ही खरीफ धान से ये कैसे अलग होता है।
1: किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम बताएंगे कि बोरो धान क्या होता है। बोरो धान एक विशेष प्रकार का धान का मौसम है जिसमें बुआई जारा से पहले अक्टूबर नवम्बर, जैसे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, रोपनी जारा के बाद जनवरी फरवरी और कटनी अप्रैल मई महीने में होती है। और बोरो धान की उन्नत खेती ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां जल जमाव के कारण गेहूं या मक्का जैसी फसलों की खेती नहीं की जा सकती है। सबसे पहले इसकी खेती नदियों के किनारे होती थी जिसमें लंबी ऊँचाई एवं कम उपज देने वाली प्रजातियों का व्यवहार होता था। अब अधिक उपजशील धान के बौने प्रभेद होने के आगमन के कारण विभिन्न क्षेत्रों में इसकी खेती का प्रचलन बढ़ा है और बोरो धान की खेती बड़े पैमाने पर शुरू हुई है। अब इसकी खेती निचली भाग में ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के जमीन जहाँ सिंचाई की सुविधा होने लगी है। बिहार राज्य में बोरो धान की खेती सबसे पहले कोसी प्रमंडल अंतर्गत होती थी, लेकिन अब इसका प्रसार पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, किशनगंज आदि जिलों में भी हो रही है।
0: जी डॉक्टर साहब, बोरो धान की अनुशंसित किस्मों को हम जानना चाहेंगे, कौन कौन सी अनुशंसित किस्म है?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के गहन अनुसंधान के बाद शीत अवरोधी बोरो धान के लिए प्रभेद अनुशंसित किए गए हैं। बोरो प्रजातियों में अधिक उत्पादन क्षमता उपलब्ध है, साथ ही प्रचुर नमी उपलब्धता, पूरे जीवन काल में तीव्र सूर्य के किरणें की प्रचुरता, रोग कीट एवं मौसमी खरपतवार की न्यून संभावनाओं के कारण समान धान की तुलना में लगभग 30-50% तक अधिक बोरो धान की खेती से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बोरो धान में बोरो संस्तुत अधिक उपसील प्रजातियों में गौतम, ऋचार्या, धनलक्ष्मी, प्रभात, सरोज, IR64 है। जैसे हम लोग जानते हैं कि गौतम एक अनुशंसित बोरो के लिए महत्वपूर्ण प्रभेद है, तो गौतम बोरो मौसम के लिए यह एक बौनी उपसील किस्म है। इसमें कल्लों की संख्या अधिक

0: दाने लंबे तथा पतले होते हैं। इसकी उपज लगभग 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म ठंड प्रतिरोधी है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें होंगी अनुशंसित किस्मों की, अब इनके नर्सरी तैयार करने की विधि भी हम जानना चाहेंगे। कैसे नर्सरी तैयार करें बोरो धान के लिए?
0: सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि बीज स्थली का चयन या नर्सरी तैयार करने के लिए हमें जहां पानी का टिकाव होता हो और मिट्टी भारी हो, उसके लिए हम लोग जमीन का चयन करते हैं। और खेत में एक हेक्टेयर के दसवें भाग के लिए 10 से 15 क्विंटल गोबर की खाद, 2.5 किलो यूरिया, 6 किलो SSP, 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग पौध को के खेत को तैयार करते समय डालकर कदवा कर दें। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज शोधन के लिए क्रामेंडाजिम का प्रयोग करना चाहिए। 80 से 100 ग्राम अंकुरित बीज की बुआई प्रति वर्ग मीटर में करनी चाहिए। बीज अंकुरण के लिए बीज को 24 घंटे पानी में भिगोने के पश्चात 24 घंटे छाया में भींगे बोरों से ढकना आवश्यक है। अंकुरित बीज को समान रूप से तैयार बीज स्थली में छींटे या टोप दें। बीज स्थली समतल होनी चाहिए। पौधों को पाला से बचाने के लिए बीज स्थली में हमेशा पानी रखना चाहिए और रात में पॉलीथीन से ढक देना चाहिए। बीज को पहले सतह पर पानी में डुबोकर रखने के बाद नमी वाले बोरे में एक दिन रखें। बीज के अंकुरित हो जाने के बाद उसे तैयार बीज स्थली में डालना चाहिए। बीजों को उपचारित 2 ग्राम बेभेस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से करके बोना ही श्रेयस्कर होता है। किसान भाई बीजों की बुआई के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें ताकि नर्सरी में नमी पर्याप्त बनी रहे।
1: जी तो डॉक्टर साहब, ये बोरो धान की नर्सरी तैयार करने की विधि आपने बताई, लेकिन अब उन्नत खेती के लिए बहुत सारी जो हैं वो शस्य क्रियाएँ होती हैं, तो उन शस्य क्रियाओं के बारे में बताएं, किसान भाइयों को कौन कौन सी शस्य क्रियाएँ अपनानी चाहिए जिससे कि वो उन्नत खेती कर पाएँ बोरो धान की।
0: बोरों के लिए बुआई का समय, बीज गिराने का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होता है और बीज दर हम लोग को एक हेक्टेयर के लिए 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। रोपनी का समय, रोपनी मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के बाद 15 फरवरी तक की जा सकती है। एक स्थान पर एक या एक से दो बिचड़े रोपने चाहिए। पौधों से पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। एक वर्ग मीटर में 35 से 40 मीटर झूर रखें। रोपनी के बाद अगर कहीं पौधे मर जाएँ तो वहीं पुनः रोपनी कर देने चाहिए। कल्लों की संख्या वृद्धि के लिए छिछली रोपनी आवश्यक है। पानी में हल्की परत रखना चाहिए ताकि घास पात न जम सके। उर्वरक का व्यवहार करते समय किसान भाई ये अनुशंसित जो उर्वरक का डोज है उसके हिसाब से करना चाहिए। जैसे 100 किलो नेत्रजन, 40 किलो सफूर, 250 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है उसको करना चाहिए। कदवा करते समय आधा नेत्रजन और सफूर एवं पोटास की पूरी मात्रा डाल दें। बचे हुए नेत्रजन का आधा रोपनी के 25-30 दिन बाद उपरिवेशन के रूप में और आधा भाग गाभा जब लगने लगे तो उसके पहले डाल दें। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार में जैसे हम लोग जानते हैं शस्य क्रियाओं द्वारा खरपतवार नियंत्रण हेतु गर्मी में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें और फसल चक्र अपनाएं, चाहे हरी खाद का प्रयोग चाहे पटलर आदि का प्रयोग करें। रासायनिक विधि के अंतर्गत विभिन्न खरपतवार नाशक फसल को रोपाई के पश्चात संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसे नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रेटीला क्लोर, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं प्रेटीला क्लोर 50% 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 5-7 किलोग्राम बालू में अच्छी तरह मिलाकर पर्याप्त नमी की स्थिति में नर्सरी में डालने से 2-3 दिन के अंदर प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह रोपाई की स्थिति में सक्रिय एवं चौड़ी पत्री वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु जो रसायन संस्तुत रसायन है उसको प्रयोग करना चाहिए। जैसे प्रेटीला क्लोर उसको हम लोग 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर को 50 किलो बारू में मिलाकर अच्छी तरह से उसके बाद 3 दिनों के अंदर प्रयोग कर देना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो बोरो धान की खेती होती है, बोरो धान में कीट रोग व्याधि का प्रकोप बहुत कम होता है, लेकिन जो कीट में गंधिक कीट का प्रकोप होता है तो साधारणतः बोरो मौसम में रोग व्याधि को प्रकोप कम होता है। गंधिक कीट की रोकथाम हेतु फॉलीडॉल कीटनाशक धूल के भुरकाव पौधों की बालियों पर करनी चाहिए। इसका प्रयोग उस समय होता है जब दानों में दूध बढ़ने लगता है। फसल की कटनी जब बाली के निचले दाने करे हो जाएं और पर सिंचाई बंद करके सभी दानों को करे हो जाने पर जैसे फूल जो फूल की अवस्था होती है उससे 30 से 35 दिनों के बाद कटाई करनी चाहिए।

0: प्रभेद की अवधि के अनुसार पक जाने पर कटनी करनी चाहिए। कटाई के बाद दानों की सफाई करके छाया में 13 से 14% नमी तक सुखाकर भंडारित कर देनी चाहिए। एक बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि पौधों को हम लोग जैसे बोरो मौसम है तो उसमें हम लोग जैसे बिचड़ा को पौध से ठंडक से बचाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो उसमें पौधों की सिंचाई की समुचित रूप से करते रहना चाहिए। जैसे अधिक जब ठंडा पड़े तो उसे पौधों की सिंचाई समुचित रूप से करते रहना चाहिए। पुआल और गोबर की राख का छिड़काव सप्ताह में 2 बार करनी चाहिए और प्रातः पत्तियां पर एकत्र ओस को गिरा देना चाहिए और पौधों को साथ प्लास्टिक सीट पर इसे ढक देते हैं और शाम में ढक देते हैं, प्रातः उसे हटा देते हैं। कुछ सीमा तक खेत के धुआं करके ठंडक को बचा जो बिचड़ा को है उसको बचा सकते हैं। बोरो धान किसानों के बीच हमारे किसानों के बीच लोकप्रिय होने का मुख्य कारण इसकी अधिक उपज होना है। इस मौसम में अधिक सूरज की किरणें पौधे को मिलती है, रात्रि में कम तापमान रहता है और अच्छा जल प्रबंधन बोरो सीजन में होता है, जिससे के साथ साथ कम रोग व्याधि प्रकोप एवं भरपूर उर्वरक का प्रयोग करने से जो हमारे प्रभेद हैं वह क्षमता से अधिक उपज देती है। लेकिन खरीफ मौसम में ऐसा संभव नहीं है, तो बोरो धान की खेती मुख्य रूप से किसान भाई जहाँ जल जमाव की समस्या रहती है, जहाँ हम लोग जो गेहूं और मक्का की फसल नहीं ले सकते हैं, उसकी खेती करके बोरो धान की खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, तो किसान भाइयों, बोरो धान की खेती के बारे में आपने जाना, तो जो कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं आप उनको सुने और जब आप इसकी खेती कर रहे हैं तो उस विधि में आप ज़रूर इसे डालें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन अगले विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि नमस्कार। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि आपकी फसल और आपकी फसलों की पैदावार ये सभी बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं। तो जी हाँ, बीज उत्पादन में हमें विभिन्न पहलुओं पर ध्यान रखना होता है। आज इसी विषय को लेकर हम आए हैं। हमारा विषय है धान के बीज उत्पादन हेतु तकनीकी सुझाव, और इस विषय को आप सभी के बीच लेकर आए हैं डॉक्टर सत्येंद्र। मैं आप सभी को बता दूं, सर वैज्ञानिक हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बीज को लेकर किसानों के पास क्या क्या कानूनी वैधताएँ हैं, इनके बारे में बताएं।
2: किसान भाइयों को नमस्कार। जहाँ तक बीज को लेकर वैधता का सवाल है, तो भारत में एक इसके लिए कानून पास किया गया था सन 2001 में, जिसका नाम है पौधा किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम। इसको PPB एंड FR एक्ट 2001 के नाम से जाना जाता है। इसमें बीज से संबंधित या फिर किसानों के लिए क्या क्या छूट दिया गया है बीज से संबंधित, वो सारी बातें इस एक्ट में हैं, इस अधिनियम में निहित हैं। तो इसके अनुसार किसान भाई अपना बीज खुद पैदा कर सकते हैं या फिर किसी से भी ले के हम लोग किसान भाई बीज लगा सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाई बिल्कुल फ्री हैं, और ये इस तरह का जो अधिनियम है ये भारत में ही ये इस तरह का बनाया गया है कि किसानों को इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि किसान भाई अपने बीज को या तो किसी को अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं, किसी का बीज आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको ले सकते हैं। तो इसके लिए अलग से अधिनियम में इस एक्ट में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें किसान भाई अपने बीज को स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, उन्नतशील बीज ये क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है?
2: उन्नतशील बीज जो बीज की गुणवत्ता है उसको अगर हम देखेंगे तो बीज की गुणवत्ता कई पहलुओं पर निर्भर करती है। तो उसमें अगर हम मोटे तौर पे देखें तो दो तरह की गुणवत्ता उसमें होती है, एक भौतिक गुणवत्ता होती है और एक उसकी आनुवंशिक गुणवत्ता होती है। तो आनुवंशिक गुणवत्ता की जहाँ तक बात करें तो जैसे अलग अलग किस्म का बीज होता है, तो अलग अलग किस्म के बीज में कोई दूसरी प्रजाति का या दूसरे प्रभेद का तो मिक्सचर नहीं है, तो वो उसकी आनुवंशिक शुद्धता पे निर्भर करता है। दूसरा उसकी भौतिक शुद्धता होती है, तो भौतिक शुद्धता में कोई दूसरा इनर्ट मैटर या फिर कोई खराब तरह का बीज तो नहीं मिक्स है, मिक्सर है, तो ये उसको भी ना, एक तरह से उसका भी मापदंड बनाया गया है, तो ये सारा उसकी भौतिक शुद्धता पे निर्भर करता है।
1: जी, और धान की किस्मों की बात करते हैं तो बीज उत्पादन के लिए किसान भाई किन किन धान की उन्नतशील किस्मों को अपना सकते हैं?
2: धान की उन्नतशील किस्में तो काफ़ी हैं जो किसान भाइयों के बीच में प्रचलित हैं, और अभी अगर हम इस समय की बात करें तो ये धान का समय है, धान की फसल खेत में खड़ी है, तो किसान भाई जैसे निचले क्षेत्रों में हम लोग रिकमेंड करते हैं, थोड़ा जहाँ पे पानी ज़्यादा लगता है उस एरिया में राजेंद्र मैसूरी या फिर स्वर्णा सबवन, ये लंबे अवधि के हैं, सबोर संपन्न धान है, ये लंबी अवधि के प्रभेद हैं, इनको हम लोग संस्तुत करते हैं। इसी तरह से जो ऊपरी भूमि है जहाँ पे कम पानी लगता है या कम पानी की अवस्था में अगर हम देखें तो वहाँ पे कम दिन की जो प्रजाति हैं जैसे सबोर हर्षित है, सबोर दीप है, सहभागी धान है, ये सब प्रजाति हम लोग संस्तुत करते हैं।
1: जी, अगर धान में बीज उत्पादन से संबंधित किसी तकनीकी बिंदुओं को अगर ध्यान में रखा जाता हो तो कृपया बताएं सर।
2: हाँ, इसमें देखिए किसान भाइयों, बीज उत्पादन से संबंधित कई सारे तकनीकी बिंदु होते हैं, उसमें एक तो है कि अगर आप जिस खेत में बीज उत्पादन कर रहे हैं वो, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, यानी आप अगर रजिस्टर्ड सर्टिफाइड बीज पैदा कर रहे हैं, तो उस केस में आपको उनके जो मापदंड है सारे उसको फॉलो करना होता है, उसको मानना होता है, और अगर आप अपना खुद का भी बीज पैदा कर रहे हैं तो हमारा सुझाव यही रहता है कि किसान भाई उसमें भी सारे मापदंड जो हैं, जो उन्नतशील बीज पैदा करने के मापदंड हैं, वो सारे उसमें अपनाने चाहिए किसान भाइयों को। तो उसमें कुछ पहलू हैं जिनको किसान भाइयों को ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला एक है कि एक एक खेत में से दूसरे खेत के, एक बीज के खेत से दूसरे बीज के खेत की दूरी कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसान भाई ध्यान रखें कि धान के लिए अगर आप बीज पैदा कर रहे हैं, आप जिस खेत में बीज पैदा कर रहे हैं, जिसको आप बीज का खेत मान रहे हैं, उस खेत से दूसरे खेत की दूरी यानी धान की दूसरी किस्म की दूरी कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए, 3 मीटर हो या इससे ज़्यादा हो, तो दूसरे इसको तो बोलते हैं पृथक्करण दूरी, तो ये 3 मीटर कम से कम होनी चाहिए। दूसरे अगर मान लीजिए किसान भाई एक कोई उनका कोई प्लॉट है जिसमें वो धान का बीज के लिए धान लगा रहे हैं, उसको कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, और वो 3 मीटर का पृथक्करण जो दूरी वो नहीं दे पाए हैं, तो किसान भाई क्या कर सकते हैं कि कटाई के टाइम 3 मीटर का जो बॉर्डर एरिया है वो हटा सकते हैं, यानी चारों तरफ उस प्लॉट के चारों तरफ 3 मीटर तक का धान को आप बीज में इस्तेमाल ना करें, ये किसान भाई कर सकते हैं। तो वो भी एक एक तरह से पृथक्करण की दूरी जो थी वो उसका फुलफिल कर देगा उसका। फिर आपको 3 मीटर अगर नहीं भी छोड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 मीटर तक का धान को इस्तेमाल मत करिए बीज में। दूसरी, एक तो ये चीज़ हो गया, दूसरी बात है रोगिंग की। रोगिंग मतलब कि धान के खेत में, उस खेत में जिसका बीज आप इस्तेमाल करेंगे अगले साल, उसमें आपको रोगिंग करना है। रोगिंग होता है अवांछित जो पौधे हैं उनको निकालने का काम। तो ये काम जो है वो कई स्टेज पे होता है, कई अलग अलग जो उसकी अवधि होती है धान की फसल की उसमें होता है। तो जैसे किसान भाई एक बार जब टिलरिंग होती है, जब कल्ले निकलते हैं, तो उस समय पे भी अगर कोई आपको अलग तरह का धान दिख रहा है जो आपको लग रहा है कि इसका नहीं है, उस प्रजाति का नहीं है या बाकी पौधों से अलग दिख रहा है, तो उसको निकाल दें। फिर इसी तरह से फूल आने के समय भी एक एक रोगिंग की जाती है, ताकि फूल के समय पे भी अगर कोई ज़्यादा ऊंचाई का पौधा है जो आपको लग रहा है कि ये मिक्सचर हो सकता है, या दाने के आधार पे आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो उस तरह के पौधे भी हमें हटा देने होते हैं। और उसके बाद एक बार फिर जब पक जाती है फसल, मैच्योर हो जाती है, तो कटाई से पहले भी ये रोगिंग का काम करते हैं। तो इसके बाद कटाई में भी हमें बहुत सावधानी इसमें बीज के खेत में रखनी पड़ती है। तो ये सब कुछ तकनीकी पहलू हैं जिनका ध्यान किसान भाइयों को रखना होता है।
1: जी, अभी डॉक्टर साहब आपने इन तकनीकी बिंदुओं में पृथक्करण की बात की थी, ये पृथक्करण दूरी क्या है और किसान भाई इसमें कैसे ध्यान रख सकते हैं इसे लेकर?
2: हाँ, पृथक्करण दूरी जैसे मैंने बताया कि इसको एक खेत से उसी फसल का, जैसे धान का अगर आप बीज पैदा कर रहे हो तो धान के एक खेत से दूसरे धान के खेत की दूरी कितनी हो, ये होता है पृथक्करण दूरी, जिससे आपस में मिक्सचर ना हो। क्योंकि जो फूल आने के समय में क्या होता है कि जो पोलन होता है, जो उसका परागकण होते हैं, वो एक एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं, उसका या तो जो कीट होते हैं उनके द्वारा भी चले जाते हैं या हवा से भी चले जाते हैं, जिससे अगर दो वैरायटी, दो अलग अलग किस्म अगल बगल आपने लगाई है तो उनमें कुछ ना कुछ मिक्सचर होने का डर रहता है। तो उसको कम से कम करने के लिए ये अध्ययन करके ये पता किया गया है कि अगर हम 3 मीटर की दूरी रखते हैं दो किस्म को भी, किस्मों के बीच में जिनका हम बीज उत्पादन कर रहे हैं, तो वो उससे हमारा कम से कम मिक्सचर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये पृथक्करण दूरी ये हर फसल के लिए अलग अलग होती है। ये धान के लिए जो साधारण धान की फसल का उत्पादन है, साधारण किस्मों का जो उत्पादन है, उसके लिए दूरी कम होती है। और अगर हाइब्रिड किस्मों, हाइब्रिड का धान उत्पादन करेंगे, बीज उत्पादन करेंगे, तो उसमें वो दूरी बढ़ जाती है। तो क्यों, चूँकि हाइब्रिड का तो किसान भाई बीज उत्पादन नहीं करते हैं, तो जितनी भी है किस्में, जो साधारण किस्में हैं उनका बीज उत्पादन किया जाता है, तो उसमें 3 मीटर की जो पृथक्करण दूरी है वो उसको एक मानक माना गया है।
1: जी, आगे बढ़ते हुए रोगिंग के बारे में जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, इसे कैसे किसान करें?
2: हाँ, रोगिंग जैसे मैंने बताया, रोगिंग बोलते हैं जो अवांछित पौधे हैं उनको निकालने का। तो इसमें अवांछित पौधे आएंगे कहाँ से, सबसे पहली तो बात ये है, और अवांछित पौधे होते क्या हैं। तो अवांछित पौधे वो सारे हैं जो आप आपको नहीं चाहिए, या आप वहाँ उसको नहीं चाहते हैं खेत में कि ना हो। तो ये वो सारे पौधे जो अलग किस्म के हैं, भले ही वो धान के हैं लेकिन दूसरी किस्म के हैं, जिनका आप बीज उत्पादन नहीं कर रहे हैं और वो मिक्सचर हो गए हैं, मिक्स हो के उसमें आ गए हैं, वो पौधे होंगे। या कुछ ऐसे पौधे हो सकते हैं जो पिछले साल जो आपने धान की फसल ली थी उस खेत में, उसके कुछ पौधे भी अपने आप अगले साल धान के सीजन में अपने आप उग जाते हैं। तो ऐसे पौधे को भी हम अवांछित पौधे में गिनते हैं, उनको भी हमें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे किसी भी तरह का घास, खरपतवार, कोई दूसरा मिलता जुलता पौधा, किसी भी तरह का जो पौधा है धान के अलावा, वो भी सारा हमें निकालना होता है, वो भी अवांछित पौधे की श्रेणी में आता है। और जो ज़्यादा रोग या कीट लगे हुए पौधे हैं, भले ही वो उसी किस्म के हैं लेकिन उनमें ज़्यादा कीट या व्याधि आ गया है, तो उस तरह के पौधे भी हमारे लिए अवांछित की श्रेणी में आते हैं। तो उनको भी हमें निकाल के हटाना होता है, जिससे हमें शुद्ध बीज उत्पादन हम कर सकें।
1: जी, धान में फूल आने के समय भी कुछ जो बातें हैं उनका ध्यान रखना होता है, वो कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में बताएं?
2: हाँ, जैसे बीज उत्पादन के जो प्रक्षेत्र है धान का बीज उत्पादन का, उसमें जैसे मैंने बताया कि उसमें रोगिंग करनी होती है, तो वो अवांछित पौधों का हमें फूल आने के समय पे भी निकालना होता है। तो फूल आने के समय पे क्या है, जैसे हम उससे पहले हम देखेंगे कि जो जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है जिन पौधों की, उनको हम निकाल देते हैं, या जो दूसरे हमें लग रहा है कि ये अलग तरह के हैं उसको निकाल देते हैं। तो फूल आने के समय पे सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखने की है वो होती है, एक तो ऊंचाई की, ऊंचाई या तो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। ज़्यादा हाइट ऊंचाई है पौधे की तो भी निकाल दें, कम हाइट है, बोना है पौधा जो उसमें नहीं होना चाहिए वो भी निकाल दें। दूसरे, फूल आने के समय पे दाने का आकार किसान भाइयों भाई गौर से देखें कि ये अगर उस किस्म का दाना नहीं लग रहा है, या हो सकता है किसी किसी में ऑन्स होते हैं जो जिसको मुच्छल बोलते हैं, तो अगर वो उसमें तूड़ आया हुआ है, उसमें ऑन आया हुआ है, मूछ है, तो उसको और आप जिसका बीज पैदा कर रहे हैं उसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पौधों को भी आप फूल आने के समय में पहचान सकते हैं और उनको निकाल सकते हैं
1: जी। और सबसे ज़रूरी बात जो कटाई के समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, तो वो कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताएं।
2: कटाई के समय में भी जैसे मैंने बताया कि बीज के खेत में किसान भाई ध्यान रखें कि एक तो जो अगर उन्होंने पृथक्करण दूरी नहीं रखी है तो 3 मीटर का जो धान है वो खेत के चारों तरफ का धान वो बीज में इस्तेमाल ना करें, उसको बीज के लिए ना रखें। और इसके बाद बचे हुए खेत में उनको कटाई के समय में भी पकने के समय में भी फिर से रोगिंग करना होता है, तो वहाँ पे फिर से देखें कि कोई ऐसा पौधा तो नहीं रह गया है जो उनको लग रहा है कि वो मिक्सचर है, क्योंकि उस टाइम तक वो कई बार उसमें उसको देख चुके रहते हैं, उस उनको पता चल चुका रहता है कि ये ओरिजिनल जो इसका पौधा है वो किस तरह का होना चाहिए, उसका दाना किस तरह का होना चाहिए। तो जहाँ तक संभव हो एक एक पौधे को चेक करके, अगर हो सके तो हमें सारे पौधे चेक करके एक एक पौधे को निकाल दें ताकि हम शुद्ध से शुद्ध बीज पैदा कर सकें
1: जी। अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इससे रिलेटेड हैं बीज उत्पादन तकनीक से, जो आप किसान भाइयों को बताना चाहेंगे सर?
2: अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में यही है कि इसके बाद एक तो जो कटाई का काम है वो हम मशीन से ना करें, बीज के खेत का कभी भी मशीन से कटाई नहीं करें धान की, उसको हाथ से कटाई करें, हंसिया से जो हम काटते हैं परंपरागत तरीके से वो उसी तरीके से कटाई करें और उसको 2-3 दिन खेत में छोड़ दें ताकि वो पूरी जो नमी है करीब 18% नमी होनी चाहिए कटाई के समय में, और जब आप उसको फिर 2-3 दिन वहाँ छोड़ेंगे फिर थ्रेश करेंगे उसको अच्छे से सुखा लें। जो उसकी मड़ाई करते समय ये ध्यान रखें किसान भाई के जो थ्रेशिंग फ्लोर जहाँ पे आप या वो जगह जहाँ पे आप थ्रेशिंग कर रहे हैं, मड़ाई कर रहे हैं, दाना निकाल रहे हैं, वहाँ पे कोई किसी भी तरह की कोई दूसरी प्रजाति या दूसरा किस्म का ढेर ना रखा हो, वो काट के वहाँ रखा ना गया हो, उसको साफ रखें उस जगह को, जिससे कि किसी भी तरह से मिक्स दूसरी किस्म उसमें ना हो पाए। और उसको मड़ाई के बाद उसकी दोनी करने के बाद में उसको अच्छी तरह से सुखा लें जिससे नमी जो है वो घट के 12-13% पे आ जाए। जब 12-13% पे नमी आ जाती है दाने की तो फिर हम उसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं, वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा
1: जी। तो किसान भाइयों अभी आप सुन रहे थे धान के बीज उत्पादन तकनीक को, जिसमें कि विभिन्न पहलुओं पर बातें की गई हैं। आशा करते हैं आज का ये वार्ता आप सभी को पसंद आया होगा। अगले दिन आपसे फिर एक अलग विषय के साथ आपकी खेती से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं हम उनका हल देंगे। तो सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि नमस्कार। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और उन्नत कृषि कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी हाँ, हर रोज़ की तरह हम आपके लिए खास विषय लेकर आती हैं जिसमें बहुत सारी जानकारी होती है हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे युवाओं के लिए भी जो खेती में अपना भविष्य देखना चाहते हैं। जी हाँ, आज कई युवागण हैं जो खेती को अपना कर एक स्टार्टअप के तौर पर या फिर किसी अन्य तौर पर भी अपना कर अच्छी एक मोटी कमाई कर रहे हैं। तो आज जो हमारा विषय है बहुत ही अच्छा है, और हमें सुन रहे हैं यहाँ पर भागलपुर या उससे बाहर, वो भी इसकी चीज़ें जो हैं समझ सकते हैं, जानकारी रख सकते हैं। तो आज जो हमारा विषय है वो है धान की फसल में कटाई उपरांत भंडारण। बहुत ज़रूरी होता है कि भंडारण की व्यवस्था हम उचित रखें, और इससे जुड़े बहुत सारे पहलू होते हैं जो कि आज डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्येंद्र, और मैं आपको बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट से बिहार के।

0: काशी विश्वविद्यालय सबौर से हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अनु जी।
0: डॉक्टर साहब, आइए सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को ये बता दीजिए कि धान की फसल में भंडारण का सबसे पहले क्या महत्व तो है, क्यों हम भंडारण करें, ये क्यों जरूरी है, इसे बता दीजिए।
1: कृषक बंधुओं नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, धान बिहार की एक प्रमुख फसल है और हमारे यहाँ राज्य के लगभग सभी जिलों में धान उगाया जाता है। तो इससे संबंधित हमारे यहाँ एक कहावत भी प्रचलित है कि जिस किसान का धान अच्छा होगा, वही किसान समृद्ध होगा। तो ये बहुत ही प्रचलित कहावत हमारे यहाँ है। तो इससे पता लगता है कि कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए धान का फसल है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस समय अधिकतर किसान भाइयों ने धान की फसल की कटाई कर ली है और सभी किसान भाइयों के यहाँ घर पे धान आ चुका है। तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ जानें कि उसका भंडारण कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखें हम भंडारण करते समय, चाहे वो बीज के लिए हो, चाहे वो खाने के लिए हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई कोशिश करते हैं कि सीधे जाके मार्केट में धान को बेच दें, लेकिन धान की आवक बहुत ज़्यादा होने की वजह से किसान भाइयों को उचित दाम नहीं मिल पाता। तो उस समय बेहतर है कि हम धान का भंडारण कर लें, धान को सुरक्षित रख लें और कुछ महीनों के बाद उसको अच्छा दाम मिलने के बाद बेचें। तो इस स्थिति में धान के भंडारण की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है, सही से उसको रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि किसान भाइयों, हम जानते हैं कि धान की कटाई हम परंपरागत रूप में या तो हसिया द्वारा करते हैं या फिर आजकल जो बड़े किसान भाई हैं वो कंबाइन थ्रेशर से भी धान की कटाई करते हैं। तो हसिया से जब हम लोग कटाई करते हैं तो वो कटाई के उपरांत भी 2-3 दिन धान खेत में हम लोग सुखाते हैं काटने के बाद, तो उससे एक नमी की उचित मात्रा धान में बन जाती है। लेकिन कंबाइन से जो आजकल थ्रेशिंग की जा रही है, कटाई की जा रही है, उसमें थोड़ी समस्या आती है क्योंकि उसमें नमी की प्रतिशत बहुत ज़्यादा रहती है। तो कुल मिला के कटाई के वक्त अगर हम देखें तो 17-18 से लेकर 24-25% तक नमी धान में रहती है, जबकि जो उचित नमी की मात्रा है वो कम से कम 13-14% से नीचे ही रहनी चाहिए। तो इस हिसाब से देखें तो हमें धान को अच्छी तरीके से सुखाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है
0: जी।
1: तो इसके अलावा जो घर में खाने वाला धान होता है, जो घर में किसान भाई खाने के लिए रखते हैं, उसके भी भंडारण की ज़रूरत पड़ती है, और जो बीज के लिए किसान भाई रखते हैं उसके भी भंडारण की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे एक जानकारी हम देना चाहेंगे कि भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 10% धान की जो बर्बादी है वो सही भंडारण न होने की वजह से हो जाती है
0: जी। तो किसान भाइयों, आपने सुना कि जो धान की जो बर्बादी है वो 10% अगर भंडारण सही तरीके से नहीं हो इस वजह से होती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है भंडारण रखना। और डॉक्टर साहब, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से धान के भंडारण में बाधा आती है या प्रभावित होता है धान का भंडारण?
1: हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है अनु जी। इसमें देखिए, सबसे प्रमुख कारण अगर कोई भंडारण में आता है जो, वो है नमी। तो जैसा हमने पहले बताया कि कटाई के समय हमारा लगभग 20% धान में नमी रहती है। अच्छा। तो उसको अच्छे से सुखाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नमी के अलावा सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ विषाणु होते हैं, और कई प्रकार की फफूंद होती है जो धान को हमारे ख़राब करती है। तो इसमें जीवाणु और विषाणु की अगर हम देखें तो वो खेत में खड़ी फसल को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, भंडारण में उनका इतना प्रभाव नहीं रहता है। लेकिन फफूंद एक बहुत बड़ा कारक होता है, बहुत सारी फफूंद होती हैं जो भंडारण में के समय में धान को हम ख़राब कर सकती हैं। इसके अलावा कई सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे घुन लग जाता है या कई तरह का फुदका होता है, पिल्लू का होता है, और दीमक इत्यादि होते हैं जो धान को भंडारण में ख़राब कर सकते हैं। और अगर सही से किसान भाइयों ने भंडारण

0: नहीं किया तो उसमें कई तरह के कुतरने वाले जीव भी लगते हैं, जैसे
1: जी।
0: चूहे, गिलहरी, चिड़िया वगैरह भी उसमें लग सकते हैं, जो जिससे कि धान के नुकसान होने का खतरा बना रहता है।
1: तो यहाँ पर आपने जाना कि कैसे ये प्रभावित होता है धान का भंडारण। और डॉक्टर साहब, अभी आपने नमी की बातें कही थी, तो नमी का क्या महत्व है धान के भंडारण में, और किसान भाई इसका कैसे ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा नमी ना हो, जिस वजह से फफूंद या कुछ और जो आपने सूक्ष्म जीव कहा था वो ना पनपे, तो कैसे वो ध्यान रखें इस बात का?
0: जी बिल्कुल, नमी देखिए, जैसे पहले बताया, नमी सबसे प्रमुख कारक है जिससे धान के खराब होने की संभावना रहती है। तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक तो कटाई के समय ही जो अच्छे से हमारी फसल पक जाए उस समय कटाई करनी चाहिए।
1: अच्छा
0: दूसरे, जो बीज बीज की खासकर जो बीज के लिए हमें बीज रखना है, जिस फसल का, जिस खेत का हमें बीज रखना है, उसकी कटाई हम कोशिश करें कि हंसिया से ही करें, कंबाइन से हम उस खेत की कटाई ना करें, क्योंकि हम, जैसे मैंने पहले बताया कि हंसिया से कटाई करने के बाद हम खेत में सुखाते हैं, इसके बावजूद कटाई आप किसी भी तरीके से करें तो उसके बावजूद 3 से 5 दिन आपको साफ फर्श पे, साफ जगह पे धान को अच्छी धूप में सुखाना बहुत जरूरी है। और धान को सुखाते टाइम किसान भाई कई बार गलती भी कर देते हैं, कई बार गर्मी के दिनों में धान को सुखा देते हैं, तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि अगर दोबारा आप भंडार गृह से निकाल के और धान को सुखाना चाह रहे हैं तो बहुत तेज धूप में उसको ना सुखाएं, हल्की धूप में सुखाएं, नहीं तो धान अंदर से टूटने की कगार पे आ जाता है, और जब उसकी मिलिंग की जाती है, उसको, उसका चावल बनता है, तो चावल ज़्यादा टूटता है। तो इसके अलावा धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है, और नमी को 14%, अगर मान लीजिए आप कुछ महीने तक भंडार करना चाह रहे हैं तो 12 से 14% नमी उसमें बना लें, और नहीं तो अगर साल भर के लिए, जैसे हम बीज बीज को अगर हमें भंडार करना है, भंडारण करना है बीज का, तो 10 से 12% नमी ही उसमें होनी चाहिए। तो इसके लिए सीधे सीधे तौर पर जो वैज्ञानिक तरीके से हम जो देखते हैं कि नमी दाने में कितनी है, उसके लिए हम मॉइस्चर मीटर होता है, कई तरह के मॉइस्चर मीटर आते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो किसान भाई सीधे तौर पर उसको देख सकते हैं कि अपने दांत से, जब आप दाने को काटेंगे तो अगर कट कट से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब उसमें जो नमी है वो बिल्कुल उचित है। या फिर आप अगर दाने को कान के पास ले जाके और हाथ से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो भी कट की आवाज़ आएगी। तो अगर उस तरह से कट की आवाज़ आपको आ रही है तो इसका मतलब है कि धान बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख गया है और वो अब भंडारण करने के लायक है। तो ये इस तरह से नमी का हम इस पूरा ध्यान इसमें रखेंगे।
1: जी, तो अभी डॉक्टर साहब ने आपको धान के भंडारण में नमी से जुड़ी कुछ बातें बताई हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर जो नमी है वो है या नहीं, या फिर उससे अधिक नमी है। डॉक्टर साहब, अब धान के भंडारण में हम कुछ ध्यान रखने योग्य बातें होती है, कुछ सावधानियां बरतनी होती है उस दौरान, तो क्या कुछ वो सावधानियां हैं उनके बारे में बता दें।
0: जी बिल्कुल, धान का भंडारण की, जब आप पहले तो जैसे नमी की बात हो गई, नमी का हमने देख लिया कि उचित नमी उसमें अगर आ गई है, तो उसके बाद फिर आता है कि धान के भंडार जहाँ पे करना है भंडारण, वो जगह का चुनाव हमें करना पड़ेगा। तो वो जगह ऐसी हो जहाँ पे प्राकृतिक रूप से नमी ना आती हो, थोड़ा ऊंचा उसका फर्श हो, उस तरह की
1: मतलब
0: हम
1: जमीन से थोड़ा ऊपर।
0: जमीन से थोड़ा ऊपर रहे और नमी वहाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उसमें देख लें, उस कमरे में, जिस कमरे में भी आपको भंडारण करना है, उस कमरे की जो दीवारें हैं वो, उनमें किसी भी तरह की दरारें नहीं होनी चाहिए। तो ये अच्छी तरीके से हमें चेक कर लेना है उस कमरे को कि कहीं पे दरारें या फर्श उसका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो दरारें या टूटे हुए फर्श को हमें पहले ही ठीक कर देना है, और उनको अच्छी तरह से बिल्कुल चूने से या सीमेंट से उनको, दरारों को बंद कर देना है। इसके बाद खिड़की या रोशनदान जो भी कमरे में हो वो इस तरह के हों कि जो बाहर को खुलते हों, खिड़की जो है वो बाहर को खुलती हो, रोशनदान भी जो है वो बाहर को खुलता हो, जिससे कि हम जरूरत के हिसाब से उनको जब जरूरत पड़े खोल लें या फिर उसको बंद भी कर सकें। इसके अलावा इस बात का भी हम ध्यान रखें कि उस जगह में या उस कमरे में जहाँ पे हमें धान का भंडारण करना है, पुराना धान नहीं होना चाहिए। उसको अच्छी तरह से, अगर पहले से धान रखा है तो उसको अच्छी तरह से निकाल लें, उसको हटा लें पूरा, और वहाँ पे साफ़ सफाई कर लें। बिल्कुल भी कोई पुराना धान ना हो, क्योंकि इससे क्या है कि पुराने धान के साथ में जो फफूंद है या जो दूसरे छोटे सूक्ष्म जीव हैं वो आ सकते हैं, तो उससे हमारे ये नए धान के खराब होने का खतरा बना रहेगा। तो उसको भी बिल्कुल हम बंद कर दें। इसके अलावा जो एक किसान भाई ध्यान रखें कि जो खाने का के लिए आप जो भंडारण कर रहे हैं धान का, या जो आपको बेचना है बाद में, जो खाने के लिए इस्तेमाल होने वाला है, उसमें कोशिश करें किसान भाई के रसायनों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। किसी भी तरह का रसायन उसमें ना रखें। जैविक रूप से ज़रूर उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम अभी आपको बताएंगे। तो इसके अलावा बात है कौन सा बोरा यूज करें, किस में धान को, कंटेनर कौन सा इस्तेमाल करें। तो इसके लिए किसान भाई जूट के बोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलीथीन या प्लास्टिक के बोरे का इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा आप अगर आपका जूट के बोरे आपके पास हैं तो उनका इस्तेमाल करें, या इसके अलावा आप टंकियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बीन्स होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: गांव में हमने देखा है कि वो मिट्टी के बने हुए होते हैं।
0: हाँ, मिट्टी की बनी हुई होती हैं, कुछ लोग सीमेंट की बनी हुई टंकियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
1: आजकल स्टील के भी है।
0: हाँ, स्टील या लोहे की जो टंकियाँ होती हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें किसान भाई क्या करें कि जो सीमेंट का या मिट्टी का जो कंटेनर है, बिन है, उसमें अंदर से अगर कोलतार से उसको अच्छी तरह से लेप देंगे, तो उसकी एक परत लगा देंगे, तो उसमें किसी भी तरह की सूक्ष्म जीव आने का खतरा नहीं रहेगा
1: जी।
0: और इसके अलावा अगर कोशिश ये करें कि पुराने बोरों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, पुराना धान लगा हो सकता है। इसके बावजूद भी अगर मजबूरी में किसान भाई पुराने बोरों का इस्तेमाल किसान भाई को करना पड़ रहा है, तो उसमें क्या हम क्या कर सकते हैं कि 20-25 मिनट तक पुराने बोरों को खोलते पानी में डाल दें।
1: अच्छा,
0: तो अगर उबलते पानी में 20-25 मिनट तक पुराने बोरों को रखेंगे तो जो भी सूक्ष्म जीव होंगे वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद उन बोरों को अच्छे तरीके से सुखा लेना है, और सुखाने के बाद उसका उसमें धान रखने के लिए इस्तेमाल करें।
1: और ये अभी कोविड का टाइम है तो इस समय और खास ख्याल रखना है उस बोरों का।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा जो जैविक तरीके से, जैसे मैंने बताया खाने के लिए जो धान इस्तेमाल होना है उसमें आप जैविक तरीके से उस रखने के बाद उसमें चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े में लपेट के चूना ले आप लेके उसको छोटी छोटी उसकी पोटली बना लें कपड़े में, और जो कंटेनर होता है, टंकी होता है, उसमें एक एक लेयर डालते जाएं और एक एक पोटली उस पर रखते जाएं। तो उसके लिए हम कई तरह के अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे चूने का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं,
1: कुछ गोलियां भी होती हैं डॉक्टर साहब जो दी जाती है।
0: हाँ, आयुर्वेदिक गोलियां भी इसकी आती हैं, एक डाबर की एक गोली आती है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी में करक्यूमिन होता है, तो जो इस हमें,
1: और वो कर्पूर वगैरह भी हम डाल सकते हैं।
0: हाँ, कर्पूर की गोलियां इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़े में बांध के। इसके अलावा कपड़े में बांध के माचिस की जो तिल्लियां हैं, माचिस की डिब्बियां हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनको। ये सब चीजें एक खासकर किसान भाई क्या करें कि जो सस्ता उपाय है उसमें किसान भाई हल्दी के गांठ ले लें, कच्ची हल्दी, और उसके साथ साथ ये माचिस की तिल्लियां ले लें, तो उसकी पोटली बना के भी हम
1: बीच बीच में
0: अगर टंकियों में रखेंगे तो, क्योंकि तिल्लियों में पोटेशियम क्लोरेट और रेड फास्फोरस होता है जो कीड़ों को लगने से बचाता है, और हमें नुकसान भी किसी तरह का उससे नहीं होता है
1: जी।
0: तो इस तरीके से हम इसमें इन चीजों का ध्यान रखें।
1: जी, तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको छोटे छोटे नुस्खे बताए हैं जिसे अपनाकर आप जो है सूक्ष्म जीवों से या फिर कीड़ों से अपने भंडारित धान जो है आप उन्हें बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं बीज के लिए प्रयोग किए जाने वाले धान के भंडारण के बारे में, तो ये कैसे करें हमारे किसान भाई बीज के लिए खास?
0: जी किसान भाइयों, बीज और दाने में अंतर होता है। अगर ये हमें ये बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा कि दाना क्या है और बीज क्या है। तो जो जब हम दाना बोलते हैं, दाना मतलब कि हम उसको खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीज के लिए भी, लेकिन
1: रेडी टू फूड,
0: रेडी टू, हाँ मतलब वो खाने के लिए
1: रेडी टू ईट कह सकते हैं,
0: रेडी टू ईट। तो उसको उसमें मतलब जो भ्रूण होता है वहाँ पे हम भ्रूण की बात नहीं करते जब हम दाने की बात करते हैं, लेकिन हम जब बीज की बात करते हैं तो हम भ्रूण की बात करते हैं। भ्रूण मतलब बेबी प्लांट। उसके अंदर में अगर बेबी प्लांट भ्रूण होगा, सही होगा, तभी वो आगे अगले पौधे को जन्म दे सकेगा। तो बीज में भ्रूण सही भ्रूण का होना बहुत जरूरी है। तो बीज दाना तो कोई भी हो गया, आप अगर भ्रूण उसका
1: सही
0: नहीं है तो भी उसको हम दाना बोल सकते हैं, पर बीज हम उसी को बोलेंगे जिसमें भ्रूण बिल्कुल सही है, किसी भी तरह का नुकसान उसको नहीं हुआ है। तो बीज के लिए किसान भाई एक चीज और जानकारी हम देना चाहेंगे कि किसान भाई संकर प्रभेद भी लगाते हैं और ये दूसरी प्रजातियां भी लगाते हैं। तो किसान भाई संकर प्रभेदों का बीज आगे अगले वर्ष इस्तेमाल करने के लिए ना रखें, ये एक सलाह किसान भाइयों के लिए है, क्योंकि वो उसकी उपज बहुत कम हो जाती है अगले साल। तो संकर बीजों का इस्तेमाल बिल्कुल दोबारा अपने घर के बीज का नहीं करना है, लेकिन दूसरी किस्मों के बीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और उसके भंडारण के लिए उसमें जब कटाई करते हैं, एक तो शुरू से ही हम जो बीज की फसल होती है उसके उसका ध्यान अलग से रखा जाता है, जिसकी अलग विधियां हैं। उसमें फिर हम सीसा, जो पेनिकल जिसको बोलते हैं धान का, सीसे को निकाल सकते हैं। एक तरह के सीसे निकाल के हम एक पोटली बना लें और वो पोटली को हम रखें तो वो आसान होता है और आगे इस्तेमाल के लिए। इसके अलावा वो सारी बातें जो हमने ऊपर बताई
1: धान के
0: भंडारण के लिए, जगह का किस तरह का कमरा होना चाहिए, उसकी दीवारें कैसी हों, उनमें किसी तरह की दरारें ना हो, वो सब चीज़ों का ध्यान हमें यहाँ भी रखना है जब हम बीज का भंडारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम कुछ रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दीवारों पर, चारों दीवारों पर, फर्श पे हम मालाथियान का 50% ईसी का हम छिड़काव कर सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं, 1:300 के अनुपात में हम इसका घोल बना सकते हैं और उस घोल को 3 लीटर 100 वर्ग मीटर के हिसाब से हम लोग अगर स्प्रे कर देते हैं उस कमरे की दीवारों पे और फर्श पे, तो हम फफूंद से और दूसरे सूक्ष्म जीवों से इससे बीज को हम बचा सकते हैं
1: जी।
0: और इसके अलावा बीज के लिए हमें, जब हमने भंडार गृह में उसको रख दिया है, तो इसके बावजूद भी हमें एक निश्चित समय पे उसकी देखरेख करती रहनी पड़ेगी। और उसके लिए हमें बीच बीच में मालाथियान का ही 1:300 के अनुपात में जो हमने पहले घोल का इस्तेमाल किया था वही छिड़काव हम फिर से कर सकते हैं। इसके अलावा हम बीच बीच में सोमिथियान का घोल भी 1:900 के अनुपात के रूप में 2-3 बार छिड़काव कर सकते हैं, या फिर एक DDBP या नुआन या वापोना का 0.25% का घोल तैयार करके 1 लीटर प्रति 200 घन मीटर की दर से इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा धूमीकरण भी कर, फ्यूमिगेशन भी किया जाता है जहाँ पे बीज रखा रहता है उस जगह का। उसके लिए धूमीकरण के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइट की एक टिकिया जिसका के वजन 3 ग्राम होता है, प्रति टन बीज की दर से उसका हम व्यवहार कर सकते हैं। और इससे किसान भाइयों का जो बीज है वो बिल्कुल सही रहेगा। बस ध्यान ये रखें कि धूमीकरण जो है, जो फ्यूमिगेशन है, उसका 60 दिनों के अंतर पर अधिक से अधिक 3 बार इस्तेमाल करें, और धूमीकरण जैसे आज किया है तो उसके 4 दिनों के बाद ही गोदाम को खोलें, और कम से कम 6 घंटे तक खिड़की दरवाजे खुले रखें। तो इससे इस हिसाब से अगर हम बीज को रखेंगे तो हमारा बीज बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और अगले साल इस्तेमाल करने के लिए अच्छा रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा
1: जी। तो किसान भाइयों, यहाँ पर धान की फसल में कटाई उपरांत भंडारण की पूरी विधि आपको डॉक्टर सत्येंद्र जी ने आपको बताई हैं, तो आशा करते हैं कि ये सारी विधि अपनाकर आप अच्छे से भंडारण करेंगे और अगले साल के लिए अपने इन धान को सुरक्षित रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

ना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।